आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, प्रोग्राम है भोर सुहानी। जीवन की राह में अच्छे दोस्त की अनमोल देन है। दोस्ती केवल साथ हंसने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामने का नाम भी है। आज किसी अपने को यह एहसास जरूर कराइए कि वह आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।

सत्य हमारे विचारों को शक्ति देता है, शिवम हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है और सुंदरता हमारे दृष्टिकोण में जन्म लेती है। इसलिए आज का संकल्प हो सच बोलें, अच्छा करें और हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करें।

हर नई सुबह अपने साथ बदलाव का संदेश लेकर आती है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए कठिन समय में घबराइए नहीं। बादलों के पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है, बस हमें उसके लौटने का विश्वास बनाए रखना है। तो इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही एक बहुत सी प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 7:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात का। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्लगी।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम घर आंगन का। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। 2:30 का समय रहेगा प्रोग्राम संगीत.com का। और 3:10 पर आप सुन सकेंगे मन भावन।

शाम 5:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गाते गुनगुनाते का। सात बजकर 25 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सांझ ढले। रात्रि 8:10 का समय रहेगा प्रोग्राम मधुरिमा का। 10:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हरशिंगार। और रात्रि 11:40 का समय रहेगा गीत मेरे मनमीत का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आधिकारिक

0: घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनु कटारिया। Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured are being provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with

गृहस्थ जीवन और योग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। परिवार और संसार के बीच रहते हुए भी आत्मकल्याण की साधना संभव है, यही शिवत्व है। विष को रोककर अमृत बांटना, कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना और अपने जीवन को लोक कल्याण का माध्यम बनाना। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

परमहंस योगानंद प्रयास के विषय में साधकों से कहते हैं कि सभी आत्माएं समान हैं, तुम में और मुझ में इतना ही अंतर है कि मैंने प्रयास किया, मैंने ईश्वर को दिखाया कि मैं उनसे प्रेम करता हूं और वो मेरे पास आ गए। प्रेम वो चुंबक है जिससे ईश्वर बच नहीं सकते।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जहाँ प्रभु का नाम नहीं वहाँ मुसीबत है, दुख है, और जहाँ प्रभु के गुण गाए जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।

वृक्ष जब हरे होते हैं तब पशु पक्षी उन्हें चढ़ने लगते हैं, सूख जाने पर लोग उन्हें जलाकर तापते हैं और फलने पर फल के लिए हाथ पसारते हैं। तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार जगत में तो सब स्वार्थ के ही मित्र हैं, परमार्थ के मित्र तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी ही हैं।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानो उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्र

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। भारत फ्रांस मैत्री सम्बन्धान् प्रशंसयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पेरिस नगरे स्वामीनारायण मन्दिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। तेन राष्ट्रपति मैक्रों वर्यस्य योगदानं संस्मृत्य प्रोक्तं यत् एआई प्रौद्योगिक्याः अथ जलवायु संकट निवारणस्य दिशि उभौ देशौ जागतिक नेतृत्वं वहतः। मन्दिर निर्माणं सांस्कृतिक सेतुरूपेण कार्यं करिष्यति इति तेन प्रतिपादितम्।
1: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन भ्रामक वार्तानां खंडनं कृतम्। यासु इसरो संस्थायाः निजीकरणस्य उत तस्याः भूमिकायाः न्यूनीकरणस्य संभावना व्यक्ता आसीत्। सामाजिक माध्यमेषु प्रसारिते एकस्मिन् संदेशे इसरो संस्थया स्पष्टीकृतं यत् न तु अस्याः निजीकरणं करिष्यते न च अस्याः महत्वं न्यूनं भविष्यति। संस्थया उक्तं यत् अंतरिक्षक्षेत्रे निजी क्षेत्रस्य सहभागितायाः मुख्य उद्देश्यं इसरो संस्थां भारतस्य भावि अंतरिक्ष कार्यक्रमस्य अग्रिमजनाः अनुसंधानेषु अधिक प्रभाविरूपेण ध्यानं केन्द्रीकर्तुं सक्षमं करणम् अस्ति। यदा च उद्योगक्षेत्रं परिपक्व प्रौद्योगिकीनां क्षमतानां च विस्

0: विस्तारं करिष्यति। दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा रेखा गुप्ता इत्यनया नवदिल्ल्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनस्य घटनायाः मजिस्ट्रियल इति दण्डाधिकारी अनुसन्धानस्य आदेशः प्रदत्तः, तथा च भवनस्य स्वामिनः विरुद्धं FIR इति प्राथमिकी पञ्जीकर्तुं निर्देशोऽपि प्रदत्तः। मुख्यमंत्री कार्यालयः अवदत् यत् घटना स्थलस्य समीक्षायाः, घटनायाः प्रारंभिक मूल्यांकनस्य च अनन्तरं अयं निर्णयः स्वीकृतः। CMO कार्यालयः अवदत् यत् ये गभीर घटनायाः कृते उत्तरदायिनः इति ज्ञायते ते पूर्णतया उत्तरदातारः भविष्यन्ति, तथा च विध्याः कठोरतम उपबन्धैः व्यवहृताः भविष्यन्ति। अत्रांतरे गतरात्रौ अपरस्य मृत शरीरस्य प्राप्ते सति अस्यां घटनायां मृतकानां संख्या 6 यावत् वर्धिता अस्ति। स्थले अन्वेषणस्य उद्धारस्य च कार्यम् अनुवर्तत। यत् दलानि भग्नावशेषान् निष्कासयितुं कस्यापि निबद्धस्य जनस्य अन्वेषणार्थं च कार्यं कुर्वन्ति। NDRF, अग्निशामक सेवा, देहली आरक्षकाः, अन्ये च विभागाः च भग्नावशेषान् निष्कासयितुं स्थले कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य श्रीवेंकटेश्वर महाविद्यालयः दुखद भवनपतनस्य कारणात् अद्य निरुद्धः भविष्यति। महाविद्यालयः अवदत् यत् अस्थायी उपायरूपेण सत्यनिकेतनक्षेत्रे निवसतां छात्राणां मध्ये अनेकेषां वेतन अतिथि निवासस्थानानाम् असुरक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति। भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितमभवत्। बिहारे गंगा, गण्डक, कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरम् अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगानद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति, येन अधोवर्तिक्षेत्रेषु उच्चसतर्कता वर्तते। उत्तर प्रदेशे 24 मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 5 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तथा जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिला।

0: के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। ये इमारत पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां अर्थात हमारे मन समान हो हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner

सबसे खास लोग वही होते हैं जिनसे बात करने के लिए शब्दों का चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म गैम्बलर से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: 7:16:23 आज सूर्योदय हुआ सुबह 6:05 पर और दिन भर बादलों के साथ सूर्य देवता की आंख मिचोली चलती रहेगी और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:35। मौसम विभाग के अनुसार शाम तक बारिश आने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। आइए अब सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

0: तुमसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो,
1: ये तो बताओ कि तुम।
2: एक स्वस्थ शरीर में भगवान का वास होता है और स्वस्थ शरीर रखने के लिए आचार विहार और आहार महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत में 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आखिरी दिन है। इस सप्ताह का उद्देश्य स्वस्थ खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है और महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। फिलहाल 7:21 और 20 सेकंड गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
3: ए,
4: अरे
3: चुपके से दिल दे दे
4: नहीं ते
3: नहीं ते

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मंडे मॉर्निंग और मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ हैं रेनू। नमस्कार रेनू।
1: नमस्कार नवीन, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क ऑन दिस ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग।
0: रेनू, मंडे मॉर्निंग को सबसे पहले जो बात याद आती है वो ये याद आती है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो न्यूटन ने कहा था कि हर एक चीज आपको खींचती है अपनी तरफ। मंडे को आपका बेड आपको खींचता है कि अरे कहाँ जा रहा है, सुबह सुबह उठकर दो छुट्टियां तेरे पास है, और वहीं आपका ऑफिस आपको खींचता है कि कहाँ आओ मेरी तरफ। और इसी जद्दोजहद में हम उठते चले जाते हैं और एक मशीन की तरह तैयार हो जाते हैं और ऑफिस निकल पड़ते हैं। और यही मशीन सुबह सुबह जानते हैं क्या करती है, रेडियो का वॉल्यूम ऑन कर देती है, क्योंकि उसको आज सवेरे सुनना होता है, उसको सुनना होता है कि आज दिन भर उसके दो एंकर उसको कैसे तैयार करेंगे दिन भर की जद्दोजहद से लड़ने के लिए।
1: बिल्कुल, वी हैव सो मच इन स्टोर फॉर यू डियर लिसनर्स, वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 7th ऑफ सितंबर। सो स्टे विद अस टिल 8 o'clock एंड वी आर गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टुडे।

0: नजर डाल लेते हैं सबसे पहले पहली खबर पर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टेकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति, नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर, गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गोवा दौरे के अंतिम दिन राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे और ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा।
1: अमित शाह आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पश्चिमी राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद वे गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। समारोह तालगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगा। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, जिसे राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है, किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। गोवा पुलिस को यह सम्मान उसकी वर्षों की सेवा, अनुशासन और लोगों के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार।
2: Indian Space Research Organization, ISRO, has issued a clarification on reports circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities.
0: बात दिल्ली की। दिल्ली में कल एक बहुत भयावह हादसा हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है।
2: मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉ. मोहन यादव अराइव्ड इन दुबई यस्टरडे ऑन अ 3-day विजिट टू UAE। ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस इन दुबई एंड विल एंगेज विद इन्वेस्टर्स, पिचिंग मध्य प्रदेश एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजिट, ही सेड दैट द गोल इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन एवरी सेक्टर इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स and artificial intelligence to boost trade and create new employment opportunities for the youth of the state, expressing confidence that investors will become partners in Madhya Pradesh's journey of development. The chief minister said that more than 900 outdated laws were abolished along with several policies to simplify procedures and reduce delays.
0: रेणु, हमारा देश लोक संस्कृति, पर्वों, त्योहारों और खान पान से समृद्ध है। चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी शहर हो, कोई भी स्थिति हो, हम उत्सव मनाने से नहीं चूकते।
2: जी बिल्कुल।
0: आइए अब अपने सुनने वालों को हम सीधा जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ।

0: The locals, in collaboration with the district administration, Ramban, Directorate of Tourism, Jammu and Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, with the objective of promoting indigenous culture and strengthening the potential of Sonaseri as an emerging rural and eco-tourism destination. Aur hum baat kar rahe hain festivals ki aur isi mein Madhya Pradesh se bhi hamare paas ek aur news hai. The royal procession of Lord Mahakaleshwar in Ujjain will be broadcast live on Akashwani today. Akashwani Ujjain will broadcast the procession continuously from 2 p.m. to 10 p.m. The broadcast will be available on all Akashwani stations in Madhya Pradesh. Devotees can also listen to the broadcast on FM 102.5 MHz and on the News on Air mobile app. The broadcast will cover the full route of the procession, important stops, religious rituals and the devotion of the devotees. This special coverage has been nominated for the World Book of Records and the Limca Book of Records.
1: तो आकाशवाणी आपके जीवन की तमाम घटनाओं को छूता है, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो भक्ति से जुड़ा हो, चाहे वो खेलों से जुड़ा हो या फिर राजनीति हो.
0: जी.
1: खेलों पे भी नजर डाल लेते हैं. भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में जगह बना ली है. भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 सालों में पहली बार इस प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई है.
0: एंड गुड न्यूज इन द बैडमिंटन अरीना ऑल्सो नवीन. इन बैडमिंटन इंडियन पेयर ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी क्लिंच द मेन्स डबल्स टाइटल एट द चाइना मास्टर्स इन शेंजन. द इंडियन ड्यूओ डिफीटेड चाइनाज ही जिंग टिंग एंड रेन जियांग यू 11-21, 21-13, 21-17 इन द समिट clash yesterday to secure India's first ever title at the China Masters. The victory marks the duo's second title of the season.
1: और अब नजर डाल लेते हैं आपके शहरों की, क्या कुछ हो रहा है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में.
0: जी, सो गोइंग टू चेन्नई फर्स्ट. नवीन, वी नो एलिफेंट डेथ्स व्हाइल क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स आर अ मेजर कॉन्वर्सेशन क्राइसिस इन आवर कंट्री व्हिच इज ड्रिवन बाय हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड स्पीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर इज सो मच दैट द गवर्नमेंट हैज नाउ स्टार्टेड डूइंग ऑन दिस.
1: रेनूस के अलावा भी सरकार ने हर हाईवे पे, हर जगह पे, जंगल में जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं, उन्होंने जगह जगह बैनर लगाए हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि ये जो रास्ता है वो जानवरों के पार करने के लिए रास्ता है, ये जो रास्ता है ये उनके लिए रास्ता है. लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं. दिस इज सिविक सेंस.
0: दिस इज ऑल्सो सम गुड न्यूज फ्रॉम चेन्नई मेट्रो दैट वी हैव रिगार्डिंग दिस कि वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है. तो मद्रास हाई कोर्ट has granted 3 more months period to the Tamil Nadu Forest Department to notify the elephant corridors in the state. A special division bench of Justice N. Satish Kumar and Justice K. Rajasekhar passed the order as the department submitted that a study is presently being undertaken to ascertain whether all the identified areas are required to be notified as elephant corridors. Moving on to another news from Chennai. State Health Minister Dr. Arun Raj inaugurated an awareness rally on eye donation yesterday at Chennai. Interacting with the media, he said that Tamil Nadu stood first in organ donation as there is much awareness about it. He also explained several steps in handling health issues in the state. The minister told that the state government has been taking proactive steps in the control of dengue. He said special wards have been dedicated to tackle dengue. चलते हैं आपके पास,
1: रुख करते हैं दिल्ली का.
0: जी,
1: दिल्ली को देश की स्टार्टअप और इनोवेटिव राजधानी बनाने की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति पर आयोजित एक विशेष गोलमेज बैठक में सहभागिता की. इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को प्रभावी बनाने के लिए उद्योग जगत और स्टार्टअप समुदाय से प्रत्यक्ष सुझाव प्राप्त करना था. अगली खबर, दिल्ली सरकार ने कल वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और नागरिकों तथा सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

0: है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क संपर्क को और मजबूती मिलेगी।
1: एंड नवीन, वी नो दैट आजकल हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: सो रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, वी हैव सम न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु मेट्रो। कर्नाटका एनर्जी एंड टूरिज्म मिनिस्टर के जे जॉर्ज एक्नॉलेज द रिच स्पोर्टिंग लेगेसी इन कोडगु डिस्ट्रिक्ट एंड अश्योर दैट स्टेप्स विल बी टेकन टू डेवलप स्पोर्ट्स टूरिज्म हियर। He was speaking after flagging off the Kodagu Monsoon Half Marathon at Coorg Public School and in Gonikoppal near Madikeri yesterday. The minister pointed out that Kodagu has produced several accomplished sportspersons at the national and international levels and continues to attract visitors with its distinctive natural settings and salubrious climate. Hence, he stressed that there is a considerable scope to combine these strengths and promote activities such as marathons, cycling, trekking and other outdoor sporting events as part of the Kodagu's टूरिज्म ऑफरिंग्स।
0: स्पोर्ट्स टूरिज्म बहुत अच्छा शब्द एक निकल कर आया है। और रेनू, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अगर खेलों को और बढ़ावा दिया जाए तो कम से कम उस कहावत को तो हम बिल्कुल झुटला सकते हैं जो कहती थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब।
1: जी,
0: हम तो कहेंगे भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, क्योंकि आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। अगर आप वाकई स्पोर्ट्स में बहुत परफेक्ट हैं तो किसी न किसी मुकाम को हासिल कर ही सकते हैं। और सरकार जिस तरह से, अभी रेणु ने भी बताया कि सरकार जिस तरह से बढ़ावा दे रखी है तो वो आपको हाथ पकड़कर और आगे ले जाएगी, आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सरकार की नीतियां आपको दो कदम और आगे बढ़ के और आगे ले जाएंगी।
1: एंड यस, देयर आर सो मेनी ऑफ अस, यू नो नवीन, वी हैव सीन कि जिनके पास टैलेंट इतना है स्पोर्ट्स में, लेकिन थोड़ा सा उन्हें लगता है कि पता नहीं हम इतनी पॉपुलेशन में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। बट यहीं पर ही प्लीज डोंट शाई फ्रॉम दिस, आगे बढ़िए, अपने टीचर्स के पास जाइए, अपने प्रोफेसर्स के पास जाइए, उन्हें बताइए कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं और वो भी आपको उतनी ही मदद करेंगे जितने की गवर्नमेंट करेगी।
0: और अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं भी कर पाते तो भी कोई नहीं मेरे दोस्त, खेलिए, बाहर निकलिए। और ये जो मोबाइल हाथ में देके आप बहुत सारे गेम ऑनलाइन खेल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए इन्हें। और जैसा कि हमने भी बात करी, स्पोर्ट्स टूरिज्म, दिस इज द परफेक्ट वर्ड। और अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो कम से कम एक दिन तो उसके लिए निकाल लीजिए।
1: बिल्कुल, सो ट्रू।
0: और अब रुख करते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतियोगी परीक्षाओं के शिक्षकों और छात्रों को एमपीएससी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र लोक स्वास्थ्य विभाग जिला सर्जनों और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए वार्षिक वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करेगा। पिछले 3 वर्षों में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन 100 अंकों के पैमाने पर किया जाएगा और इसे ए, बी, सी और डी ग्रेड में वर्गीकृत किया जाएगा। अगली खबर, मुंबई मेट्रो रेल निगम ने गणेशोत्सव के दौरान मेट्रो लाइन 3 यानी एक्वा लाइन पर सेवाएं आधी रात तक बढ़ाने का फैसला किया है। 14 से 25 सितंबर तक कफ रोड और आर ए जेवलियार स्टेशनों से मेट्रो का आखिरी जो सेवा है वो 10:30 बजे के बजाय आधी रात तक के लिए होगी।
1: जी, एंड मूविंग ऑन टू हैदराबाद मेट्रो, द मॉनसून सेशन ऑफ द तेलंगाना असेंबली कमेंसिंग टुडे सेट फॉर अ टर्बुलेंट स्टार्ट विद द रूलिंग कांग्रेस, मेन ऑपोजिशन बीआरएस एंड बीजेपी प्रिपेयरिंग टू कन्फ्रंट वन अनदर ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। एसर्टिंग हिज गवर्नमेंट्स रेडीनेस टू डिबेट ऑल मैटर्स, चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी एक्यूज्ड बीआरएस प्रेसिडेंट के चंद्रशेखर राव of remaining confined to his farmhouse and avoiding assembly proceedings since his party's electoral defeat. Reddy challenged Rao to attend the session and discuss the performance of the current administration's first 1,000 days alongside the previous BRS regime's decade-long tenure. Rejecting the criticism, BRS working president KT Rama Rao released a charge sheet highlighting unfulfilled election guarantees, pointing to growing distress among farmers, youth and women. The opposition plans to raise key issues including pending tuition fee reimbursements and student incentive schemes.
0: Kolkata hamesha se hi hamare desh ka ek sanskritik shahar raha hai, phir chahe usme cinema ho ya phir natak ho ya phir sangeet ho. Isi ke chalte mahan महान अभिनेता उत्तम कुमार के जन्म शताब्दी समारोह का पहला चरण कल संपन्न हुआ। नंदन वन, नंदन टू और राधा स्टूडियो में फिल्म स्क्रीनिंग के साथ दोपहर में शिशिर मंच पर उत्तम कुमार की स्मृति में एक विशेष चांदी का सिक्का

0: जारी किया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती, दिग्गज अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी और प्रसन्नजीत चटर्जी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया।
1: जी
0: पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना और मौसम का रुख करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कल जिस तरह की बारिश हुई थी वो भी आज दिल्ली में कहीं कहीं देखने को जरूर मिलेगी। तापमान 24 डिग्री और 34 डिग्री के बीच रहेगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी मानसूनी रंग जो है वो छाया रहेगा। तापमान 26 डिग्री और 32 डिग्री। और जिस तरह से हम हर बार कहते हैं कि भाई बारिश तो मुंबई वालों की दोस्त है, सहेली है, तो उसे वो हमेशा साथ लेके ही चलते हैं। कोलकाता में भी लगभग यही हाल है। बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना और तापमान 26 से 32 डिग्री, करीब करीब एक जैसा हाल तीनों शहरों का।
1: एंड चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, वेल द मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, वेल द मैक्सिमम मे रीच 32 डिग्री सेल्सियस। एंड हैदराबाद will also have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius, while the maximum may reach 32 degrees Celsius.
0: और अब बातें आज के दिन के इतिहास की।
1: जी, and today, Naveen, we are observing a very special day, जो कि हम दिल्ली वालों को बहुत कम ही देखने को मिलता है, but still. We are observing the International Day of Clean Air for Blue Skies, also known as the Blue Sky Day.
0: Wow, ये बहुत अच्छा है भाई।
1: So observed annually on 7th of September, the day aims to raise awareness about air pollution and its impact on human health and the environment. The day was established by the United Nations General Assembly in 2019 and was first observed in 2020. It calls for stronger efforts to reduce air pollution and promote clean and sustainable practices. It also reminds us that clean air is a basic necessity and a shared responsibility for a healthier and sustainable future.
0: तो अगर आप आज इस दिन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात कीजिए, रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए और नंबर को देखते रहिए, 10 सेकंड पहले ऑन कर लीजिए, कहीं ना कहीं हम कुछ तो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना।
1: और दिवाली भी आने वाली है एक दो महीने में, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि पोल्यूशन कम से कम हो,
0: नहीं तो अगले तीन महीने दिल्ली वालों के लिए कैसे गुजारने पड़ सकते हैं हम सब जानते हैं ना।
1: बिल्कुल। सो लेट्स गो ऑन टू मोर इवेंट्स that happened on this day in history. And beginning with the year 1812, the Battle of Borodino was fought between Napoleon's French army and Russian forces during the Napoleonic Wars.
0: आज के दिन सन 1822 में दक्षिण अमेरिका के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन का रूप है। इसी दिन ब्राजील ने पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
1: One canal, two oceans, huge global importance. The day 7th of September 1977, the United States and Panama signed treaties providing for the eventual transfer of control of the Panama Canal to Panama.
0: 7 सितंबर 1927 टेलीविजन के इतिहास का बहुत बड़ा दिन। अमेरिकी आविष्कारक फिलो फॉन्सवर्थ ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण सफलता आज ही के दिन हासिल की थी। और सोचिए, आज हम जब मोबाइल पर लाइव टीवी देखते हैं, ओटीटी देखते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कहा कभी किसी ने सोचा था कि ये सब पॉसिबल होगा, लेकिन हुआ
1: है ना। And finally, one of the most memorable moments in India's space journey on this day, 7th of September 2019, ISRO's Chandrayaan 2 mission attempted to land the Vikram lander on the moon. The lander lost communication during the final phase of its descent.
0: 7 सितंबर 1940 द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे भयावह दौर। इसी दिन जर्मन वायुसेना ने ब्रिटेन और खासकर लंदन पर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू की थी, जिसे इतिहास में द ब्लिट्स के नाम से जाना जाता है। और बात आज के दिन सन 1936 की, ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट चिड़ियाघर में आखिरी ज्ञात थैलासीन, जिसे थैलासीन टाइगर भी कहा जाता है, बेचारा गुजर गया था। उसका नाम बेंजामिन था और इसके बाद ये प्रजाति विलुप्त मानी जाती है। तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की, उन व्यक्तित्व की जो आज से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि कुछ तारीखें कैलेंडर पर होती हैं और कुछ तारीखें इतिहास में। तो आज की तारीख में सबसे पहले हम याद करेंगे सुनील गंगोपाध्याय को। आज ही के दिन सन 1934 में उनका जन्म हुआ था। बांग्ला साहित्य के बेहद लोकप्रिय साहित्यकार, कविता, उपन्यास, पत्रकारिता, ये सब उनकी देन थी। और उनके लेखन में प्रेम भी था। जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें पढ़ते हैं, उनके साहित्य को भी जानते होंगे।
1: Yes, and today we are paying tributes to Warren William Zevon, who was an American rock singer, songwriter, and musician. Zevon's most famous composition.

0: अरब बात एक ऐसी महिला की जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं के जीवन को बदलने की दिशा में काम किया। आज ही के दिन सन 1933 में उनका जन्म हुआ था। नाम ईला रमेश भट्ट। उन्होंने भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन यानी सेवा की स्थापना की थी। वो उसकी संस्थापक रही हैं और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है।
1: And today we are also paying tributes to Jennifer Kendall Kapoor, who was an English actress and founder of the Prithvi Theatre. She was nominated for the BAFTA Award for Best Actress in a Leading Role for the film 36 Chaurangi Lane. And her other film appearances are Bombay Talkie, Junoon, Heat and Dust. And here we are listening to the song Ishq Ne Todi Sar Par Qayamat. The music director was Vanraj Bhatia and the singer is Muhammad Rafi. So from the movie Junoon, let's listen into this beautiful song.

0: आजी जयंती है संस्कृत के महान विद्वान दार्शनिक और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के गहरे अध्येता गोपीनाथ कविराज की। आज ही के दिन 1887 में उनका जन्म हुआ था और आज ही जन्म हुआ था बानो जहांगीर कोयाजी का, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक और परिवार नियोजन विशेषज्ञ थी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने इस संदर्भ में।
1: Today is the birthday of Mohammad Kutty Paniparambil Ismail, better known as by the stage name Mammootty, who is an Indian film actor and producer who works in Malayalam cinema. And Naveen, he has won 3 National Film Awards for Best Actor, 7 Kerala State Film Awards and 13 Filmfare Awards South, and the Government of India awarded him with the Padma Shri 1998. So let's listen into a beautiful song featured on Mammootty, by sung by യേശുദാസ്।
2: മണിക്കുട്ടി കൂറുമ്പുള്ള ഒരു അമ്മിണി പൂവാലി, നിന്നെ പാട്ടു പഠിപ്പിച്ചതാരടി വായാലി,

और अब मिलिए भारतीय सिनेमा की एक ऐसी महिला से जिनके लिए शायद एक ही परिचय काफी नहीं है, पी भानुमति। पलिवई भानुमति रामकृष्णन तेलुगु सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जानी जाती हैं। तेलुगु और तमिल भाषाओं की 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, अभिनेत्री, निर्देशक, संगीत निर्देशक, गायिका और निर्माता।

0: निर्देशक ऐसे होते हैं रेणु जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि अपने दौर की धड़कन को पर्दे पर उतार देते हैं
1: जी।
0: और उन्हीं में से एक थे बी आर इशारा जिनकी आज जयंती है। खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, कई खूबसूरत गीत उनकी फिल्मों के थे। सबसे पहले इस गीत से उनको याद करते हैं, रस्म उल्फत को निभाए न बने।

बी आर अशारा की फिल्मों में रिश्तों की उलझन थी, सामाजिक सवाल थे और समय के बदलते हुए शहरी जीवन की झलक थी। और अब ऐसी कहानियों के साथ हमेशा आशा, प्रेम और जुदाई के गीत तो जुड़े रहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है उनकी फिल्म का चलते चलते। आइए उस गीत के साथ हम उन्हें याद करते हैं।

0: आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही, एक छोटी सी बात याद रखिएगा। हो सकता है कि हम इतिहास की किताब में अपना नाम ना लिख पाए, लेकिन अपने आसपास की दुनिया में एक अच्छी कहानी जरूर लिख सकते हैं जो जिंदगी भर लोगों को हमें याद दिलाती रहेगी। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। अब मुझे और रेनू को दें इजाजत।
1: एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स के

0: संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together,

0: पॉसिबिलिटीज बिकम प्रोग्रेस।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
2: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
3: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
4: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे, ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान।

0: अरब टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज स्पेशल बिकॉज इट रेस्ट्स अपॉन स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC Plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent

0: M17117 from 9:30 p.m. onwards tonight. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Abhishek. ISRO says it will not be privatized nor its importance be diminished, reports the Pioneer. The Asian Age quoting Union Home Minister Amit Shah says drug-free India by 2029 roadmap is ready. The Tribune quotes Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS Chief Mohan Bhagwat as saying love, not hatred, drives RSS work. 135 films, 40 countries, JNK hosts first international film festival from today, informs the Economic Times, adding prominent Bollywood personalities expected to attend 4-day event. Schools in Delhi to remain closed on Friday for BRICS summit, states the Times of India. And finally, the Statesman quoting Brazilian football legend and 2002 FIFA World Cup winning captain Cafu as saying need to promote football alongside education from school level. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satyaniketan building collapse incident, FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for the AFC Under-20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की खास अहमियत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन इमारत इन्हदाम हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसरो ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात का मकसद एक वसी तर मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाति भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है और इसे इको निज़ाम की वसत और सलाहियत में इजाफे के तौर पर देखा जाए न कि निजकारी के जरिए से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई बरसों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मैखों के साथ मिलकर दोनों ममालिक एक खसूसी आलमी दिफाई शराकत दारी की तामीर कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेरिस में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के इफ्तिताह के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत AI और दिफा से लेकर खला और आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई तक दोनों ममालिक मिलकर एक नई रफ्तार और नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ये साल इख्तरा के भारत फ्रांस साल के तौर पर मना रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी की एक खसूसी नौयत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है।
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: उन्होंने कहा कि तारीख फ्रांस में भारतीय सिपाहियों की कुर्बानियों की गवाह है, एक ऐसी तारीख जो इज्तिमाई यादों और जज्बात में पिन्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग जबानों में दिलचस्पी रखते हैं वो ये भी जानते हैं कि फ्रांसीसी दानिश्वरों ने संस्कृत को फरोग देने और मकबूल आम करने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अजीमुशान बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर की शक्ल में भारत फ्रांस गहरे सकाफती ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा किया जा रहा है।
3: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
2: वजीर आजम ने कहा कि आजकल भारत फ्रांस मुश्तरका प्रोजेक्टों के इम्कानात पर काफी बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस इम्कान में भी एक नए पहलू का इजाफा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर मेड इन इंडिया है जबकि इसे फ्रांस में तामीर किया गया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत मुनदम होने के वाकये की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच का हुक्म दिया है और इस इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत जारी की है। वजीर आला के दफ्तर ने बताया कि यह फैसला जाय हादसा के जायजे और इस वाकये की इब्तदाई जांच के बाद किया गया है। वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि इस अलमनाक वाकये के जिम्मेदार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल रात जाय हादसा से एक और लाश निकाले जाने के बाद इस वाकये में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। एनडीआरएफ, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और दीगर एजेंसियां तलाश और बचाव की कार्रवाई में मसरूफ हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता से बात की। जनाब शाह ने बताया कि जख्मियों को तमाम जरूरी इमदादी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने जाय हादसा का मुआयना किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इस इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम जारी था। इस अलमनाक वाकये के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने कयासाराइयों और गुमराहकुन मालूमात पर मबनी मीडिया में गर्दिश करने वाली इन खबरों पर वजाहत जारी की है कि इसरो को प्राइवेट करने या इसके रोल को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो इसे प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और न ही इसकी अहमियत को किसी तरह कम किया जाएगा। तंजीम ने यह भी कहा कि खला में प्राइवेट शोबे की शराकत का मकसद यह है कि इसरो भारत के खलाई प्रोग्राम के अगले दौर में पुख्ता टेक्नोलॉजीज और सलाहियतों में इजाफा करने के साथ साथ अपनी सरगर्मियों को मजबूत तर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे। इसरो ने कहा कि खलाई शोबे की असलाहत का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निज़ाम तश्कील देना है। इसरो ने कहा कि भारतीय सनत अपनी पुख्ता सरगर्मियों में इजाफा कर सकती है, इससे बड़े पैमाने पर पैदावार तिजारती अंदाज इख्तियार करने, इख्तरा और आलमी मार्केट तक रसाई की जा सकेगी और इसरो की साइंसी और तकनीकी अफरादी कुव्वत, जदीद तरीन तहकीक, अगले दौर की टेक्नोलॉजीज और पेचीदा कौमी मिशनों पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का इनेकाद उमूर दाखिला की वजारत के बैन रियासती काउंसिल का सेक्रेटरिएट करेगा और इसकी मेजबानी गोवा सरकार करेगी। मगरबी जोनल काउंसिल गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, नीज मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली, नीज दमन और दीव पर मुश्तमिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: इस मीटिंग में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के वज़राए आला और सीनियर वज़रा शिरकत करेंगे। दादरा और नगर हवेली, नीज दमन व दीव के नुमाइंदे भी इसमें हिस्सा लेंगे। मीटिंग में ऐसे मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा जिनके हल के लिए रियासतों के दरमियान या मरकज़ रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी है। کونسل کے اس پلیٹ فارم سے باہمی تالمیل میں اضافہ کرنے اور مشترکہ مفادات کے معاملات پر یکجا ہو کر آگے بڑھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ میٹنگ میں مرکز اور ریاستوں کے سینئر افسران بھی موجود رہیں گے۔ اس کے بعد امیت شاہ گوا پولیس کو پرچم عطا کریں گے۔ پنجی سے نکھل اپادھیائے کی رپورٹ۔

0: रूट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता करेंगे। आज रियासत के उनके दौरे का आखिरी दिन है। हुसूलियाबी की यह तकरीब रियासती पुलिस फोर्स के लिए एक फखरिया लम्हा होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ये तकरीब तलाई गांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद की जाएगी। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या राष्ट्रपति का निशान पुलिस फोर्स को दिए जाने वाले आला तरीन एजाजात में शामिल है। गोवा पुलिस के लिए ये एजाज खुद को वक्फ कर देने वाली खिदमात, उसूल पसंदी और रियासत के अवाम के तई साबित कदमी का एतराफ है। इस तकरीब से पहले जनाब अमित शाह मगरबी जोनल कौंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें इलाकाई अहमियत के मामलों पर बातचीत की जाएगी। निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ओपेक प्लस के 7 असल ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान में कल वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद आलमी मार्केट में तालमेल और मजमुई हालात का जायजा लेना था। उन्होंने आलमी गैर यकीनी सूरतेहाल के दौरान अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। पेश है एक रिपोर्ट।
0: ये फैसला ओपेक प्लस की तरफ से तेल की पैदावार में सितंबर के महीने में तकरीबन 188,000 बैरल रोजाना के इजाफे के बाद किया गया है। ये इजाफा तेल की पैदावार में तकरीबन 10,65,000 बैरल रोजाना की रजाकाराना कटौती के अमल को पूरा करने के बाद किया गया है। अमल का यह सिलसिला 2023 में शुरू हो गया था। ये मीटिंग ईरान और आबनाए हुरमुस के आसपास तनाज़े में मुलविस मुल्कों समेत तेल बरामदात में लगातार रखना अंदाजी के पस मंज़र में मुनक़द की गई है। इस रुकावट की वजह से आलमी तेल सप्लाई और तेल की कीमतों से मुतालिक ओपेक प्लस की पैदावार के फैसलों पर महदूद तौर पर असर पड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस साल मई में इत्तेहाद से अलग हो गया था। उसने कहा था कि वो कौमी मफाद और मार्केट की अशद ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौसर तौर पर तआवुन का पाबंद है। उम्मीद है कि ओपेक प्लस की मीटिंग मार्केट के हालात और पैदावार की सतह का जायज़ा लेने के लिए अक्टूबर में मुनक़द होगी। ईशानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: ईरान के सरकर्दा अफसर ने ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में आबनाए हुरमुस से बाहर एक नए पाबंदी वाले इलाके का ऐलान किया जाएगा और उनके साथ राब्ता किए बगैर इस इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को ईरान की बंदिशों वाली फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा कि ये इलाका अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी की हद से खलीज फारिस के इलाकों की हद तक होगा। जो जहाज किसी भी तरफ से आबनाए हुरमुस की तरफ जाएंगे और इस इलाके में दाखिल होंगे, उन्हें बंदिशों का सामना करना होगा। ये बात ईरान के सरकारी मीडिया ने बताई है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी को आज आकाशवाणी पर लाइव नशर किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन इसे दिन में 2 बजे से रात 10 बजे तक नशर करेगा। ये नशरिया मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों पर दस्तियाब होगा। सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी नदी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पानी की सतह के पेश नजर हुक्काम करीबी नजर रखे हुए हैं। पटना में मुख्तलिफ घाटों पर दरिया की आबी सतह खतरे की बुलंद तरीन सतह को पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। 24 जिले अब भी सैलाब से मुतासिर हैं और कई नदियों में अब भी तुखियानी है। इंतजामिया ने गर्रा और ककरा नदियों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। इधर मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फुटबॉल में भारत ने 20 साल तक की उम्र के AFC एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत को यह कामयाबी 20 साल में पहली बार हासिल हुई है। उसने ताशकंद में ग्रुप बी के अपने फाइनल क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। AFC का 20 साल तक की उम्र का यह एशियन कप टूर्नामेंट चीन में अगले साल 24 मार्च से 10 अप्रैल तक खेला जाएगा। बैडमिंटन में सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल शेंजेन में चाइना मास्टर्स में मर्दों के डबल्स का खिताब हासिल कर लिया। भारतीय जोड़ी ने इस फाइनल मैच में चीन की हे जिन तिंग और रेंग जियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से हराकर चाइना मास्टर्स का पहली बार ये खिताब जीत लिया। इस जोड़ी का इस सीजन का ये दूसरा

यदि किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो चिंता क्यों करें, और यदि समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो चिंता करना आपको कोई लाभ नहीं देगा। म्यूजिकल दिल्ली सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 8:46 और 12 सेकेंड। पूजा है आपके साथ, स्वीकार करें मेरा नमस्कार।

0: अलग अलग मैसेजेस हैं
1: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
5: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने

0: संभाल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आठ बजकर 53 मिनट और 50 सेकेंड म्यूजिकल दिल लगी में अब सुनते हैं जाबाज फिल्म से सपना और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 मरीजों को चिकित्सा के लिए लाया गया। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में मृत्यु हो गई। 3 घायलों का इलाज जारी है। एक घायल की सर्जरी की गई है, जबकि एक अन्य को निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री

0: म्यूजिकल दिल लगी लेकर नीतू हाजिर है। ये है आकाशवाणी एफएम गोल्ड, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, तो कुछ अच्छा सा म्यूजिक भी हो जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अली बाबा 40 चोर के इस तड़कते भड़कते गाने से और फिर आगे बढ़ेंगे।
1: खतों में

जिंदगी में चॉइसेस जितनी कम हो ना उतना अच्छा रहता है, वरना इसी तरह जैसे ये परेशान हो रही है ना, वैसे ही परेशानियां आपके सामने आती चली जाती हैं। आप देखिए, जो जो लोग एडिटर होते हैं ना, उनको पता होता है ये बात कि जितना कम आपके पास रॉ मटेरियल होता है ना, उसमें से काट छाट करना उतना ईजी हो जाता है, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, किसको छोड़ें किसको लें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही गानों के साथ भी होता है कि कौन से गाने ले, क्योंकि हमारे पास बहुत वैरायटी है। तो चलिए अभी अगला गाना भी आशा जी की आवाज़ में सुनते हैं।

दीवाना दीवाने को समझाने दो

हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर, टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दशमलवी आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं नीतू आपके साथ. और आज है 7 सितंबर. आज ही है वर्ल्ड डुशेन अवेयरनेस डे. डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज है जो कि एक बेहद दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है जिसकी पहचान करना और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिन का उद्देश्य है. आज ही है इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन जिसका उद्देश्य दुनिया भर की पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और सीमा पार अपराध, आतंकवाद और अन्य वैश्विक जो चुनौतियां हैं, विश्व भर में जिस तरह की चुनौतियां होती हैं उनसे मिलकर निपटने के महत्व को रेखांकित करना. ये सारे दिन और भी कई दिन हैं आज जो मनाए जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे. फिलहाल गाना सुनते हैं. आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी नीतू के साथ.

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग

0: मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

कुछ चीजों के बारे में ना हमें पता होता है कि वो वैसी हैं और वैसी ही रहेंगी, जैसे कि सूरज है, वो सूरज पूरब से ही उगेगा और पश्चिम में ही ढलेगा। जो हफ्ते की शुरुआत है, वर्किंग डेज की शुरुआत, वो सोमवार से ही होगी। ऐसे ही हमारे मन में पौधों की जो छवि है ना, वो यही है कि पौधों में जड़ होती है, तना होता है, टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं। लेकिन हम जितना जानते हैं ना कुदरत, उतना ही हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कुछ भी नहीं जानते। हाल ही में थाईलैंड के जंगलों में वैज्ञानिकों ने एक अनोखे फूल वाले पौधे की प्रजाति खोजी है। अब इसमें अनोखा क्या है, इसमें पत्तियां, शाखाएं और हरा रंग नहीं होता। ये ज्यादातर समय जमीन पर गिरी पत्तियों के नीचे छुपा रहता है और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। तो ये भोजन के लिए सूरज पर नहीं, जमीन की फंगस पर निर्भर करता है। इस प्रजाति का नाम वैज्ञानिकों ने रखा है तिस्मिया डेमोना, वैसे इसे डेविल फ्लावर भी कहा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नया अनोखा मिलता है ना, तो कैसे हमारे जो विश्वास हैं वो टूटते चले जाते हैं। लेकिन ठीक है, फूल है, फूल कैसा भी हो अच्छा ही लगता है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू के साथ ये है म्यूजिकल दिल लगी।

ऐसे नज़ारे, ऐसी हवा भी तो होनी चाहिए ना, और इसीलिए बहुत सारे लोग अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली का पहला कार्बन गार्डन विकसित किया गया है। इसका मकसद है हवा और मिट्टी दोनों को प्रदूषण से बचाने के लिए इस ऐसा मॉडल तैयार करना जिसे छोटे शहरी क्षेत्रों में भी अपनाया जा सके। इस गार्डन में कई प्रकार के पौधे और जैविक तत्वों का एक ऐसा संयोजन किया गया है जो कि हवा को शुद्ध करने में असरदार है। और साफ स्वच्छ हवा कितनी जरूरी है ये हम सब जानते हैं, इसीलिए दुनिया भर में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हम वायु प्रदूषण से बच सके। स्वच्छ हवा के महत्व को समझने, समझाने और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हर साल 7 सितंबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई।

दुनिया भर में ना पहली बार एक बदलाव देखने को मिल रहा है, वो ये कि दुनिया में अब 5 साल या उससे छोटे बच्चों की तुलना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो गई है। लेकिन एक और बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि ज्यादातर बुजुर्ग अकेलापन फील करते हैं। अमूमन माना जाता है कि बुजुर्ग अपने साथी को मिस करते हैं, लेकिन सर्वे में एक बात सामने आई है कि जो बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहते हैं वो सबसे ज्यादा अपने बच्चों को मिस करते हैं, उसके बाद जीवन साथी को, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने दोस्तों को मिस करते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सौ दशमलव एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ। और अब बात करते हैं जरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज ना आजकल बहुत ही बढ़ गया है, हम सब जानते हैं। इंस्टेंट डिलीवरी शुरू जब से हुई है तो लोग खाने पीने का सामान, किराने का सामान सब ऑनलाइन से मंगाने लगे हैं। लेकिन ये सामान खरीदते वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी एक्सपायरी डेट नहीं दी गई होती, ना ही दूसरी जरूरी जानकारियां वहां लिखी होती हैं। इसीलिए FSSAI ने ऐसे ऑनलाइन और तुरंत सामान पहुंचाने वाले मंचों को ये निर्देश दे दिए हैं कि पैकेट पर दी गई जरूरी जानकारियां ऑनलाइन दिखाई जाएं, और इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। लेकिन हमें भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि कंपनियां गलत सामान देने से पहले सोचें। अगर खाद्य संबंधी आपकी कोई शिकायत है तो आप foscos.fssai.gov.in/consumer-grievance पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी।

इंसान को अच्छी चीज़ें खानी चाहिए और अच्छा खान पान होता है, तभी जो है ना हमारी सेहत, हमारा जीवन अच्छा रहता है। और इसी खान पान की आदतों को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए शुरुआत की गई ईट राइट इंडिया मूवमेंट की, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है।

ईट हेल्दी, ईट सेफ और ईट सस्टेनेबली। खान पान की आदतें इससे बेहतर होंगी और हम सब स्वस्थ होंगे, एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा तभी। और पता है खाना पीना जब हम अपना थाली आगे रखते हैं ना, तो हमें ये चीज़ देख लेना चाहिए कि उसमें कुछ कलर्स ज़रूर हो। कलर्स जो हैं वो खान पान के साथ साथ हमारी सेहत को भी बढ़ाते हैं।

भी बहुत अच्छा असर डालती हैं। तो इसी एक अच्छी नोट पर नीतू आपसे इजाज़त लेना चाहती है, लेकिन अभी जो है वो चलते चलते आपके लिए गाना छोड़ के जाऊंगी मैं, उस गाने को एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद आप समाचार सुनेंगे और समाचार सुनने के बाद होगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स। दिल का मेलबॉक्स आप जानते हैं एक फरमाइशी प्रोग्राम है, आप अपने मेल हम तक पहुंचाते हैं और उस मेल में आप अपनी पसंद के गीत, उन फिल्मों का नाम अगर आप जानते हैं तो, और वो फिर हम तक पहुंचता है और हम उन गीतों में से कुछ जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल तो हैं लेकिन उनमें से सबकी फरमाइश पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश ज़रूर पूरी होती है हर बार, और उसे मेल भेजने का जो सही एड्रेस है वो है fmgoldair@gmail.com। तो आप मेल भेजिएगा और कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी करने की। फिलहाल इस गाने के साथ रहिए और उसके बाद समाचार सुनिए और फिर लौट कर आइए। अभी नीतू चलती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 मरीजों को चिकित्सा के लिए लाया गया है। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में मृत्यु हो गई। 3 घायलों का इलाज जारी है। एक घायल की सर्जरी की गई, जबकि एक अन्य को निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बीच आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि आरटीआ और बिनोती ज्वारिज मार्ग से आने वाले मार्गों पर भी यातायात प्रभावित होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। श्री शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ओपेक समूह प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर

दिसंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया के उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा, न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल से वार्ता करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कीव में अमरीका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दशकों पहले श्री प्रभुपाद स्वामी जी भी फ्रांस आए थे और इस्कॉन के माध्यम से उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच आध्यात्मिक संबंधों में एक नया अध्याय खोला।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री

0: गृह और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
1: मध्यप्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कल कीव में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: वार्ता के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दे का समाधान अंततः केवल राष्ट्रीय नेताओं के स्तर पर ही संभव हो सकता है। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों, सुरक्षा गारंटी, यूक्रेन के भविष्य और आर्थिक पुनर्निर्माण योजना पर 3 दौर की वार्ता की। विटकॉफ ने बताया कि अमरीकी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई पिछली चर्चाओं से विचार लेकर आया था। उन्होंने कहा कि अमरीका इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान चाहता है। कुशनर ने कहा कि रूस के उद्देश्यों को भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ ध्यान में रखना होगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनी रहनी चाहिए और उन्होंने स्थायी शांति सुनिश्चित करने के मदद के लिए भविष्य की परामर्श बैठकों में यूरोपीय भागीदारों के शामिल होने का स्वागत किया। यह बातचीत अमरीका, रूस और यूक्रेन के बीच जारी चर्चा में गति बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से चाह सिंह।
0: ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
3: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष मई में राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए ओपेक प्लस से अलग हो गया था। उसने कहा था कि वह बाजार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में प्रभावी योगदान देना चाहता है। ओपेक प्लस की अगली बैठक अक्टूबर में होने की उम्मीद है, जिसमें वैश्विक बाजार की स्थिति और तेल उत्पादन की समीक्षा की जाएगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा।
4: सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार जलडमरू मध्य की ओर किसी भी दिशा से आने वाले और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मेजर जनरल रिजाई ने कहा कि ईरान द्वारा जलमार्ग बंद किए जाने के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है। ने यह भी दावा किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया गया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20

0: एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से वार्ता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. External Affairs Minister S. Jayashankar to hold talks with Deputy Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bertel, in New Delhi today. Ukrainian President Vladimir Zelensky meets U.S. Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner in Kyiv to discuss ending Russia-Ukraine conflict. OPEC Plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under-20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: He said history bears witness to the sacrifices of Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swami Narayanan Temple, a new chapter has been added to the India-France deep cultural relationship.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: The Prime Minister said these days there's much discussion about the possibilities of India-France joint ventures. He said the Swami Narayanan Temple has added a new dimension to the possibility as well. He added that this temple is made in India and built in France. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Luxembourg, Xavier Bertel, has arrived in New Delhi for his official visit. The Minister of External Affairs said that Mr. Bertel is scheduled to have a meeting with External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar in the national capital today. In a social media post, MEA spokesperson Randeep Jaiswal said that the visit provides an opportunity to further strengthen the multifaceted relations between India and Luxembourg. Ukrainian President Vladimir Zelensky met with the U.S. Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner.

दिल का मेल बॉक्स लेकर हाजिर है नीतू और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये जो दिल का मेल बॉक्स है, इसमें कैसे शिरकत करना है ये आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देती हूँ कि fmgoldairdelhi@gmail.com ये ईमेल आईडी है। इस पर आप अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश हम तक पहुँचा सकते हैं। जब तक आप ये सब काम करते हैं, जिनकी फरमाइश आ गई है उनका नाम लेकर और उनकी पसंद का पहला गाना मैं आपको सुनवा देती हूँ। ये गाना बहुत ही मशहूर हुआ था अपने ज़माने में और इतना खूबसूरत पियानो बजा है ना इसकी शुरुआत में कि बस पूछे मत। ब्रह्मचारी फिल्म का गाना है ये, दिग्दर्शन और कविता गौड़ की फरमाइश पर ये गाना आप तक पहुँच रहा है।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: दशमलव एक आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें एक के बाद एक मेल आती चली जा रही है और बहुत खुशी होती है आपकी इतनी सारी मेल्स देखकर। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जिसकी मेल शामिल नहीं होती है वो शिकायत करते हैं, तो ये मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की मेल हर रोज नहीं शामिल हो सकती। सबके नाम आते हैं तो अच्छा भी लगता है ना, वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स आपको सुनने को मिलते हैं। तो ऐसा ही एक गीत जो है वो प्राची, प्रवीण, पुजारी, जूली, जगदीश गुजराती और शीशपाल वर्धान की पसंद पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि है फकीरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना सुनना चाहा था सुरेंद्र सिंह रावत और उनके परिवार ने, और इनके अलावा भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल ने। और अब इस प्रोग्राम का आखिरी गाना अब तक पहुंच रहा है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खुदा बख्श, दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल की फरमाइश पर। तो आप इस गाने का आनंद उठाइए। वो सात दिन फिल्म आपको याद है, प्रेम प्रताप पटियाले वाला, उसी फिल्म का गाना है ये। इस गाने को सुनिए, इंजॉय कीजिए, फिर समाचार सुनिएगा और उसके बाद तस्वीर लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का लगभग 80% हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: ये निश्चित है कि बेसमेंट में पानी था और पानी भरने के कारण जो रिपेयर हो रही थी उसके कारण से पुरानी बिल्डिंग थी और वो ढह गई। अभी इसमें 12 लोग जो मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 जो हैं अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स जो हैं हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुखद घटना हुई है।
2: इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69.38 अंक गिरकर 76,446 पर और निफ्टी 14.55 अंक गिरकर 23,883 पर कारोबार कर रहा था। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया।

गुजरात का नाम आते ही ना बस रंग बिरंगी संस्कृति, कलरफुल कपड़े, दांडिया और गर्म जलवायु, रेगिस्तानी इलाके, ये याद आते हैं। और वहीं पर आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां बादल पहाड़ियों को छूते हैं, झील के किनारे ठंडी हवा बहती है और मानसून में तो पूरा का पूरा लैंडस्केप हरियाला हो जाता है। ये कल्पना सच होती है जब आप जाते हैं गुजरात के इकलौते हिल स्टेशन सपुतारा में। इसी की खोजबीन करेंगे आज तस्वीर में। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप हैं नीतू के साथ।

सपुतारा की बात कर रहे हैं आज हम तस्वीर में। सपुतारा का अर्थ है सांपों का निवास स्थान। यहाँ सर्प गंगा नदी के किनारे एक मूर्ति भी है जिसकी पूजा आदिवासी लोग होली के त्योहार पर करते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा सपुतारा एक वेल प्लान्ड हिल रिजॉर्ट के तौर पर विकसित किया गया है। यहाँ होटल्स हैं, पार्क हैं, स्विमिंग पूल, बोट क्लब, थिएटर और आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो कि ज़रूरी होती हैं ऐसी जगह पर। रोप वे भी है यहाँ पर और म्यूज़ियम भी, ताकि आप यहाँ के पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच सबका मज़ा ले सकें और अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकें।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सपुतारा की बात हो रही है और उसकी यात्रा की शुरुआत आप कर सकते हैं सपुतारा झील की सैर से। चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों से घिरी इस झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जाइए सनसेट और सनराइज पॉइंट, यहां से आपको पहाड़ियों और घाटियों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा। सपुतारा है गुजरात में और आज हम इसी की बात कर रहे हैं तस्वीर में। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर मैं हूं आपके साथ नीतू, और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो रोप वे, ट्रैकिंग और नेचुरल ट्रेल्स जो हैं वो आपके पास उसके भी विकल्प मौजूद हैं। आप अगर यहाँ के ट्राइब्स के इतिहास, जीवन शैली, संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो सपुतारा म्यूजियम देखिए। यहाँ सपुतारा की डांग जनजाति से जुड़ी कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।

है सपुतारा की। मॉनसून में यहाँ सपुतारा मानसून फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान आपको डांग जिले और गुजरात की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। स्थानीय लोक प्रस्तुतियाँ, ट्राइबल डांस, स्वादिष्ट क्षेत्रीय व्यंजन और गुजरात की समृद्ध विरासत को आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और मौसम में जा रहे हैं और आप यहाँ की कलाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आपको जाना होगा आर्टिस्ट विलेज, जहाँ आप स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ और उनके बनने के तरीकों को भी जान सकते हैं। और आपको कुछ पसंद आए तो खरीद भी सकते हैं। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो भी हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट है ना, उसमें से आपको कुछ पसंद ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका यहाँ भी दिल्ली में भी आपको तरह तरह की आर्ट दिखते हैं, तो ऐसा लगता है सब कुछ आप उठा लें वहाँ से, सब कुछ खरीद लें, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। पर हाँ, वहाँ जाएंगे तो आपको सच में अच्छा लगेगा देखकर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है तस्वीर, मैं हूं नीतू आपके साथ। और शहद की बात करें तो हम सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बनने की प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता। तो अगर आपको उस प्रक्रिया को जानना हो तो भी आप सपुतारा जा सकते हैं, वहां के हनी बी सेंटर में जाइए और यहां सिर्फ मधुमक्खियों को पालने की बारीकियों को ही नहीं जानेंगे आप, बल्कि छत्तों से शहद कैसे निकाला जाता है, फिर उसको कैसे हम तक पहुंचाया जाता है, ये सारी प्रक्रिया आप वहां देख सकते हैं और चाहें तो वो शहद खरीद भी सकते हैं। सपुतारा में एक स्टेप गार्डन भी है, जो कि बहुत ही करीने से बनाया हुआ गार्डन है, जिसमें पेड़ पौधे फूलों के अलावा बच्चों के खेलने की जगह और एक कैफे भी है। यानी कि जब आप थक जाएं तो आपको रिफ्रेश होना हो कुछ खा पी कर, तो आप वहां जा सकते हैं और वहां पे आपको वो रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी। सपुतारा की बातें तस्वीर में नीतू के साथ यूं ही जारी रहेंगी। फिलहाल गाने की बारी है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: तस्वीर में सपुतारा की बातें हो रही हैं और सपुतारा से जरा सा बाहर निकलेंगे तो करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है गिरमल वाटरफॉल, जिसका पानी 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये गुजरात का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल है पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल में। मानसून में इसका फोर्स जो है वो इतना ज्यादा होता है कि गिरते हुए पानी से फॉग बनता है, और जब इस पर धूप की किरणें पड़ती हैं तो आप यहाँ इंद्रधनुष बनते हुए भी देख सकते हैं। और ये नज़ारा ना इतना स्पेशल होता है कि इसीलिए इस वाटरफॉल को देखने के लिए आसपास कई सारे व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ से आप आराम से इस विशाल और ऊंचे झरने को गिरते हुए देख सकते हैं। इस इलाके में इंटरनेट काम नहीं करता है, तो अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना होगा तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए कैश आप ज़रूर साथ में रखिएगा। इसके अलावा गिरा वाटरफॉल भी बहुत मशहूर है, जो कि अंबिका नदी में गिरता है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: तस्वीर में नीतू के साथ आप सुन रहे हैं सपुतारा की बातें, और जो कि गुजरात के डांग जिले में है, और डांग जिले में जो गिरा नदी बहती है उसका रास्ता बहुत ही घुमावदार है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब लगता है कि नदी यू टर्न ले रही है, और इस अद्भुत नज़ारे को आप मिस ना कर दें, इसीलिए यहाँ बनाया गया है यू टर्न पॉइंट। डांग फॉरेस्ट में घूमते हुए आपको एक रास्ते के किनारे छोटा सा मंदिर भी दिखेगा जो कि शिवघाट टेम्पल है, और ये स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मॉनसून के सीजन में इसके ठीक पीछे की चट्टान से गिरती छोटी छोटी जलधाराएं एक और झरने से आपको रूबरू कराती हैं। चिमर गांव में आप देख सकते हैं चिमर झरना, ये भी काफी ऊंचाई से गिरता है, और इसी के सामने एक और खूबसूरत झरना है जिसे आप देख सकते हैं। यानी सपुतारा में ना ऐसी कई हिडन लोकेशंस हैं जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो आप अगर किसी ऐसी शांत जगह की तलाश में है ना, तो ऐसी ही जगहों को सपुतारा में आप ढूंढ सकते हैं, और उन्हें तलाशिए और खो जाइए कुदरत की सुंदरता में।

इतना खूबसूरत गाना था ना, चंबल की कसम फिल्म से था ये गाना। और बातें आज हम कर रहे हैं सपुतारा की, और आप वहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो फिर सबसे अच्छा समय तो मानसून है, जब सब धुला धुला दिखता है। बारिश के बाद पहाड़ियाँ जो हैं वो हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं, बादल घाटियों में उतर जाते हैं और आसपास का जो सीजनल वाटरफॉल्स हैं उनमें बहार आ जाती है। लेकिन

उन्हें बारिश पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बारिश में घूमना पसंद नहीं करते हैं, तो वो कभी भी जा सकते हैं, खासकर सर्दियों में। सापुतारा सूरत से लगभग 164 किलोमीटर दूर है और जो निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन है वो भी सूरत में ही है, तो वहां से आप टैक्सी ले सकते हैं, टैक्सी लेकर सापुतारा पहुंच सकते हैं। और ये रास्ता भी बेहद खूबसूरत है, इसलिए ये सफर आपको हमेशा याद रहेगा।

0: राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief ministers and senior ministers

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य

नजर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम के आज की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो सिर्फ प्रकृति का उपहार नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आज का दिन समर्पित है एक ऐसी चीज़ के नाम जो हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, हवा। आज है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीला आकाश दिवस। स्वच्छ हवा हो, आसमान नीला हो, पेड़ों की हरियाली हो और शहरों में सांस लेना आसान हो, इसके लिए बड़े बदलावों के साथ हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी मायने रखती है। पेड़ लगाना, अनावश्यक वाहन का इस्तेमाल कम करना, बिजली और पानी की बचत करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, ऐसे छोटे कदम मिलकर प्रकृति के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। तो आज के दिन से ही संबंधित है हमारा आज का सवाल, पर्यावरण की रक्षा के लिए आपका योगदान क्या होता है। हमें लिखकर भेजिए अपने जवाब, अपने छोटे से प्रयास या कोई ऐसी आदत जो आप प्रकृति के लिए अपनाते हैं। हमें ईमेल भेजिए, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर को फिल्म हमराज से। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रसोई घर से निकलने वाले सब्जियों और फलों के छिलके जो हमें बेकार लगते हैं, वही धरती के लिए सबसे कीमती खजाना बन सकते हैं। इस सोच को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किया है बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता वाणी मूर्ति ने, जिन्हें लोग प्यार से वर्म रानी भी कहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाणी मूर्ति हमेशा से पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं थी, वे गृहिणी थी, लेकिन जब उन्होंने एक विशाल लैंडफिल में कूड़े के पहाड़, दूषित मिट्टी और प्रदूषित पानी को अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने तय किया कि उनके घर का कचरा अब कभी लैंडफिल में नहीं जाएगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने घर में गीले और सूखे कचरे को अलग करना शुरू किया, खाद बनाना सीखा और फिर दूसरों को भी सिखाने लगी। वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट राउंड टेबल के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहीं और वर्षों से लोगों को समझा रही हैं कि कचरे की असली जिम्मेदारी उसी की है जो उसे पैदा करता है। सोशल मीडिया पर उनके छोटे छोटे वीडियो आज युवाओं के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। इनमें से वे रसोई के कचरे को खाद बनाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, छत पर सब्जियां उगाना, प्राकृतिक सफाई के उपाय अपनाना और कम से कम कचरा पैदा करने वाली जीवन शैली सिखाती हैं। और उनकी यही पहल उन्हें नेशनल ज्योग्राफिक के वन फॉर चेंज अभियान तक भी ले गई। वाणी मूर्ति का संदेश बहुत ही सिंपल है, पृथ्वी को बचाने के लिए हमेशा बड़े अभियानों की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। यदि हर घर अपने गीले कचरे को खाद में बदल दे, प्लास्टिक का उपयोग कम कर दे और जिम्मेदारी से कचरे का प्रबंधन करे, तो शहरों के कूड़े के पहाड़ अपने आप छोटे होने लगेंगे। तो आज का संदेश यही है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या संस्थाओं का काम नहीं, बल्कि हर घर की छोटी छोटी आदतों से शुरू होने वाली एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और शायद बदलाव की शुरुआत हमारे अपने रसोई घर से ही हो सकती है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी हरियाली और रास्ता। और कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत मुस्कान से होती है, लेकिन उसे लंबे समय तक निभाने के लिए केवल आकर्षण या प्यार ही काफ़ी नहीं होता है। एक और चीज़ है जो रिश्ते को गहराई देती है और वो है बौद्धिक सामंजस्य, इंटेलेक्चुअल कॉम्पैटिबिलिटी। हम अक्सर स्वभाव, आदतों और पसंद नापसंद की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना कितना सुंदर अनुभव है, जिसके साथ आप घंटों बातें कर सके, जहां बातचीत केवल मौसम, खरीदारी या दिन भर की घटनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि किताबों, यात्राओं, विज्ञान, कला, समाज, इतिहास, सपनों और जीवन के अनुभव तक पहुंचे। बौद्धिक सामंजस्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों की डिग्री एक जैसी हो या दोनों बहुत विद्वान हो। इसका अर्थ है एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, नई बातें सीखने की जिज्ञासा रखना और बिना किसी अहंकार के एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहना। सोचिए कितना खूबसूरत रिश्ता होगा जहां पे एक दूसरे को नई किताबें सुझाएं, कोई रोचक तथ्य बताएं, किसी विषय पर चर्चा करें, किसी समस्या का समाधान साथ मिलकर खोजें और हर बातचीत के बाद महसूस करें कि आज कुछ नया सीखा है। ऐसे रिश्तों में बहस जीतने की नहीं, समझ बढ़ाने की कोशिश होती है। मतभेद भी होते हैं लेकिन मनभेद नहीं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अलग सोच होना गलत नहीं है बल्कि सीखने का अवसर है। जब दो लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, नई कौशल सीखने का उत्साह जगाते हैं, एक दूसरे के सपनों का साथ देते हैं और हर एक दिन एक दूसरे को पहले से बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, तब रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, साथ बढ़ने का बन जाता है। और याद रखिए दोस्तों, सुंदर चेहरा

के साथ बदल सकता है, फैशन बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन अच्छी बातचीत, गहरे विचार और एक दूसरे से सीखते रहने की आदत रिश्ते को हर दिन नया बनाए रखती है। इसलिए अपने रिश्तों में समय नहीं संवाद भी निवेश कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछिए जो सोचने पर मजबूर करे। साथ में पढ़िए, नई जगह देखिए, नई बातें सीखिए, क्योंकि जब दो लोग साथ साथ सीखते हैं तो उनका रिश्ता भी साथ साथ विकसित होता है। और आज का सवाल एक बार फिर से बता दूं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपका योगदान क्या होता है। अपने जवाब हमें ईमेल भेजिए। ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म शर्मिली से, और हमारे सवाल के जवाब आ चुके हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और चरण दास जी लिखते हैं कि मैं सामान लाने के लिए कपड़े का थैला साथ रखता हूँ, खेत में फसल के अवशेष कभी नहीं जलाए, पेड़ों के नीचे से गुठली उठाकर इधर उधर लगा देता हूँ, कभी पटाखे नहीं जलाता हूँ, बस या रेल से सफ़र करता हूँ। और चरण दास जी लिखते हैं कि चरण दास जी का मेल तो मैंने पढ़ लिया। श्रीपाल गोयल जी लिखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे पहले हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, कपड़े के थैले का उपयोग करें, निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें ताकि प्रदूषण ना हो। और उसके बाद हनी रे लिखते हैं कि वी कैन स्टार्ट सिंपली विथ टेकिंग स्टील स्ट्रॉज, यानी आप जहां भी जाएं अपने साथ जो स्ट्रॉज होते हैं प्लास्टिक के उसके बदले स्टील के स्ट्रॉ ले जाएं, और जो कोकोनट होते हैं उसके शेल इधर उधर ना फेंके, गार्बेज में ही डालें। और सुदर्शन मुखी जी लिखते हैं कि हवा शुद्ध रखने के लिए हमने घर में बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बिजली पानी बहुत सोच समझ कर उपयोग करते हैं और ईवी स्कूटी चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। और उसके बाद और भी हमारे पास मेल्स हैं। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि ऊर्जा की बचत, डिजिटल जागरूकता फैलाना और कागज रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना। और उसके बाद अनन्या श्रेष्ठा जी लिखती हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी कोशिश करती हूँ, मैं पानी और बिजली बर्बाद नहीं करती, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करती हूँ, पेड़ पौधे की देखभाल करती हूँ। और उसके बाद चरणदास जी ने लिखा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण सबसे बड़ी दौलत है, रुपया पैसा अपने आप कमा लेंगे, निर्मला देवी प्रीति चौधरी जी। और उसके बाद ऐना लिखती हैं, नमस्ते, मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूँ, साथ ही मैं अपने आसपास सफाई रखती हूँ और दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करती हूँ, क्या बात है। संदीप राय जी लिखते हैं कि मैं पेड़ पौधों की देखभाल, अधिक से अधिक पेड़ लगाने में योगदान देता हूँ, पानी और बिजली के बर्बादी नहीं करता, प्लास्टिक का कम उपयोग करता हूँ, कूड़े को इधर उधर ना फेंक कर गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने का प्रयास करता हूँ, छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करके प्रदूषण कम करने में मदद करता हूँ, क्या बात है। और खुशबू कश्यप जी का भी मेल आया है कि उन्होंने मेल इम्टी छोड़ा हुआ है, अभी उसमें कुछ दिख नहीं रहा, चलिए बाद में कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके मेल्स का, और आप अभी भी हमें मेल लिख सकते हैं कि पर्यावरण के योगदान में, जो पर्यावरण की सुरक्षा के में आपका क्या योगदान है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म सरगम से। और दोस्तों, आज साड़ी पहनने के कितने अंदाज हैं, कहीं पल्लू कंधे पर, कहीं बेल्ट के साथ, कहीं जैकेट के साथ, तो कहीं बिल्कुल आधुनिक रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी का ये आधुनिक अंदाज आया कहाँ से? तो साड़ी भारत में सदियों से पहनी जाती रही, जो सांची है, भरहूत है, अमरावती की प्राचीन मूर्तियों में भी बिना सिले कपड़े को बहुत ही खूबसूरती से शरीर पर लपेटने की परंपरा दिखाई देती है। लेकिन आज हम जिस तरह से साड़ी पहनते हैं वो समय के साथ विकसित हुआ। और इस बदलाव की कहानी में एक बेहद खास नाम है, ज्ञानदा नंदिनी देवी। ज्ञानदा नंदिनी देवी रविंद्रनाथ ठाकुर की भाभी थी, यानी उनके भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर की पत्नी थी। वो अपने समय की बेहद प्रगतिशील और कॉन्फिडेंट महिला थी, और उन्होंने सिर्फ सामाजिक सोच को चुनौती नहीं दी बल्कि महिलाओं के पहनावे में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने बम्बई की पारसी महिलाओं की साड़ी पहनने की शैली से प्रेरणा ली, ब्लाउज, पेटीकोट और कंधे पर सलीके से पिन किया हुआ पल्लू, और इस शैली को उन्होंने बंगाली महिलाओं के लिए अपनाया और लोकप्रिय बनाया। और आगे चलकर दोस्तों, यही शैली ब्रह्मिका साड़ी के नाम से जानी गई। और ये बदलाव सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, ब्लाउज, पेटीकोट और पिन किया हुआ पल्लू महिलाओं के लिए साड़ी को एक अधिक सुविधाजनक बनाते थे। उन्हें बार बार पल्लू संभालने की चिंता नहीं रहती थी, वे आसानी से यात्रा कर सकती थी, काम कर सकती थी, पढ़ाई कर सकती थी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकती थी। यानी ज्ञानदा नंदिनी देवी ने साड़ी को छोड़ा नहीं, उसे समय के साथ एक नया रूप दिया जिसने महिलाओं को गतिशीलता और स्वतंत्रता को आसान बनाया। और अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि फैशन के हर दौर में अपना रंग बिखेरती है, साड़ी सिर्फ पहनी नहीं जाती, ये भारत की पहचान बनकर निखरती है।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म थी सिलसिला। और दोस्तों, जो भारतीय विवाह होते हैं उसमें चावल, जिसे अक्षत भी कहा जाता है, केवल एक अनाज नहीं, एक स्टेपल फूड नहीं, बल्कि समृद्धि, अखंडता और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। और यही कारण है कि विवाह जैसे शुभ संस्कार में चावल का बहुत ही खास जगह है। अखंड दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है साबुत चावल। ये संदेश देता है कि नवविवाहित जोड़े का प्रेम, विश्वास और साथ हमेशा अटूट बना रहे। समृद्धि और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। भारत में अन्न को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। चावल उर्वरता, संपन्नता और भरपूर जीवन का प्रतीक है। इसलिए वर वधु पर चावल अर्पित कर उनके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की जाती है। और विवाह के बाद जब परिवारजन नव दंपति पर अक्षत बरसाते हैं तो उसका अर्थ होता है उनके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की निरंतर होती रहे। विदाई के समय दुल्हन द्वारा पीछे की ओर चावल फेंकने की परंपरा ये दर्शाती है कि वो अपने मायके के लिए समृद्धि, सौभाग्य और कृतज्ञता का आशीर्वाद छोड़कर जा रही है। यह भावनात्मक रूप से माता पिता के ऋण और उनके स्नेह के प्रति सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विवाह के बाद होने वाली जो बौ भात होता है उसके रस्म में नववधू पहली बार अपने नए परिवार के लिए चावल परोसती है। और ये इस बात का प्रतीक है कि अब वो इस परिवार की समृद्धि, प्रेम और अन्नपूर्णा का हिस्सा बन चुकी है। और ओडिशा में लाजा होम की रस्म होती है जिसमें वधू अपने भाई द्वारा दिए गए लाजा, यानी जो पफ्ड राइस होते हैं, अग्नि को समर्पित करती है। और ये नए जीवन की मंगल कामना, त्याग और पारिवारिक स्नेह का प्रतीक माना जाता है। साउथ इंडिया में भी कई राज्यों में विवाह के दौरान वर वधू एक दूसरे के सिर पर हल्दी मिले हुए अक्षत डालते हैं। इसे शुभता, प्रेम, समृद्धि और समानता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और वैदिक महत्व भी है। अक्षत को पूजा, यज्ञ और सभी शुभ कार्यों में अनिवार्य माना गया है, क्योंकि ये पुण्यता, पवित्रता और शुभ फल का प्रतीक है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म प्रेमनगर। और दोस्तों, एक ना आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस कई बच्चे और युवा एक अस्वीकृति को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं किसी लायक नहीं हूं, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। और यहीं से माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना किसी असफलता के बाद शुरू नहीं होता, इसकी नींव बचपन से ही पड़ती है। उन्हें सिर्फ जीतना मत सिखाइए, हारना भी सिखाइए। सिर्फ तारीफ सुनने की आदत मत डालिए, आलोचना सुनकर खुद को सुधारना भी सिखाइए। हर मुश्किल से उन्हें बचाइए मत, मुश्किलों का सामना करना भी सिखाइए। और जब कभी बच्चा अस्वीकार हो जाए तो तुरंत ये मत कहिए कि कोई बात नहीं, इससे बेहतर विकल्प मिल जाएगा। उसके पास बैठिए, उसे सुनिए, पूछिए कि तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है। उसकी निराशा को छोटा मत कीजिए, उसे रोने दीजिए, दुखी होने दीजिए, थोड़ा सा समय लेने दीजिए। क्योंकि मजबूत होना भावनाएं छिपाना नहीं है दोस्तों, उन्हें समझकर उनसे आगे बढ़ना है। और माता पिता हर बार बच्चे की ओर से लड़ना भी जरूरी नहीं है। हर असफलता पर शिकायत करना, हर समस्या का समाधान खुद करके देना, हर बंद दरवाजा उसके लिए खोल देना, ये सुरक्षा नहीं, कभी कभी उसकी भावनात्मक ताकत को कम कर देता है। उसे छोटे फैसले लेने दीजिए, गलतियां करने दीजिए, उसके परिणाम को समझने दीजिए और फिर पूछिए, अब इसे ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा सुनिश्चित कीजिए कि जब दुनिया उसको ठुकराए तब उसे घर में एक ऐसी जगह मिले जहां वो बिना डर के कह सके कि मैं हार गया हूं, और जवाब मिले, हार गए हो लेकिन हमारे लिए कम नहीं हुए हो। बच्चे को विश्वास दीजिए कि आपकी मोहब्बत उसके अंकों, नौकरी, सफलता, रिश्ते या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे को बचपन से ही ये भरोसा मिल जाता है कि दुनिया तुम्हें चुने या ना चुने, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो रिजेक्शन से कभी नहीं डरता।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम।

अभी हम सुन रहे थे अमित कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म बातों बातों में। और दोस्तों, हमारे रसोई घर में सिर्फ स्वाद नहीं, सदियों पुराना आयुर्वेद भी पकता है। भारतीय परंपरा में कई ऐसे

जन है जिन्हें आज विज्ञान भी फंक्शनल फूड मानता है, क्योंकि ये केवल पेट नहीं भरते, शरीर को संतुलित भी रखते हैं। जैसे दक्षिण भारत का रसम, और इसे सिर्फ सूप समझने की भूल मत कीजिए, इसमें काली मिर्च, जीरा, लहसुन, इमली और करी पत्ता होते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार ये पाचन को सक्रिय करता है, मौसम बदलने पर गले और जुकाम में राहत देता है, भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और वहीं गुजरात और राजस्थान की

रेशे का अच्छा स्रोत है। गर्मियों में ये शरीर को शीतलता देने के साथ लंबे समय तक तृप्त भी रखता है। कश्मीर का कहवा भी केवल चाय नहीं, केसर, दालचीनी, इलायची और बादाम से बना ये पेय जो है ड्रिंक शरीर में गर्माहट बनाए रखने, पाचन को सहज करने और थकान को कम करने में सहायक माना जाता है। तो अगली बार जब कोई विदेशी सुपर फूड चर्चा में है तो अपनी थाली पर भी एक नजर डालिए, हो सकता है स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खजाना आपके रसोई घर में ही मौजूद हो।

अभी हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर को फिल्म बरसात की एक रात, और इसी गीत के साथ देते हैं आज की खूबसूरत प्रस्तुति को यहीं विराम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने पर्यावरण दोनों का ख्याल। दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न

0: विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, are participating in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the centre and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level could be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's Police Colour to Goa Police. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at 7 premises in Kolkata, Delhi and

गोल्ड चैनल शबनम के साथ है आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में बातें एक ऐसे फिल्मकार की जिन्होंने वक्त से आगे की फिल्म्स बनाई, बीआर इशारा। दोस्तों, बीआर इशारा की फिल्म्स ऐसे विषयों पर थी जिन पर बात करना भी उस जमाने में अजीब माना जाता था। तो बहुत सारे गाने होंगे उनकी फिल्मों से आज।

0: नजर।
1: कानों को सुकून चाहिए तो गाने सुनिए, और अगर आपको कुछ अलग हट के फिल्में देखनी हैं तो बी आर इशारा की फिल्में आप देख सकते हैं, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में शबनम के साथ हैं दोस्तों आज। और आज हम बातें कर रहे हैं फिल्मकार बी आर इशारा की। उनका असली नाम है रोशन लाल शर्मा। हिंदी सिनेमा में उन्हें बी आर इशारा के नाम से जाना गया। उनका जन्म 7 सितंबर 1934 को हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुआ था। बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने छोटे छोटे काम करके गुजारा किया। फिल्मों से जुड़ने का जो शौक था वो उन्हें मुंबई ले आया। मुंबई आने के बाद का जो सफर रहा वो उतना खूबसूरत नहीं रहा जैसा कि दूर से देखने में लगता है। कहा जाता है कि बी आर इशारा के फिल्में बनाने का जो सफर रहा वो भी बिल्कुल फिल्मी था। कैसे उन्होंने करियर शुरू किया बताऊंगी आपको, लेकिन साथ ही साथ गाने, उनके गाने, उनकी फिल्मों के गाने। वैसे आपको कौन कौन से गाने याद आ रहे हैं बी आर इशारा की फिल्म्स के, बताइएगा बताइएगा। अच्छा चलिए, मन में सोचिए, मैं समझ जाऊंगी। हाँ

मिलाप फिल्म का ये गाना है जो आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और संगीतकार हैं ब्रिजभूषण। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है बीआर इशारा ने। दोस्तों, कहा जाता है कि मुंबई आने के बाद उन्हें बाबू नाम मिला। जी हाँ, उनका असली नाम मैंने आपको बताया था, तो ये जो नाम है बीआर इशारा उन्हें कैसे मिला ये मैं आपको बता रही हूँ। मुंबई आने के बाद लोग उन्हें बाबू कहने लगे और फिर उन्होंने अपने नाम के साथ राम जोड़ा, और लेखक भी रहे हैं वो। उन्होंने लेखन का काम जब शुरू किया तो अपना पेन नेम यानी कि उपनाम जो है वो इशारा अपनाया। इसके बाद से वो हमेशा के लिए बी आर इशारा यानी बाबू राम इशारा के नाम से जाने गए। फिल्मों से उनके परिवार का दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए उन्होंने जीरो से शुरुआत की थी और यहाँ तक पहुँचे।

0: किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत गाना मान जाइए फिल्म से। संगीतकार जयदेव की कंपोजिशन ये थी। और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड। एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं, फिर करेंगे आगे बातें।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ है आप कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज बातें हो रही हैं फिल्मकार बी आर इशारा की। दोस्तों शायद आप जानते हो कि फिल्मकार बी आर इशारा को फिल्मी दुनिया में अपना पहला काम क्या मिला था। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने चाय पिलाने की नौकरी की थी। उनका व्यवहार और अंदाज इतना बेहतरीन था कि बहुत से कलाकार और टेक्नीशियन उनके दोस्त बन गए। वो टी बॉय के तौर पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे आसपास। और अपने अच्छे सलूक की वजह से फिल्म प्रोडक्शन की जो बारीकियां हैं उन्होंने बहुत ही आराम से सीखी, क्योंकि लोग उन्हें खुद सिखाना पसंद करते थे, वो इतने अच्छे इंसान थे। दोस्तों कैमरे के पीछे होने वाले हर काम को उन्होंने समझना शुरू किया और फिर धीरे धीरे कहानियां भी लिखने लगे। बी आर इशारा अक्सर फिल्म राइटर्स की भी मदद किया करते थे जब वो कहानी लिखा करते। ये जो एक्सपीरियंस है उन्हें फिल्म डायरेक्शन के करीब ले गया।

मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गाना सुना। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, दिल की राहें फिल्म से, और इस फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं जी हाँ बी आर इशारा, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं। दोस्तों, निर्देशक के तौर पर बी आर इशारा की पहली फिल्म थी आवारा बादल। इसमें उन्होंने हेलन और अजीत को मुख्य भूमिकाओं में लिया था। फिल्म की कहानी बहुत ही रोमांचक थी। बचपन में किडनैप हुए एक प्रिंस की कहानी थी जो कि बाद में डाकू बन गया। कमाई के मामले में हालांकि आवारा बादल एक एवरेज फिल्म रही, लेकिन चर्चा इसकी बहुत रही। साल 1969 में उनकी दूसरी फिल्म आई इंसाफ का मंदिर। इस फिल्म की कहानी भी बी आर इशारा ने लिखी थी।

वैसे असली जो पहचान उन्हें मिली वो मिली चेतना से। चेतना 1970 में आई एक विवादित फिल्म थी जो समय के हिसाब से बहुत ज्यादा ही बोल्ड विषय पर आधारित थी। कुछ सीन्स भी ऐसे थे इसमें जिन पर घोर आपत्ति हुई थी बहुत सारे लोगों को, लेकिन दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और इस पसंद की वजह से उनका हौसला बढ़ा अपनी पसंद की फिल्में बनाने के लिए।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में चेतना फिल्म का गाना आपने सुना, इसका संगीत दिया है सपन जगमोहन ने। एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं और फिर करेंगे बातें और भी आपसे।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS.

0: 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. शबनम के साथ हैं आप कलाकार बेमिसाल में. आज हम बातें कर रहे हैं फिल्मकार बीआर इशारा की. दोस्तों, बीआर इशारा को बोल्ड विषयों पर फिल्म बनाने के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ इसलिए भी बहुत ज्यादा सराहा गया क्योंकि उन्होंने नए कलाकारों पर हमेशा भरोसा किया, चाहे वो एक्टर हों, डायरेक्टर हों, या फिर म्यूजिक डायरेक्टर ही क्यों ना हो. कई गाने आपने सुने होंगे, कुछ नए से नाम आपको सुनाई दिए होंगे म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम में जब मैंने आपको बताया. इसके अलावा उन्होंने भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी को अपनी फिल्म चरित्र के जरिए अभिनय का मौका दिया. इसी फिल्म में परवीन बाबी और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहड़ी को भी उन्होंने मौका दिया, जबकि उनके करियर का ये शुरुआती दौर था. इसी तरह से अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, डेनी डेंजोंगपा और रेहाना सुल्तान, विजय अरोड़ा, राज किरण और रजा मुराद को भी उस वक्त उन्होंने अपनी फिल्मों से जोड़ा जब वो बिल्कुल नए थे फिल्म इंडस्ट्री में.

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन है? इस फिल्म में है हेलन और अजीत। जी हाँ, जिन्हें आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा विलेन की भूमिका में। लेकिन बीआर इशारा किसी से भी कहीं पर भी कोई भी रोल करवा लेते थे। दोस्तों, बीआर इशारा को अपने काम के लिए जुनूनी कहा जाता था। उनकी फिल्म चेतना काफी चर्चा में रही। एक तो विषय उस वक्त के हिसाब से बहुत आगे था, दूसरा उन्होंने सिर्फ 25 दिनों में इस फिल्म को पूरा कर लिया था। अपने संपूर्ण करियर में बीआर इशारा ने 34 फिल्म्स बनाई 1969 से 1996 तक। इनमें चेतना के अलावा हम दो, हमारे दो, चरित्रहीन औरत, कारण, लोग क्या कहेंगे, मिलाप, घर की लाज, वो फिर आएगी और सौतेला भाई जैसी फिल्में शामिल हैं। बीआर इशारा की फिल्में लीक से हटकर हुआ करती थी और समाज को एक खास संदेश देने वाली भी होती थी। अब एक बहुत ही खास गाना सिर्फ आपके लिए।

तो दोस्तों, ये गाना आपने सुना चेतना फिल्म से। इस गाने को आवाज़ दी है मुकेश ने। बीआर इशारा के बारे में बातें बस इतनी ही। अब वक्त हो चला है मेरे थोड़ी देर के लिए जाने का, लेकिन आप कहीं ना जाएं, सुनते रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड। उर्दू में खबरों के बाद और समाचारों के बाद आप मुझे फिर से सुनेंगे 2:30 पर संगीत.com में।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मुनहदिम हुई इमारत में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। साउथ जोन एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर 4 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम जेवियर बेटल के साथ बाहमी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया गैर यकीनी के सिलसिले में फिक्रमंद है, भारत और लग्जमबर्ग के पुरएतमाद रिश्ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं।

0: मंडी ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट से वाबस्ता एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में जनाब मोदी 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तताह करेंगे, उन्हें वक्फ करेंगे और उनका संग बुनियाद रखेंगे। वो 326 किलोमीटर का अहाता करने वाले और 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत से तैयार मगरबी मालबरदार कॉरिडोर के तीन हिस्सों को भी वक्फ करेंगे। वजीर आजम वडोदरा और टांडा सड़क के दरमियान एक नई रेलगाड़ी और चार मकामात पर मालबरदार ट्रेन खिदमात को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जोबाट टांडा नई रेल लाइन को भी वक्फ करेंगे, जो अलीराजपुर के दूरदराज और कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से मरबूत करेगी। महाराष्ट्र में मुंबई में जनाब मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने सलामती के इकदामात और जारी बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मुनहदिम हुई इमारत के मकाम का आज एक मरतबा फिर दौरा किया। नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहाइयों पुरानी कसीर मंजिला इमारत के मकाम से तकरीबन 80% मलबा हटा लिया गया है। वजीर आला ने मुत्तला किया कि 12 अफराद को निकाला गया था, जिनमें से 7 की मौत हो गई है। मोहतरमा रेखा गुप्ता ने कल भी जाय हादसा का दौरा किया था और कहा था कि हुकूमत मुतासरा तलबा के वालदेन से राबते में है।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: वजीर आला ने कहा कि यह अलमनाक हादसा इमारत के मालिक की गफलत की वजह से पेश आया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की वज़ीर आला ने मजीद कहा कि इलाके में ऐसी खतरनाक इमारतों की निशानदेही की जाएगी और उन्हें मुनहदिम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि उन ओहदेदारान को जिनकी कोताही की वजह से यह हादसा पेश आया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा। दिल्ली हुकूमत के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज जाय हादसा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत से मुतालिक कौमी फोर्स NDRF की टीम कार्रवाई में मुसलसल मसरूफ है। जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आला ने कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वह इस मामले के जिम्मेदार सभी अफराद को फौरी तौर पर मुअत्तल करें। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने कहा है कि दिल्ली में गैर कानूनी 5 मंजिला इमारतों को फौरी तौर पर सील किए जाने की हिदायत दी गई हैं। CMO ने मजीद कहा है कि वजीर आला ने वाजे कर दिया है कि दिल्ली के बाशिंदों की सलामती से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गफलत के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक इमारत के गिरने के वाक़े के बाद जारी बचाव और राहती कार्रवाइयों के पेश नज़र आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक मुतासिर रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान काबिल एतमाद ताल्लुकात हैं। आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी, तिजारत, सरमायाकारी और माली इश्तराक के शोबों में मजीद मुस्तहकम हो रही है। इसके अलावा खला, डिजिटल और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी के शोबों में भी बाहमी ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारती समझौते के लिए लग्जमबर्ग की मजबूत हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह समझौता बाहमी ताउन के नए इम्कानात और मौके पैदा करेगा। लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बेटल आज सुबह 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज पनजी में मगरबी इलाकाई कौंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ये कौंसिल गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा मरकज के जेर इंतजाम इलाकों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पर मुश्तमिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस मीटिंग में गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर अफराद शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दादर नगर हवेली और दमन दीव के नुमाइंदे भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग में मरकज और रियासतों के मुश्तरका मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके अलावा मुश्तरका कार्रवाई की जरूरत वाले

0: मामला भी जेरे गौर हैं। बाद में जनाब शाह गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस कलर अवार्ड पेश करेंगे। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नौजवानों से अपील की है कि वो मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मजबूत मौकफ अख्तियार करें और मनशियात से मुबर्रा माशरा बनाने में सरगर्म रोल अदा करें। आज गुवाहाटी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब

0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
4: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
5: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी, चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़।

0: ना कर पाए।
1: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
2: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है कि हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
0: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई हैं। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 ड्यूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01233104812371717 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप सभी का स्वागत है संगीत.com में। और दोस्तों, जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हमारे दिल की जो धड़कन है वो उस गाने की बीट और रिदम के हिसाब से बदल जाती है। ये होता है जादू संगीत का। वैसे दोस्तों, जादू तो मोहब्बत का भी होता है ना। मोहब्बत में इंसान बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है।

उदित नारायण की आवाज़ में आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत गाना डर फिल्म से। और दोस्तों, एक गाने को रिकॉर्ड करने में अमूमन पूरा का पूरा दिन लग जाता है, या फिर कभी कभी आधे दिन में भी रिकॉर्ड हो जाता है, और कभी कभी तो एक से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं एक गाने को रिकॉर्ड करने में। लेकिन दोस्तों, कुछ मास्टरपीस ऐसे भी होते हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड हुए हैं और बेहद पॉपुलर भी रहे हैं, जैसे कि डर फिल्म का एक गीत। उदित नारायण ने इसे सिंगल टेक में रिकॉर्ड किया था और ये देश के युवाओं के दिलों की धड़कन बन गया था। जी हाँ, और पर्दे पर इस गाने में नजर आए थे शाहरुख खान, जो कहीं कहीं दिखाई दिए, लेकिन पूरी तरह से ये जो गाना था ये फोकस रहा जूही चावला के ऊपर। वाकई में 90s के जो गाने थे ना,

देखो तीर तो दिल के पार हो ही चुका है, इस गाने को सुनने के बाद किसका दिल काबू में रह जाता है कि नहीं। कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। फिल्म का नाम है चमत्कार, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार अनु मलिक। दोस्तों वैसे तो शाहरुख खान ने लीड एक्टर के तौर पर जो पहली फिल्म साइन की थी वो दीवाना की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें ऋषि कपूर का जो किरदार है वो बराबरी का रहा, तो उन्हें सेकंड लीड ही माना जाएगा। चमत्कार असल में वो पहली फिल्म थी जिसे शाहरुख खान ने बतौर मुख्य अभिनेता साइन किया था, इसलिए ये जो खूबसूरत गाना मैंने आपको सुनाया ये शाहरुख खान के करियर के शुरुआती दौर के गानों में से एक था और बेहद पॉपुलर रहा। संगीतकार अनु मलिक ने अपनी धुनों में वेस्टर्न और मेलोडिक जो बीट्स थी उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया, साथ ही साथ बांसुरी का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत बन गया है। एक और खूबसूरत गाना है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मैंने सोचा कि मैं बस बिना इंतज़ार के इसको सुना ही दूँ आपको। हाँ, याद आया फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का गाना है? बिल्कुल सही, दिल तो पागल है।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप संगीत.com में। और दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ हेमा मालिनी पर फिल्माया गया एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जो कई बार रिक्रिएट किया गया है और इसके नए वर्जन को भी अच्छा खासा पसंद किया गया। लेकिन जो बात ओरिजिनल गाने में है वो रिमिक्स में थोड़ी सी आपको कम लगेगी। वैसे ये जो गाना है, इसका म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे पहले ऑफर किया गया था उषा उत्थुप को। उन्होंने रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया। इस गाने की जो सिग्नेचर बेसलाइन है वो ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन के एक मशहूर गाने ड्रैगन अटैक से काफी मिलती जुलती है। वैसे मुझे तो ओरिजिनल गाना बेहद पसंद है, आपको भी पसंद आने वाला है। गाना तो आप समझ ही गए होंगे ना।

गर्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप संगीत.com में। बातें हो रही हैं कुछ खूबसूरत गानों की। दोस्तों, सुपर से भी ऊपर अब एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना मैं आपको सुनाने वाली हूं। इस गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। संगीतकार आरडी बर्मन ने इस गाने को कंपोज किया है और इस गाने का बंगाल से गहरा कनेक्शन है। दोस्तों, इस गाने की धुन जब आरडी बर्मन के पास आई तो इस पर पहले से ही अमित कुमार एक पूजा गाना गा चुके थे बंगाली भाषा में, जिसके बोल थे जियो ना इसे कंपोज किया था भानु गुप्ता ने। अब इसी धुन पर रॉकी फिल्म का गीत क्या यही प्यार है कंपोज हुआ, जिसे किशोर दा और लता मंगेशकर ने आवाज दी। ये एक गजब का संयोग रहा है दोस्तों कि एक ही धुन पर पहले बेटे ने गाना गाया और उसके बाद पिता ने गाना गाया।

तो दोस्तों ये था आज का संगीत.com. उम्मीद करती हूँ आपको गाना भी पसंद आया होगा, पूरा प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा. अब मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ. आप जुड़े रहें आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे खबरें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और व्यापार मंत्री जेवे बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया। डॉ जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। इस अवसर पर लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री जेवे बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुरक्षा कारणों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल

0: से हटा दिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार के मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दुर्घटना स्थल का आज दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। इस बीच सत्य निकेतन में इमारत के ढह जाने की घटना के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी एक अधिकारी ने उपलब्ध कराई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। दिग्गज सिनेमेटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया। टेनिस में अरेना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस के शीर्ष वरीयता प्राप्त अरेना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंट को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को 6-4, 6-3, 6-4 से हराया। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। उधर मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। बिहार में भी बाढ़ स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिन की भागती हुई लय में दोपहर का ये समय कुछ पल ठहरने का अवसर देता है। बाहर मौसम अपनी गति से बदलता रहे और भीतर कोई प्रिय धुन धीरे धीरे मन में उतरती रहे, तो इससे सुंदर विराम और क्या होगा। इसी विराम में आपकी पसंद के गीतों के साथ आता है हमारा कार्यक्रम मन भावन। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 MHz पर। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और अपने संदेश ईमेल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई बात जो मन में ठहर गई हो वो भी अपने मनपसंद गीत के साथ हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इन भावनाओं को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। अपने गीत के साथ अपना नाम, शहर और संदेश हमें भेजिए fmgoldair@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9।

6886875 पर। श्रोताओं, हर गीत अपने साथ कितनी ही यादें जोड़ता है। कभी कोई चेहरा, कभी कोई मौसम और कभी कोई बीता हुआ दिन। क्या पता आज का पहला गीत भी आपकी ऐसी ही यादों का दरवाजा खोल दे। आइए सुनें।

कौन सा गीत चुना है, आइए सुनते हैं। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश चोहरी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू हमारे साथ हैं। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार भी हमारे साथ जुड़ा है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये रोमांचक गीत।

श्रोताओं, आपकी बातें हम तक पहुंचती रहेंगी और गीतों का ये सिलसिला भी चलता रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं एक और मधुर गीत, पर उससे पहले आपको बताएं कि किस किस के संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी हमारे साथ हैं। इसके बाद अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है असम से। हितेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा जी हमारे साथ हैं। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से जुड़े हैं। दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ हैं मेरठ कैंट से। और मुकेश कश्यप, शीतल जी, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। तो आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर उससे पहले ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई की ओर से और उत्तम कुमार इनके साथ हैं, इनकी फरमाइश का भी यही गीत हमने अभी सुना। तो इससे पहले आपके और संदेश पढ़ें और सुनहरे गीत सुने, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। कहीं जाइएगा नहीं, लौटेंगे तुरंत संगीत की इसी प्यारी रवानी के साथ। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम मन भावन में। और मैं लेकर आई हूं आप सभी के मनपसंद गीतों और आपके हार्दिक संदेशों की सुरीली माला। तो श्रोताओं, हमें जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर, और भेज दीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868686753 पर हमें संदेश भेजें। तो आइए श्रोताओं, वापस देखें आपके संदेश हमें कहां कहां से मिले हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह, मोरस अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी, और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, योशिका और अंजलि इनके साथ हैं। नैनीताल से भास्कर हमारे साथ जुड़े हैं, और एफएम गोल्ड के पुराने श्रोताओं की ओर से संदेश प्राप्त हुआ है प्रकाश कुमार, मनोहर सिंह, सत्य प्रकाश शर्मा जयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। सप्तरंग श्रोता परिवार भी हमें सुन रहे हैं कुम्भार गली श्रीरामपुर से, अशोक तले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, और पुनावली पुणे से हमारे साथ हैं अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश चंद्र रुक्मणी महेंद्र पार्क दिल्ली से इनका संदेश भी हमें प्राप्त हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम रेडियो श्रोता संघ हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। अफरोज शेख हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से, और रघुवीर नगर से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। तो आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत, और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास और भी आई है महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या और राजवीर गायकवाड़ की। तो आइए आपकी फरमाइश पर ही सुनते हैं ये गीत।

तो आइए श्रोताओं, गीतों के बीच आपकी आवाज भी सुनते रहें, यही तो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है। देखते हैं और संदेश हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कौन याद कर रहा है और किस गीत के साथ अपने संदेश और नाम भेजे हैं। जाफराबाद से हमारे साथ हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, सौभाग्यवती जगुताई राजे, कुमार संचित और प्रथमेश सर्वद हर्षता सानवी और प्रणाली। शास्त्री नगर से संदेश हमें प्राप्त हुआ है

किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया, साईराज और विशाल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का। बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य मेघा। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु रिधान हमारे साथ हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और समस्त परिवार भी हमारे साथ जुड़ा है। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू और मधु हमारे साथ हैं। कुम्हारहेड़ा से सईद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम हमारे साथ हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के ही रानी गार्डन से यास्मीन शेख भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश हमारे साथ हैं और इनके साथ हैं लाडला टुक टुक। छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से प्रकाश, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज और स्वीट अंशुमन और बेबी ओवी भी हमारे साथ हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

इस गीत ने तो माहौल सजा दिया और अब श्रोताओं समय है आपके संदेशों का। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अबान और पूरा अब्बासी परिवार हमारे साथ जुड़ा है। चंडीगढ़ से सतीश और विमला अनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नोएडा से डॉक्टर एस सी शुक्ला की फरमाइश भी हमें प्राप्त हो गई है। अवधेश कुमार रामराजी रोड माणीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना, यश मंसूरी और प्यारा नवासा नुमैर मंसूरी हमारे साथ जुड़े हैं मुंगीसापुर से। सरिता राकेश जैन हमारे साथ हैं सरस्वती विहार पीतमपुरा दिल्ली से। गांव फारसी जिला हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं। कोलगांव से पांडु, उषा, रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्भार हमारे साथ हैं। आप सभी के संदेश हमें प्राप्त हो गए। नसरीन खान, वसीम खान और मुबीना खान हमारे साथ जुड़े हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन और इनके साथ हैं हेमलता और डिंपल देवांगन। इन्होंने बहुत ही खूब लिख भेजा है। ये कहते हैं, जहां सुरों की महफिल हो वहां एफएम गोल्ड का नाम आता है। हर धुन में जैसे कोई पुराना ख्वाब मुस्कुराता है। कभी नगमों से दिल बहलाता है, कभी यादों की गलियों में हमें ले जाता है और कभी ऐसा गीत सुना देता है कि चाय का कप हाथ में हो और दिल कह उठे, वाह क्या खूब फरमाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं एक और ऐसा ही सुनहरा गीत।

इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं

0: श्रोताओं, संगीत का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से विराम के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहिए मन भावन के साथ 100.1 MHz पर।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together

0: श्रोताओं, मन भावन में आज का संगीत सफर आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें और आपकी बातों के साथ ही पूरा हुआ। आपका हर संदेश हमारे लिए इस कार्यक्रम का एक अपना सा हिस्सा है। यदि समय के अभाव में आज आपकी फरमाइश या आपका संदेश कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो सका तो इसे हमारी अनदेखी ना समझिएगा। आपकी पसंद हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है और अवसर मिलते ही फिर हमारे संगीत का हिस्सा अवश्य बनेगी। तो अपनी पसंद यूं ही हमें भेजते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं समाचार के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2: इस बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लक्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज ये बात नई दिल्ली में लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लक्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस वर्ष के शुरू में अपनी लक्जमबर्ग यात्रा का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। इस अवसर पर श्री जेवियर बेटल ने कहा कि लक्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये घटना हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान की भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति ने आज उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों का उद्देश्य सिर्फ अपनी रैंकिंग बढ़ाना नहीं बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाने में योगदान देना है।

0: उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह को लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। साथ ही हर शिक्षक के राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी मान्यता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबारे मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। निदेशालय ने बताया कि मामला सांप्रदायिकता को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। आरेना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरेना सबालेंका ने अमरीका की टेलर डाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका की टॉमी पॉल को 6-4, 6-3, 6-4 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that in an era where the whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Dr. Jayashankar said this while meeting Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi this afternoon. Dr. Jayashankar recalled his visit to Luxembourg in the beginning of this year. The External Affairs Minister said trade, investment, financial cooperation have been the heart of the relationship.
2: It's a great pleasure to welcome you and your delegation to India. Your visit, along with, I believe, your Minister of Economy, reflects the growing, deepening partnership between us. Ours is a very trusted relationship. It is a relationship we've done a lot, where we have the confidence in being able to do even more. And particularly, I think in terms of supply chain resilience, diversification, and now with the free trade agreement ratification likely in the coming future.
1: In his remarks, Xavier Bettel said Luxembourg has a trusted and honest relationship with India. Mr. Bettel thanked Indian leadership for their role as a peacemaker and trying to build bridges between countries which have been affected by conflicts. Mr. Bettel arrived in New Delhi in the wee hours today on a 3-day visit to India. Union Home Minister Amit Shah today presented the prestigious President's Police Colour to the Goa Police at a ceremony being held at the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Talegaon. The programme is currently underway in the presence of senior officials and dignitaries. We now go over live to Goa to listen to Union Home Minister Amit Shah, who is addressing the event there.
3: हेड कांस्टेबल बलराम सिंधे, अभिषेक शेर, शैलेश गांवकर और विश्वास बी देकर इनको विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। आपके समर्पण ने ही गोवा पुलिस को सुनिश्चित रूप से एक गौरव प्रदान करने में बहुत बड़ी मदद की है।
1: The President's Police Colour, also known as the Rashtrapati Ka Nishan, is one of the highest honours conferred on a police force. The honour recognises the Goa Police for its dedicated service, discipline and commitment to the people of the state. Earlier, Union Home Minister Amit Shah today chaired the 28th meeting of the Western Zonal Council in Pandit.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं और सुरों के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में ये मधुर गीत।

0: I repeat the website, it is www.hoodco.org.in. And the last date for submission of online applications is 16th September 2026. Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hisar, Haryana, invites applications from eligible candidates belonging to the central government, state government or union territory administrations for filling up one post of office superintendent, General Central Service, Group B, non-gazetted, ministerial, level 6, at the Farm Machinery Training and Testing Institute located at Madhya Pradesh, Haryana, Andhra Pradesh and Assam on deputation basis. Complete details regarding eligibility, qualification, terms and conditions on the prescribed application format is available on the Department's Agriculture and Farmers Welfare website. The respective Farm Machinery Training and Testing Institute websites include fmttibudni.gov.in, nrfmtti.gov.in, srtmtti.dacnet.nic.in and nerfmtt.nic.in. Or you could also go on to www.agricoop.nic.in. Kindly apply within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. CSIR Northeast Institute of Science and Technology, Jorhat, a premier institute under the Council of Scientific and Industrial Research, an autonomous body under the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India, invites online applications from enthusiastic, young, dynamic and talented citizens for recruitment to the post of Junior Stenographer, Junior Secretariat Assistant and Junior Hindi Translator. The post carry pay level 4 for Junior Stenographer, pay level 2 for Junior Secretariat Assistant and pay level 6 for Junior Hindi Translator as per the 7th CPC. The upper age limits are 27, 28 and 30 years respectively. The vacancies include reserved posts for unreserved SC, PWBD and ESM categories as specified in the detailed advertisement. The online application process closes on 28th September 2026 at 5 p.m. Candidates are advised to carefully read the detailed advertisement, eligibility conditions, reservation provisions and application instructions on the institute's website. That is at www.niest.res.in. I repeat, it is www.niest.res.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपने मुख्यालय नई दिल्ली में प्रधान निजी सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 सितंबर 2026। अन्य विवरण और आवेदन पत्र आप देख सकते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.try.gov.in। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन आमंत्रित कर रहा है अनुसंधान सहायक भेषज गुण विज्ञान के पद को भरने के लिए आवेदन। इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट cdsco.gov.in। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत आमंत्रित कर रहा है योग्य भारतीय नागरिकों से वैज्ञानिक पदों के लिए आवेदन। पदनाम है वैज्ञानिक ग्रेड डी, रिक्तियां 1, वैज्ञानिक ग्रेड सी रिक्तियां 4, वैज्ञानिक ग्रेड बी रिक्तियां 5। आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जैसे विस्तृत शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक एवं वांछनीय अनुभव मानदंड, आयु सीमा

0: और अन्य सामान्य नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की आधिकारिक वेबसाइट nif.org.in। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत सक्रिय ASC सेंटर दक्षिण बेंगलोर आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर और लाइब्रेरियन। आवेदन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देशों, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, अनुभव, वेतनमान, तैनाती के स्थान और आरक्षण आदि की स्थिति की जानकारी के लिए देखिए 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अनुभाग अधिकारी के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2026 है। संपूर्ण विवरण और आवेदन पत्र का प्रारूप आप देख सकते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर। वेबसाइट का पता है www.trai.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षणों में सुनिए हमारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा। फिर 5:10 पर मैं मिलूंगी आपसे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। और आज 5:30 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फार्मर्स में अवश्य जुड़िएगा। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बज रहे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
5: हेलो एंड नमस्कार करिश्मा। सो करिश्मा, हैव यू बीन नोटिसिंग व्हाइल कमिंग फ्रॉम फॉर ऑफिस दैट दिल्ली इज गेटिंग ब्यूटिफाइड दीज डेज। इन फैक्ट फॉर द अपकमिंग 18th ब्रिक्स समिट इन द नेशनल कैपिटल विच विल बी हेल्ड ऑन द 12th एंड 13th ऑफ सेप्टेम्बर दिस मंथ एट भारत मंडपम, द नेशनल कैपिटल इज गेटिंग अ मेकओवर।
4: बिल्कुल।
5: इंडिया इज होस्टिंग द इवेंट एज द चेयर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। दिस मीटिंग ब्रिंग्स टूगेदर लीडर्स फ्रॉम एक्सपैंडेड मेंबर कंट्रीज, पार्टनर नेशंस एंड international organizations. The Delhi government declared a holiday for government offices on September 11th to reduce traffic congestion alongside heightened security and traffic preparations across the capital. Traffic police have set up special diversions and motorcade rehearsals across major roads in the capital is going on. New Delhi is undergoing, as I said, a makeover, global standard makeover and beautification drive led by the New Delhi Municipal Council and also by the civic authorities ahead of the summit. All that's coming up in the BRICS summit and much more will be brought to you through Akashvani. So do keep tuned to 100.1 for all the updates. So shall we begin with the news headlines at this hour now, Karishma?
4: Gremantri Amit Shah ne Goa mein Pashchimi Kshetriya Parishad ki 28th baithak ki adhyakshata ki.
5: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have trusted relationship.
4: Delhi mein Satya Niketan mein imarat dhehne ki ghatna mein mritikon ki sankhya badhkar 7 hui. MCD Dakshini zone ke upayukt aur 4 engineer nilambit.
5: Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily, over money laundering.
4: बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम

0: तो बीआर इशारा अपनी साहसिक और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष रूप से जानी जाती थी और उनके चर्चित फिल्मों में चेतना, मिलाप, मन जाए, घर की लाज, लोग क्या कहेंगे और वो फिर आएंगे शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से ये डायलॉग।
1: जिस इंसान की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, जिसके कैरेक्टर का कोई ठिकाना नहीं।
2: इंसान होना ही सबसे ऊंची जात है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे नेक मजहब। बाकी रही कैरेक्टर की बात, चुंबक में अगर खोट हो तो लोहा उसकी तरफ खींचता नहीं। दिलों में अगर सच्चाई ना होती तो मोहब्बत में दीवानगी नहीं होती।
3: This was the voice of Amitabh Bachchan in his movie Ek Nazar. In fact, B.R. Ishara was a launch pad for many stars, and he picked up very unconventional talent and made them stars, like Parveen Babi, Amitabh Bachchan, Jaya Bhadri, and all these, and Bappi Lahiri as well. Yeah.
0: और बढ़ते आगे, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री, गायिका, निर्देशक और संगीतकार पी भानुमति को। उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल सिनेमा में काम किया और 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। वर्ष 1953 में आई चंदी रानी से उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें तेलुगु सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी याद किया जाता है।

0: तो इसी के साथ श्रोताओं अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि यह सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। ये किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये समारोह तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
1: इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह के लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। निदेशालय ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिकता को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।

0: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्यनिकेतन में इमारत ढहने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं की है। न्यायालय ने बचाव कार्य में तेजी लाने और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेडान से होगा। वहीं सरिता कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं प्रियांशी भटनागर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, कुछ गीत समय में बीतते नहीं, वो समय को अपने भीतर संजो लेते हैं और वर्षों बाद जब भी वही धुन कहीं सुनाई देती है तो उसके साथ केवल शब्द और स्वर नहीं लौटते, लौट आता है वो समय जिसमें हमने उसे पहली बार सुना था। इन्हीं गीतों के साथ है आपका प्रिय कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, जहां कभी किसी धुन के पीछे छिपी कहानी सामने आती है, कभी किसी आवाज की कोई अनसुनी विशेषता और कभी किसी गीत से जुड़ा एक छोटा सा ऐसा प्रसंग जो सुनने के बाद हमारी स्मृति में बस जाता है। तो इस शाम कुछ पुराने गीतों की ओर लौटते हैं, ये देखने कि बीते हुए समय में रचे ये स्वर आज भी हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो कभी कभी कोई गीत अपनी फिल्म के पार और समय से परे अपना रास्ता बना लेता है और 1979 की दूरियां फिल्म हिंदी सिनेमा में उत्तम कुमार की गिनी चुनी फिल्मों में से एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें शर्मिला टैगोर के साथ उन पर फिल्माया गया है हमारा पहला गीत। और चार दशक बाद 102 नॉट आउट फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की कहानी का हिस्सा बना। दूरियां की कहानी के लिए पटकथा लेखक शंकर शेष को फिल्म फेयर सम्मान भी मिला था। दो फिल्में, दो पीढ़ियां और बीच में वही स्वर, सुदर्शन फाकिर के शब्द, जयदेव का संगीत, भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल के सुरों में सुनते हैं ये कर्ण प्रिय गीत।

इसी स्मृति की डोर थामे आता है 1977 की फिल्म किनारा का ये अगला गीत। राग यमन कल्याण की छाया में रचा हुआ, आरडी बर्मन का संगीत है, गुलजार के शब्द और लता मंगेशकर तथा भूपेंद्र सिंह के सुर, और इन सबके बीच एक पंक्ति जो गीत से निकलकर स्मृति में बस जाने के लिए ही लिखी गई हो जैसे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे

0: कुछ धुनें हमें मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ हमें ठहर कर सोचने का हुनर देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा जाती हैं। आज का ये संगीत सफर उन्हीं गीतों का है जो समय से आगे निकलकर हर दौर में हमारे साथ चलते रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, लौटेंगे जल्द ही वही मधुर सुनहरी धुनें लेकर।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मेरे वाले में निडलिया इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे।

0: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026। ब्रिक्स समिट 2026 इज बीइंग होस्टेड इन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली फ्रॉम 12th टू 13th सितंबर 2026 अंडर इंडियाज चेयरशिप थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विद अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच एंड द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी फर्स्ट। बिकॉज व्हेन वी वर्क टुगेदर पॉसिबिलिटीज बिकम प्रोग्रेस।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। तो आइए इस शाम का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आज की शाम को उस गीत पर विराम देते हैं जिसमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस उसे अपने पास बुलाने की एक सहज सी इच्छा है। संगीत की ये सांझ अब विदा ले रही है। जो सुर आज हमारे साथ गूंजे, आशा है कि वो कल आपकी यादों में भी गुनगुनाएंगे। 1983 की फिल्म सदमा के लिए गुलजार साहब के शब्द, इलैयाराजा का संगीत और सुरेश वाडकर के सुरों में सजे इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली मुलाकात तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हेलो किसान साथियों, आज हम आपके सिर्फ फोन की घंटी नहीं सुनेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि आप फोन से किस तरीके से अपनी खेती में बदलाव लेकर के आ सकते हैं और ये बदलती खेती की दस्तक भी आपके लिए हो सकती है। क्योंकि आजकल मौसम पूछना हो या मंडी का भाव जानना हो, फसल में बीमारी पहचाननी हो या नई

0: खेती की तकनीक सीखनी हो, किसान की उंगलियों के एक टच पर इंफॉर्मेशन की दुनिया पूरी मौजूद है। लेकिन डिजिटल फार्मिंग का मतलब सिर्फ स्मार्टफोन चलाना नहीं होता, मतलब होता है सही जानकारी को सही समय पर समझना और उसे खेत में सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो आज बात करेंगे हम कार्यक्रम हेलो फार्मर्स में इन्हीं सब की।
1: जी हाँ, आज का दौर वो नहीं है जहाँ हम सिर्फ खेती के बारे में जब पूछते हैं तो बात होती है मिट्टी, बीज और हल की। आज किसान भी उतना ही तकनीक से जुड़ा हुआ है जितना हर कोई, चाहे वो जेनजी हो या फिर मिनेरियल या बूमर। आज टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ रील चलाना नहीं है, टेक्नोलॉजी का मतलब है स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर खेती में उन्नति तक।
0: बिल्कुल, और खेती का नया अंदाज टेक्नोलॉजी के साथ किसान, बस यही सब जानकारियां हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि ये जो आपके हाथ में फोन है ना, जिसे लेकर आप खेत में भी हमें सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी न्यूज ऑन एयर ऐप जो है वो आप अपने खेतों में भी चला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐप है, बहुत सारी साइट्स है, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप अपने मोबाइल फोन से ले सकते हैं और अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं।
1: जी हाँ, मुट्ठी में अब पूरी तकनीक है आपके हाथ में, और वो तकनीक कैसे हमारी खेती को और बेहतर बनाती, इसी को लेकर आज हम आए हैं आपके साथ। और जो हमारा विषय भी है, जो लाजमी है कि अब आप समझ भी गए होंगे, स्मार्टफोन से खेत तक यानी कि डिजिटल तकनीकों का कृषि में प्रयोग, तो हेलो फार्मर्स का आज का हमारा ये टॉपिक है। और आपके साथ ये जानकारी साझा करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सीताराम बिश्नोई। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विस्तार संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब से ट्रिंग ट्रिंग करके फोन करके आप भी अपने सवाल के जवाब ले सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन कौन सी तकनीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं तकनीकों का। हमारे पास तो बहुत सारे सवाल हैं ही, लेकिन हमारी जो टेलीफोन लाइन्स आप सभी के लिए खुल चुकी हैं जिस पर आप अपने सवाल कर सकते हैं हमसे, वो है
1: 2342108 और 2342108।
0: बिल्कुल, और दिल्ली के बाहर के जो भी श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: डॉक्टर साहब, हमारे हेलो फार्मर्स के जो प्रोग्राम है, इससे पहले कि हमारे फार्मर्स के हमारे पास क्वेश्चंस आने शुरू हों, एक बहुत ही लाजमी सा वो है कि खेती बहुत ज़्यादा लेबरस वर्क है, उसमें बहुत बड़ी मशीनें होती हैं और मौसम है, उसमें बारिश है, पानी है, इसमें मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है, क्या मोबाइल फ़ोन से कैसे खेती होगी?
2: बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक क्वेश्चन शुरुआत में ही किया। सबसे पहले तो मैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी हमारे श्रोताओं, प्यारे किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। और जैसा कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि स्मार्टफोन से खेत तक डिजिटल तकनीकियों का कृषि में प्रयोग, तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या सही में स्मार्टफोन की का भी कोई यूज हो सकता है क्या, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्मार्टफोन को आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बात करने या मनोरंजन का साधन है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये किसान का कृषि के आयाम में एक महत्वपूर्ण औजार भी है। जैसा कि हम बात करते हैं कि जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ 60% से ज़्यादा आबादी जो कृषि कार्यों पर अपना निर्भरता दिखाती है, चाहे ग्रामीण रोजगार की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें, तो एक बड़ा हिस्सा जो कृषि से जुड़ा हुआ है। अभी बीते कुछ सालों में जैसे क्या कि मौसम की अनुकूलता के न रहने कारण कहीं पे ज़्यादा बरसात, कहीं पे कम हो जाना, कीटों के प्रकोप, जो बाज़ार में जो किसान के उत्पाद के मूल्य की अनियमितता के कारण, सो कई प्रकार की परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। जब तमाम तरह की परेशानियां होती है, तो जैसे हमारे देश में 86% के आसपास जो किसान हैं वो छोटे सीमांत, लघु एंड सीमांत किसान हैं, और इन तक जो एक वैज्ञानिक जानकारी है या जो कृषि से संबंधित जो तकनीकी ज्ञान है, नवाचार का ज्ञान है, वो देने का काम करता है जो कृषि प्रसार का जो विभाग के कर्मी है। अगर हमारे देश में देखा जाए तो जो एक कृषि प्रसार कर्मी और किसान का जो रेशियो है वो 1500 से भी ज़्यादा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रसार कर्मी 1500 किसान तक, जो एक संभव नहीं है पहुंचना। जो कुछ अध्ययन की बात करें तो कहते हैं कि ये 500 से 700 तक होना चाहिए ताकि वो हर तरह की जो नवाचार फसल से संबंधित हर तरह की जानकारी उनको दे सके। तो इस युग में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं तो हम जो सूचना प्रसारण जो पद्धतियाँ तकनीकियाँ हैं या डिजिटल तकनीकियाँ हैं उनको हम स्मार्टफोन के माध्यम से किसान को सही समय पर सटीक और व्यवहारिक जो सूचनाएँ हैं जो ज्ञान है वो हम प्रदान कर सकते हैं।
0: जी तो डॉक्टर साहब आपने बोला कि अलग अलग तकनीकें हैं तो अलग अलग तरीके से किसान जो है वो जुड़ सकते हैं, तो वो कौन कौन सी तकनीकें हैं हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
2: बिल्कुल, जब हम डिजिटल तकनीकियों की बात करते हैं तो उसमें कई तरह की तकनीकें आती है। जैसे मैं अपन वन बाई वन बात करते हैं कि जैसे जो भी हमारे किसान भाई जो मोबाइल फोन चलाते हैं उसमें जैसे वो कई तरह के एप्स है जो उनको प्ले स्टोर में जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कृषि से संबंधित मौसम से संबंधित नई तकनीकों नवाचार से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह जैसे कुछ वेब पोर्टल है वहाँ पे जाके हमारे किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। कुछ जिन किसान भाइयों को अगर उनके मान लो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो SMS के थ्रू भी हमारे किसान जो कृषि विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके कृषि विशेषज्ञ तक पहुंचा सकते हैं और उनसे वापस जो भी जो उनकी समस्या है उसका समाधान ले सकते हैं। इसी तरह जब AI से आजकल AI की बात करते हैं, अपन ड्रोन की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करते हैं, तो जो हर डिफरेंट जो माध्यम है उनके द्वारा जो हमारे किसान भाइयों को हर तरह के नवाचार और हर तरह की जानकारी उपलब्ध की जा सकती है।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने लगभग सभी चीज़ों का जिक्र किया जो भी एक स्मार्टफोन में होती है, स्मार्टफोन के जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ हम स्मार्टफोन से खेती तक की बात करें, हम साथ में बात भी करें डिजिटल तकनीकों की। अगर हम स्मार्टफोन तक ना जाके सिर्फ तकनीक के बारे में बात करें तो एक दौर रहा है जब हम लोग या तो सिर्फ मौसम जो था अंदाजे से हम लोग अनुमान लगाया करते थे, उसके बाद दूरदर्शन आया, रेडियो आया और वो समय समय पर जानकारी देता था, फिर अखबारों के माध्यम से। तकनीक में जो इतने बदलाव आए, उन बदलावों की अगर हम और देखें तो उन्होंने किस तरह से हमारे किसान भाइयों को मदद की है खेती में, ताकि हम उसका और आगे जो विस्तार है, जो एक्सपेंशन है, जो मोबाइल के थ्रू हुआ, हम उस पर और ज़्यादा चर्चा कर पाएँ।
2: बिल्कुल, तो जो डिफरेंट विभिन्न प्रकार की जो तकनीकियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो जिक्र किया कि जो ऐप है उनमें मौसम से संबंधित क्या वो कैसे जानकारी ले सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक मैं आज इस चर्चा में जो भी हम ऐप या पोर्टल की जो बात करेंगे वो या तो किसी सरकारी संस्थान के द्वारा हो या हमारी सरकार के द्वारा हो या किसी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हो, हम उन्हीं की बात करेंगे क्योंकि हम विश्वसनीयता की बात करेंगे। वैसे इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी पर हम किसान भाइयों को वही कहेंगे कि सबसे पहले आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या पोर्टल यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी विश्वसनीयता की जांच कर ले। अगर आप उस चीज को नहीं तय कर पा रहे हैं तो आप किसी कृषि विशेषज्ञ से पूछ सकते हो या किसी दूसरे जानकार से या किसी फैमिली मेंबर से आप पहले राय ले सकते हो कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यहां जो भी जानकारियां प्रदान की जाती है किसके द्वारा दी जाती है। तो अगर हम मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसान सुविधा ऐप। किसान सुविधा ऐप के नाम से आप अपने प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा हमारे किसान भाई, ये भारत सरकार के द्वारा विकसित है और इसमें मौसम से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, उर्वरकों से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, मंडी के भाव के संबंधित जानकारी ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी भी वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कौन कौन सी नई योजनाएँ जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है या जो पुरानी योजनाएँ हैं उनके लिए हमारे किसान भाई अगर उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या किस टाइप की सब्सिडी मिलेगी या उसको एनरोलमेंट के लिए क्या करना होगा। इसी तरह बात करते हैं कि एक है मेघदूत ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा साझा सहयोग से चलता है। इसमें हमारे किसान भाइयों को मौसम से आधारित जो जानकारी है वो 5 दिन पहले का पूर्वानुमान दिया जाता है। जैसे अगले 5 दिनों में इस एरिया के अंदर बरसात होने की क्या संभावना है तो हमारा किसान भाई उस पूर्वानुमान को देख के अपनी जो खेती से संबंधित गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से कर सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं, ये तो हो गए मौसम से संबंधित जानकारी देने वाले। इसी तरह जैसे हम पूसा संस्थान की बात करते हैं, तो पूसा संस्थान का पूसा कृषि ऐप है। इसमें जो पूसा संस्थान, जो एक नामी गिरामी संस्थान है अपने देश में, इसके द्वारा विकसित की गई उन्नत किस्मों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि आपको धान की कौन सी किस्में हैं, विभिन्न फसलों की कौन कौन सी नई किस्में हैं, पुरानी किस्में हैं, उनकी सारी जानकारी मिलेगी। और इन फसलों में रोग प्रबंधन से संबंधित आपको जानकारी इसमें पूसा

0: कृषि ऐप में मिल जाएगी। और इसी के साथ उन किसी भी फसल के लिए उर्वरक की जो एक वैज्ञानिक सिफारिश अनुशंसा कितनी होनी चाहिए, उसमें कितना नाइट्रोजन डालना चाहिए, यूरिया डालना चाहिए, वो सारी जानकारी वहाँ पर मिल सकती है। इसी तरह जैसे मैं बात करूँगा, जब ऐप की बात कर ही रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को कई बार जैसे फसलों में रोग लग जाता है तो रोग से संबंधित वो एक विशेष जानकारी चाहते हैं, तो एक मैं बात करता हूँ प्लांटिक्स ऐप की। तो प्लांटिक्स ऐप के थ्रू आप किसान भाई जब उसको कोई भी अपने क्षेत्र अपने फसल में जिस पर बीमारी है तो वो बीमारी का अगर एक अच्छा क्वालिटी का फोटो खींच के उस पर डालता है तो उसे पता चल जाता है कि आपको किस ये बैक्टीरियल है, कोई वायरल है या फिर फंगस से संबंधित है, किस प्रकार की बीमारी है और इसके समाधान के लिए आपको क्या समाधान करना चाहिए। इसी तरह जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे इफको हो गया और विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं इनके भी हमारे किसान भाइयों को जो हर तरह की जानकारी सही समय पर उनको मिल सके, इसके लिए इफको किसान ऐप भी है, उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध रहती है।
1: जी सब काफी ऐप्स का आपने जिक्र किया, खासतौर से मेघदूत मौसम के लिए है, पूसा हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उसके बारे में, और ये बीमारी से जुड़ा हुआ जो ऐप है प्लांटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एप्स के बारे में भी हम थोड़ा और जानना चाहेंगे, एक तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज इनका होता है क्या ऐसा है, कि कई बार बहुत सारे एप्स भी हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं बट दे चार्ज की उन्हें इंस्टॉल करेंगे फिर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्या ऐसा तो नहीं है?
0: नहीं, अभी जितने भी ऐप का हमने बात किया, चाहे किसान सुविधा ऐप हो, मेघदूत ऐप हो, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं। इनमें किसान को ना तो कोई शुरुआत में कोई पैसा देना, ना कोई बाद में कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज या मंथली चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे किसान भाइयों के लिए सही समय पे सही जानकारी पहुंच जाए इसके लिए ये बनाए गए हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे कृषि अनुसंधान है या किसानों की बेहतरी के लिए जो है पूसा जो है बहुत एक अहम रोल अदा करता है, तो डिजिटल युग की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो आपने बताया कि पूसा का उसमें भी काफी बड़ा रोल है, तो हम और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे कि कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप या व्हाट्सएप नंबर या कौन कौन से साधन है जिससे जो पूसा का रोल जो है वो मजबूत करते हैं टेक्नोलॉजी में।
0: बिल्कुल, आपने जिक्र कर ही दिया, तो पूसा के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर हम डिजिटली घर बैठे अगर पूसा से संबंधित जानकारी हर हफ्ते अगर लेना चाहते हैं तो हमारे पूसा संस्थान का एक यूट्यूब पे, आजकल हमारे सारे किसान भाई यूट्यूब तो चलाते हैं, यूट्यूब पे पूसा समाचार के नाम से हमारा एक YouTube चैनल पूसा संस्थान का चलता है। ये हमने कोविड के टाइम से शुरू किया था और इसमें बहुत ही अच्छा हमारे बहुत सारे किसान भाई इसमें जुड़े हुए हैं, तो उस पूसा जो समाचार एक बात करता हूँ उसके लिए हमारे किसान भाइयों को YouTube में जाके पूसा समाचार अगर आप डालोगे तो आपको वहाँ पे हमारे संस्थान का वो चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। एक बार आप उसको अपना सब्सक्राइब करके रख दोगे तो उसके बाद में जो भी सूचना हमारे या जो भी जानकारी पूसा संस्थान के द्वारा दी जाएगी वो आपको एक मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। ये जो पूसा समाचार जो हमारा चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किसान भाई से किसी तरह का कोई चार्ज या कुछ नहीं लिया जाता, और हर शनिवार को शाम को 7 बजे 25 से 30 मिनट का एक एपिसोड हमारे संस्थान के द्वारा वहाँ पे पब्लिश किया जाता है। तो अभी जैसे अभी हमारे जो किसान भाई जो हमारे खेत में जो भी फसल लग रखी है, हम हमेशा उसी वीकली बेसिस पे हम उनको जो एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि अभी उसको जो सब्जियों में क्या कौन कौन सी सब्जी खेत में लगी हुई है, तो अभी इस हफ्ते में मौसम को देखते हुए उसको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से अगर कोई रोग का प्रकोप है तो उसको पहले से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए, इसी तरह जो दूसरी खाद्यान्न की जो फसलें हैं उनमें किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए, तो उस टाइप की तमाम तरह की जानकारी उसमें रहती है। इसके अलावा इसी पूसा समाचार के साथ में हमने एक व्हाट्सएप भी शुरू कर रखा है जिसको पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट के नाम से हम जानते हैं। उसमें एक हमारा नंबर है जिसे हम एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, वैसे अगर किसान भाई को किसी तरह की कोई अपने फसल में कोई रोग या प्रकोप ऐसा दिख रहा है तो हमारा किसान भाई अगर वहाँ से फोटो खींच के उस व्हाट्सएप पे भी डाल देगा तो हमारे कृषि के जो विशेषज्ञ है उससे संबंधित जो भी समाधान है वो हमारे किसान भाई तक पहुँचा देंगे। इसी के साथ जब हम अगला एपिसोड आएगा तो उस किसान भाई ने जो फोटो भेजी है वो हम YouTube में वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे कि फला जगह से हमारे फला किसान भाई ने हमें उस सब्जी की फसल में इस टाइप का उनके प्रकोप दिखा था, तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी फायदा मिल सके। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना

0: चाहूंगा कि जो पूसा का व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का जो नंबर है वो 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर है, इस पे सिर्फ हमारा व्हाट्सएप चलता है, तो इसमें हमारे किसान भाई फोन करने की कोशिश ना करें, जो भी है वो व्हाट्सएप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये नंबर होगा आपका 9560297502।
1: जी एक बार फिर से हम अपने श्रोताओं को नंबर बता देते हैं 9560297502, और ये पूसा का सलाह सेगमेंट है और इसमें जो है आप सिर्फ अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई कॉल या कोई वीडियो, आप वीडियो कॉल उसमें नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपनी जो भी आपकी खेती है, जो भी आपकी समस्या है, उसके आप पिक्चर्स लेकर के या वीडियो लेकर के भी आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं।
2: जी हाँ दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब तकनीक की जब बात आती, टेक्नोलॉजी की बात आती, लोग बहुत हेजिटेंट हो जाते थे कि कैसे समझ में आएगा, कैसे सीखेंगे, लेकिन स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिसने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी आप बहुत आसानी समझ जाते हैं। इसको अगर गागर में सागर कहें तो तकनीक के मामले में अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है और बहुत आसानी से चला लेते हैं। अगर हम अपने चाहे बुजुर्गों को देखें, हर किसी को बहुत आसानी चलाना आता है। तो ऐसे में तकनीक के सहायता से आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने बताई है अभी हमें, चाहे वो ऐप हो, वेबसाइट हो, व्हाट्सएप हो, इसके थ्रू सारी जानकारी आप ले सकते हैं। चर्चा भी और भी जारी रहेगी हेलो फार्मर्स में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज कल जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: वेलकम बैक टू हेलो फार्मर्स और स्मार्टफोन से खेत तक खेती बने स्मार्ट, यही हमारा आज कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है और यही सब जानकारियां हम लेकर के आए हैं आज के कार्यक्रम में हेलो फार्मर्स में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन से खेत तक डिजिटल तकनीकों का कृषि में प्रयोग, इस विषय पर हम आज बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आप कृषि विस्तार संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है कि टेक्नोलॉजी से आप किस तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं अपनी खेती में, अपनी फसल को कैसे ज्यादा अच्छा पैदावार वाला बना सकते हैं, तो वो सारे सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं क्योंकि यहां पर बैठे हैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई। और हमारे टेलीफोन नंबर्स जो आज आप सभी के लिए खुल चुके हैं वो है 0112342108 और 0112342108।
7: डॉक्टर साहब आगे हम बढ़ते हैं तकनीक की और ही इस चीज़ों में, ऐप्स के बारे में हमने काफ़ी बात की और बहुत आसान भी है, प्ले स्टोर या जो भी ऐप स्टोर होता है उसे डाउनलोड करके बहुत आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तकनीकी उसमें ज्ञान नहीं चाहिए ना ही कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। उसी तरह से कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं जिनको आसानी चलाया जा सकता है और अच्छी बात यह है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स होती हैं तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। सरकार ने कुछ पोर्टल्स भी उसी तरह से लॉन्च किए हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे किसान भाइयों को लगातार देते हैं। और इसके बाद एक और मेरा सवाल है कि स्मार्टफोन के अलावा भी कुछ फ़ोन हैं जो हमारे जो किसान हैं जिनमें इंटरनेट नहीं होता तो वो भी उनका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, इन पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम वही जानते हैं कि पोर्टल्स कौन से।

0: बिल्कुल, हमने मौसम के से संबंधित जानकारी की बात कर ली, फसल प्रबंधन से संबंधित जानकारी बात कर ली, तो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय बच जाता है वो विपणन का या मंडी से संबंधित, जो किसान को घर बैठे अपनी उपज का कि मार्केट में किस मंडी में क्या रेट चल रहा है उससे संबंधित जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। तो जैसे बात करते हैं कि ई नाम का नाम सबने सुना होगा, तो ई नाम पोर्टल पे अभी जैसे बात करें तो हमारे देश की 1600 से ज्यादा जो मंडियां हैं, कृषि मंडियां हैं, वो उसमें ई नाम पोर्टल पे जुड़ी हुई है और लगभग हर एक राज्य की जो मंडियां हैं वो उसमें जुड़ी हुई है। तो हमारे किसान भाई ई नाम पोर्टल पे जाके अपने उत्पाद का ये देख सकते हैं कि कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो वो अपना निर्णय खुद ले सकता है कि जहां पे उसको अपनी उपज का जो सबसे अच्छा दाम मिलता है वहां पे वो बेच के अपने लोट को बेच के और अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो ये तो बात हो गई ई नाम की। इसी तरह हम जब बात करते हैं कि एक मार्केट नेट की, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिसके अंदर हर दिन आपको जो देश की जो विभिन्न खाद्य और दूसरी फसलों के संबंधित जो मंडियों में प्रतिदिन जो ताजा भाव है उनकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिलती रहती है
1: जी।
0: इसी तरह जैसे आपने अभी पूछा कि जिन किसान भाइयों के पास अगर मान लो स्मार्टफोन नहीं है तो वो कृषि संबंधी जानकारी के लिए कैसे कृषि विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं जैसे आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है वो किसान कॉल सेंटर के बारे में बात करना चाहूँगा कि किसान कॉल सेंटर के द्वारा हमारा किसान भाई जो भी है वो विभिन्न प्रकार की अपनी जो क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग जगह पे काम करता है तो उस पर फ़ोन करके और जिस प्रकार की उसको जानकारी चाहिए वो कृषि विशेषज्ञ से जो भी है उसका समाधान और सोल्यूशन दे सकता है। इसी तरह जैसे हम बात करते हैं कि कुछ किसान भाई सिर्फ मैसेज के थ्रू अगर जानकारी, तो एम किसान सेवा करके है जिसके थ्रू हमारे किसान भाई मैसेज के थ्रू भी ले सकते हैं। कुछ किसान भाई अगर सिर्फ अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग के थ्रू पूछना चाहते हैं तो उनके लिए भी पीएम किसान पोर्टल है, पीएम किसान पोर्टल से हमारे किसान भाई जो भी अपना क्वेरी है वो रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी आदान प्रदान कर सकते हैं। और उससे इसी तरह जैसे पीएम किसान पोर्टल की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जो भी किसानों से संबंधित योजनाएं उनकी सारी जानकारियां वहां पे उपलब्ध रहती है
2: और ये लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है।
1: हाँ जी, यानी कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, मौजूद हैं, चाहे आप मैसेज करें या आप ऐप का इस्तेमाल करें, वेबसाइट का इस्तेमाल करें, वॉइस नोट्स भेजें, वीडियो बना करके भेजें, आपको पूरी जानकारी जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आजकल हम टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है, तो अब हम तस्वीर की बात करें तो खेती की तस्वीर अब सिर्फ ज़मीन से नहीं ली जाती बल्कि ड्रोन से, आसमान से भी ली जा रही है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में जो है वो बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के काम के लिए जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि किसानों के लिए लाभकर है।
0: बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं कि ड्रोन की या फिर है ना इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करते हैं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की बात करते हैं, इन सारी तमाम चीज़ों की, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। जैसे ड्रोन की बात करते हैं तो बहुत से किसान भाइयों को या बाकियों को ये लगता होगा कि पता नहीं ये कौन सी बहुत बड़ी तोप होगी या किसान भाई के लिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर हमारे जो छोटा किसान है वो ड्रोन को अपने खरीदे या वो करे। पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन कैसे किसान के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ड्रोन के द्वारा हम फसल की निगरानी कर सकते हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि आपका 10 एकड़ का खेत है तो 10 एकड़ के खेत में हर जगह जैसे अपन वहां पे कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या दवाई डाल रहे हैं तो पूरे 10 एकड़ में एक जैसा चाहिए होता है। कहीं पे मान लो कहीं पॉकेट में रोग का प्रकोप है या कहीं पे फसल को अपने पोषक तत्व कम मिल रहे हैं तो वहाँ पे अगर सटीक जगह पे दवाई या उर्वरक डाल के भी हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया कि फसल की निगरानी में ड्रोन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कीटनाशक छिड़काव में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, भूमि सर्वेक्षण के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि भाई हमारे किसान भाई ड्रोन को कैसे यूज़ करें, क्योंकि वो तो सब छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें, जैसे अभी आपने पहले कई दिन पहले सुना होगा कि गवर्नमेंट ने जैसे अपनी नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की थी, तो उसमें जो हमारी जो सरकार का जो लक्ष्य था ये था कि जो महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वायत्त सहायता समूह बनाए और उनमें सरकार उनको 1000 के आसपास ड्रोन देगी, पहले उनको

0: सिसन देगी, और फिर इसी तरह कस्टम हायरिंग सेंटर में भी ड्रोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है कि जो गांव के अंदर एक कस्टम हायरिंग सेंटर है वहां से भी किसान उसको अपने खेत के लिए एक मिनिमम चार्ज देके उसको यूज कर सकते हैं।
1: जी हाँ, और इसका भी जो है इस्तेमाल स्मार्टफोन से किया जा सकता है, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और अब हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, और मैं अब उस पर चर्चा करना चाहूँगा और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, जिसे मैं कहूँगा कि वर्ड ऑफ दी मॉडर्न एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी हर जगह गूंज है। बिना उसकी कोई भी तकनीक आज ऐसा लगता है कि अधूरी, अगर वो शब्द उसके साथ ना जुड़ा हो। AI का इस्तेमाल हमारे किसान भाई स्मार्टफोन के जरिए कैसे कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे आजकल हम बात करते हैं कि AI की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने, जैसे अभी इसी साल जो सरकार ने शुरू किया था भारत विस्तार के नाम से, तो उसमें जो इनका उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि हमारे किसान भाई को बिल्कुल भी परेशानी या उसको ये ना ढूंढना पड़े कि मेरे को ये समस्या है तो मैं किसी ऐप पे जाऊं या फिर मैं वेब पोर्टल पे जाऊं या फिर मैं फोन करूं। तो उन्होंने सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके भारत विस्तार के नाम से प्लेटफॉर्म बनाया है, और साथ में ये काम भी चल रहा है कि हमारे सारे किसान भाइयों का एक डिजिटल रजिस्ट्री होगी एग्री स्टेक के थ्रू, कि हर प्लॉट का, हर किसान का एक डिजिटल, जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे एक आइडेंटिटी होगी कि इस प्लॉट, ये प्लॉट का ये नंबर है, ये है। तो उसमें हर तरह की, जैसे पशुधन से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, या सरकारी योजना से संबंधित है, रोग से संबंधित है, तो हर तरह की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर रहे। और दूसरा, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, जो AI की हम बात करते हैं, उसका यूज हो, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे हम बात करते हैं तो ये एक डाटा पैटर्न पे काम करता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत विस्तार कि हम जो बात करते हैं, इसमें हमारे किसान भाइयों को जितनी ही भी अभी हमने बात की कि हमें ऐप के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, विपणन से संबंधित, मौसम से संबंधित, या फिर तो वो सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें मिल सकती है, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, और डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं के अंदर जो जिस भाषा में आपको चाहिए उस भाषा में, चाहे फोन से, रिकॉर्डिंग से, वीडियो से, इस तरह की जानकारी मिल सकती है।
2: जी, तो आज की बातचीत से किसान भाइयों ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि खेती अब केवल सिर्फ अनुभव की नहीं बल्कि अनुभव के साथ साथ सही जानकारी और तकनीक के इस्तेमाल की भी कहानी है। डॉक्टर बिश्नोई, आप स्टूडियो में आए और

0: इस्तेमाल कर सकते हैं ऑथेंटिक हो, इस चीज का ध्यान आप सभी को रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अनेक भाषाओं में ये सब जानकारियां उपलब्ध हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आप सभी को ढेर सारी जानकारियां मिली होंगी और आपकी खेती बहुत अच्छी तरह से फलेगी फूलेगी आज की जानकारी लेकर के। यही हमारी सबकी शुभकामना है। फिलहाल आज के कार्यक्रम हेलो फार्मर्स से मुझे यानी कोमल
1: और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा, राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री

0: on Wednesday. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in an era where the world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Dr. Jaishankar said this while meeting Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi this afternoon. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra tomorrow. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. And reigning world champion Sheetal Devi has confirmed a medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. And that's the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं केवल देश की भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं। इन सीमाओं से लगे गांव और वहां रहने वाले लोग देश की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की 7 पड़ोसी देशों के साथ 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा है। इन सीमाओं से लगे कई गांव लंबे समय से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, कमजोर संपर्क, सीमित सुविधाओं और रोजगार के कम अवसरों जैसी चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और सीमावर्ती गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी VVP की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य इन गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी जरूरी सुविधाओं को मजबूत करना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के 2 चरणों के जरिए सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा रहा है और इन प्रयासों से गांव के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा को कैसे मजबूती मिल रही है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के 2 चरण हैं, VVP1 और VVP2। पहले चरण में उत्तरी सीमा के गांवों पर ध्यान दिया गया और दूसरे चरण में इस मॉडल को देश की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं तक ले जाया गया। दोनों चरणों का क्षेत्र अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, सीमावर्ती गांवों में जीवन को बेहतर बनाना, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना और सीमावर्ती समुदायों को मजबूत करना। दोनों चरण के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,616 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है और इनका कुल वित्तीय परिव्यय 11,639 करोड़ रुपए है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि दोनों चरणों में क्या कदम उठाए गए हैं और कैसे दोनों मिलकर भारत की सीमाओं के लिए एक व्यापक विकास मॉडल तैयार कर रहे हैं।
1: पहले चरण यानी VVP1 की शुरुआत उत्तरी सीमा से हुई। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई और 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में इसे शुरू किया गया। VVP1 के तहत अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी सीमा से लगे 46 ब्लॉकों के गांवों की पहचान की गई। इनमें से 662 गांवों को रणनीतिक प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए चुना गया। इन गांवों में लगभग 1,42,000 लोगों की आबादी है। इस चरण के लिए 4,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए सड़क संपर्क के लिए रखे गए। VVP1 का उद्देश्य दूर दराज के सीमावर्ती गांवों और देश के दूसरे हिस्सों के बीच विकास के अंतर को कम करना था। इसके तहत हर मौसम में चलने वाली सड़कें, पेयजल, बिजली, मोबाइल और इंटरनेट संपर्क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सुविधाएं पहुंचाना नहीं है, गांवों में रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए पर्यटन, स्थानीय संस्कृति, सामुदायिक केंद्रों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जैसी पहल को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। VVP2 को केंद्रीय मंडल ने 2 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी। इसका विस्तार उत्तरी सीमा से आगे देश की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं तक किया गया। इसे फरवरी 2026 को असम के कछार जिले से नाथनपुर गांव में औपचारिक रूप से शुरू किया गया। वीवीपी 2 के लिए 6000

0: 8,39 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू रहेगा। इसके तहत 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 334 सीमा से लगे ब्लॉकों में 1,954 गांवों को व्यापक विकास के लिए चुना गया है। VBP 1 और VBP 2 के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर इनके वित्तीय ढांचे का भी है। VBP 1 एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, वहीं VBP 2 एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है।
1: श्रोताओं, VBP 1 की शुरुआत के लिए अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गांव को चुना जाना भी इस योजना की सोच को दिखाता है। भारत के पूर्वी छोर पर बसे इस गांव का रणनीतिक महत्व और ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यहां भीषण संघर्ष हुआ था। दुर्गम भौगोलिक स्थिति, कमजोर संपर्क और लंबे समय से हो रहे पलायन के कारण यहां विकास की चुनौतियां बनी रहीं। ऐसे में किबिथू से VVP की शुरुआत का संदेश साफ था, सीमावर्ती गाँव को देश के आखिरी गाँव नहीं बल्कि पहले गांव के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सीमावर्ती गांवों का विकास केवल एक योजना के जरिए करना आसान नहीं है। इन गांवों की जरूरतें अलग अलग हैं और कई विभागों की योजनाएं इनके विकास से जुड़ी हैं। इसलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में अलग अलग सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम करने पर जोर दिया गया है। आइए अब जानते हैं इसका जमीन पर क्या असर दिखाई दे रहा है।
0: वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत विकास कार्यों की योजना विलेज एक्शन प्लान्स के माध्यम से बनाई जाती है। इसमें हर गांव की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है, यानी सभी सीमावर्ती गांवों के लिए एक जैसी योजना लागू करने के बजाय गांव और क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। गृह मंत्रालय इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय है और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन तथा सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर योजना के क्रियान्वयन पर काम करता है। जुलाई 2026 तक गृह मंत्रालय ने VBP 1 के तहत 1,248 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनकी कुल लागत 3,020 करोड़ 32 लाख रुपए है। इसके अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने 1,655 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 953 करोड़ 47 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि 283 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 111 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनकी लागत लगभग 2,482 करोड़ रुपए है। इन सड़कों से ऐसे 134 गांवों को सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है जहां पहले सड़क नहीं थी। इसके साथ ही 35 लंबे पुलों को मंजूरी भी दी गई है। पर्यटन को भी VBP के तहत रोजगार के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। VBP 1 के तहत अब तक 327 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनकी लागत करीब 145 करोड़ रुपए है। इनमें व्यू पॉइंट, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, इको रिजॉर्ट, ट्रैकिंग मार्ग और पर्यटन केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। लेकिन वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का असर इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं आगे जाता है। सबसे पहले बात सीमा सुरक्षा की। सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा में भूमिका को 1999 के कारगिल संघर्ष के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। 3 मई 1999 को कारगिल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की पहली जानकारी स्थानीय चरवाहों ने ही दी थी, यानी सीमा पर रहने वाले लोग कई बार सुरक्षा बलों के लिए आंख और कान की भूमिका निभाते हैं। दूसरा पहलू है आबादी और पलायन। बेहतर सड़क संपर्क और रोजगार के अवसर लोगों को अपने गांव में रहने का कारण देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग, कुमे, दिबांग वैली और शियोमी जिलों के कुछ सीमावर्ती गांवों में लोगों की अपने गांव में वापसी को इस बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा पहलू स्थानीय अर्थव्यवस्था। पर्यटन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थानीय आय के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस सीमावर्ती गांव से दूध, सब्जियां, अंडे और अनाज खरीद रही है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की कोशिशें नई नहीं है। भारत में इस दिशा में करीब 4 दशक से काम किया जा रहा है। वर्ष 1986-87 में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी BADP की शुरुआत पश्चिमी सीमा से हुई थी। बाद में इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी पहली आबादी से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव तक किया गया। BADP के अंतर्गत 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 111 जिलों में विकास कार्य किए गए।

0: और वर्ष 2004-05 से अब तक 39,000 से अधिक कार्यों को मंजूरी दी गई है। अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को चुने हुए सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास पर केंद्रित किया गया है। इसका ध्येय सिर्फ सुविधाएं पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को अपने गांव में रहने और स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर पाने के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक हरमनप्रीत सिंह।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदः 28वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्ट ध्वज सम्माननं प्रदत्तवान्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपागता। दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिण क्षेत्रस्य उपायुक्तं समेत्य 4 अभियन्तारः तात्कालिक प्रभावेण निलंबिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् बिहार मध्य प्रदेश पूर्वोत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत इत्येतेषां केषुचित् भागेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। विश्वदिव्यांग धनुर्विद्या श्रृंखलायां शीतल देवी अन्तिमचक्रे प्रवेशं लब्ध्वा भारतस्य कृते पदकं सुनिश्चितवती। अपि च टेनिस स्पर्धायां पूर्वतन विजेतारौ अरीना सवालिंका अथ कार्लोस अल्करासः यूएस ओपन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्वस्थानं रक्षितवन्तौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदः 28वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। परिषदि गोवा गुजरात महाराष्ट्रैस्सह केन्द्रशासित प्रदेशौ दादरा नगर हवेली दमनदीव इत्येतौ च सम्मिलितौ स्तः। उपवेशने गोवायाः मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तः, गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः, महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः च भागं गृहीतवन्तः। दादरा नगर हवेली दमनदीव इत्येतयोः प्रतिनिधयः अपि उपवेशने भागं गृहीतवन्तः। उपवेशनस्य कार्यसूचौ केन्द्रराज्ययोः मध्ये सामान्य हितसम्बद्धानि प्रकरणानि अथ संयुक्तरूपेण कार्याचरणं च सदृशाः विषयाः समाविष्टाः आसन्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः तलेगांव स्थिते डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडो स्टेडियम इत्यस्मिन् क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्ट ध्वज सम्माननं प्रदत्तवान्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति ध्वजः राष्ट्रपति का निशान इति नामना अपि प्रख्यातः। सः कस्मैचित् आरक्षिबलाय प्रदीयमानेषु सर्वोच्च सम्मानेषु अन्यतमः अस्ति। अनेन सम्मानेन गोवारक्षिबलस्य राज्यस्य जनान् प्रति समर्पित सेवा अनुशासनं प्रतिबद्धता च सम्मानिता भवति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सम्प्रति प्रचलिते अस्मिन् समारोहे भागं गृह्णाति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः गुजरात महाराष्ट्रयोः यात्रायै प्रस्थास्यति। वडोदरायां प्रधानमन्त्री 35,000 कोटि रूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च कृत्वा एतानि राष्ट्राय समर्पयिष्यति। महाराष्ट्रस्य मुंबई नगरे प्रधानमन्त्री ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market related queries. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवाल इस कार्यक्रम में उसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे. चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex slips nearly 400 points, Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise and Prime Minister Narendra Modi to address the global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 400 अंक फिसला, निफ्टी 23,800 के नीचे बंद हुआ. दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करेंगे.

0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों पर बात करेंगे, आपके सवाल के जवाब भी हमारे हमारे एक्सपर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। श्रोताओं, आज प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आधा प्रतिशत फिसले। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़ककर 76,133 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक लुढ़ककर 23,779 पर स्थिर हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक आधा प्रतिशत गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। इससे पहले कच्चे तेल के ऊंचे दाम और पश्चिम एशिया में पुनः तनाव बढ़ने से बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले। सत्र के दौरान दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांक दबाव में रहे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिकवाली दर्ज की गई।
0: The benchmark domestic equity indices ended 0.5% lower today. The Sensex declined 383 points to close at 76,133, while the Nifty shed 119 points to settle at 23,779. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange, the Mid Cap 100 index fell 0.5%, while the Small Cap 100 index ended largely unchanged. Earlier, the markets opened marginally down amid elevated crude oil prices and renewed hostilities in West Asia. Both benchmark indices remained under pressure throughout the session as a broad-based sell-off was witnessed across sectors.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 3.8%, टेक महिंद्रा 2% और टाटा स्टील 1.8% नीचे आए। वहीं लार्सन एंड टूब्रो और भारतीय एयरटेल में आधे प्रतिशत से अधिक, मारुति में आधा प्रतिशत और पावरग्रिड के शेयर भी लगभग आधे प्रतिशत बढ़े।
0: And in the sectoral indices, in the Bombay Stock Exchange, 23 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, focused IT lost 2.2%, IT decreased 2.1%, and realty as well as insurance dropped 1.4%. In contrast, telecommunication rose 1.6%, healthcare added 0.7%, and hospitals gained 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,571 companies declined, 1,925 advanced, and 233 remained unchanged.
1: और अब जानेंगे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में अपरिवर्तित रूप से 94.49 पर बंद हुआ। इसी के साथ कोलकाता से पहली कॉल हम ले रहे हैं, इनका नाम है अरिजीत। अरिजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू मार्केट मुद्रा एंड शरद जी, वेरी बिग फैन।
3: गुड इवनिंग
2: सर, मेरा दो सवाल है आपसे
3: जी।
2: पहला तो ये है कि प्रोविडेंट फंड का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी करेंटली और पहले, और सेकेंड मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा एक प्रोविडेंट फंड और एक शेयर का एक बात है, तो वो दे आर इन द प्रोसेस, मगर जो लोग डील कर रहे थे वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा कोई हेल्थ, मेरे फैमिली में कोई जिंदा नहीं है, तो मेरा कोई नॉमिनी नहीं है। वो लोग अगर नॉमिनी का नाम मैं नहीं डालूं तो वो गवर्नमेंट से वो पैसा रिलीज नहीं करेंगे, क्या ये सच है या झूठ?
3: देखिए अरिजीत, अगर आप पहले आपका दूसरा वाला सवाल लेते हैं, अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो इसमें फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर लेना पड़ता है, और उस कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप नॉमिनी रखें, या फिर जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का जो इंटरनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का आपको ध्यान रखना चाहते हैं और लिखना चाहिए। और दूसरा आपका पहला सवाल पीएफ का इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं, आई थिंक इट इज अबाउट 7. पीपीएफ का 7.1 है, पर पीएफ का शायद ये पूछ रहे हैं, पीएफ का 8.25 के आसपास है। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, आप ये शायद प्रोविडेंट फंड का जानना चाहते थे, 8.25 के आसपास है। पर आप, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं वहाँ संपर्क करें, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पोस्थ्यूमस प्रोसेस अलग होते हैं, बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके होता है या फिर आप नॉमिनी के थ्रू उसको ले सकते हैं।
0: राइट, टॉकिंग ऑफ द मार्केट्स टुडे शरद जी, what we are witnessing over the past few sessions, of course, is not surprising, though, but still there is some element, some factor of concern as well. How do you visualize this? How do you perceive this?
3: Well, I think, Nishit, the markets are looking right now more outwards. If markets look internally to the country, we had 7.8% GDP. Mm. We had all the four cylinders of the economy, the private consumption, government expenditure,
1: right.
3: You know, private investments, exports, they are all shining. But somehow I think I was talking to another platform today, and I said the markets seem to be looking more outwards. Mm. Because the markets look at West Asia, crude oil prices, aggression between Iran and US, bond yields, dollar index. I think those are the factors which are sort of overshadowing our internal growth at this point of time. So I'm sure, in fact, through Market Mantra today, if I'm said there are a lot of market operators who listen to this program, I would like to request to please start looking inwards. Look at what is happening within the country. They seem to be becoming more international, but in the process, they are looking at all the negative things which are coming out. Obviously, it does depress the sentiment, but within our country, we are doing fairly okay. So I think the day we start looking inwards, you will find the market today broke a very important technical

0: level of 23,850 on the technical charts. This becomes a matter of concern because there could be further slide, I hope. And the crude oil prices, look at them, they were getting closer and closer to 100. The Indian basket of crude is beyond 100 now. In fact, we are heading for a time where the oil marketing companies may have to at some point of time take a call to invoke another rise in petrol and diesel prices. So those concerns are, I think, counting on the minds.
1: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई.
2: एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द ब्लैक शीप इन द लॉट, मिस्टर ट्रंप एज वेल.
0: ओह यस, ही इज ऑलवेज इन द न्यूज.
1: आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल लेते हैं. ये है मुंबई से रत्नाकर. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है
0: जी,
3: उसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए, समझो कॉमन मैन को उसमें एंट्री करना है तो कैसे कर सकते हैं, और वो डिजिटली प्लेटफॉर्म क्या है उसका, और उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़े बताइए. और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो अभी एक न्यूज आई थी कि जीडीपी रेट अपना बढ़ने वाला है 7 पॉइंट और कुछ, तो उसका कॉमन मैन के ऊपर, नहीं तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर है, नहीं तो खुदरा बाजार है, उसमें उसका क्या परिणाम हो सकता है.
0: दोनों सवाल रत्नाकर जी के बहुत अच्छे हैं. आज बहुत दिनों बाद इनसे बात करने का मौका मिला. फॉरेक्स ट्रेडिंग, रत्नाकर जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हम यहाँ निजी प्लेटफॉर्म्स का नाम तो नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा. पर अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, पर मैं आपको एक तरीके से सतर्क जरूर करना चाहता हूँ कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो भी बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग होती है. आप विभिन्न करेंसीज को आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि 15 दिन बाद डॉलर बढ़ जाएगा, यूरो बढ़ जाएगा, येन बढ़ जाएगा, ब्रिटिश पाउंड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी आप करते हैं. तो थोड़ा सा जोखिम भरा काम है, क्योंकि इसमें बहुत शार्प मूवमेंट्स होते हैं और बहुत तेज़ी से मूवमेंट होते हैं और 24 घंटे होती है ये. तो आप तो रात को सो रहे होते हैं, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ. तो जब आप सो रहे होंगे और रात को उस समय मान लीजिए कीमत जो आप तलाश रहे हैं वो कीमत उस समय आई, तो आप कैसे उसमें से निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी. तो उसमें बहुत ही एक्टिव और 24 घंटे की मॉनिटरिंग उसमें चाहिए होती है. और दूसरा आपने पूछा जीडीपी का 7.8% का कॉमन मैन पे, जीडीपी का देखिए रत्नाकर जी, उसका इम्पैक्ट लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ता है, और चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ती है तो वो ओवरऑल बढ़ती है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बढ़ता है. हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग किस्म का होता है. तो इसलिए संक्षेप में तो मैं यही बता सकता हूँ, बाकी आपने जो सवाल पूछा उसका बहुत विस्तृत जवाब है और बहुत लंबा डिस्कशन मांगता है. मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि दो लोग और क्यू में हैं. तो
1: बिल्कुल शरद जी, क्योंकि समय की परिधि है और भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं. तो दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
1: जी.
0: जी प्रकाश जी बताइए.
4: हाँ जी, मार्केट मंत्र टीम पे नमस्कार.
0: नमस्कार
4: सर जी को भी. नमस्कार सर.
0: बिल्कुल नमस्कार
4: सर. मेरा एक छोटा सा सवाल है
0: जी,
4: कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है
0: जी,
4: क्या वो नेग्लिजिबल भी हो
0: जी,
4: तो भी क्या उसके लिए ITR2 भरना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मैं SIP कर रहा हूँ
0: तो
4: जो इंस्टॉलमेंट एक साल के कम अवधि की है वो मैं रिडीम कर देता हूँ, तो वो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जरूरी है कि ITR2 भरा जाए?
0: नियम तो यही है प्रकाश जी के, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR2 भरना चाहिए. सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और एक मकान हो और 50 लाख से कम आए हो तो आप जो सरल फॉर्म है फॉर्म 1, बाकी नियम तो यही है. पर प्रकाश जी आपके, मुझे लग रहा है आपका कंसर्न शायद इसलिए है, और मैं प्राची और निशित को भी बताऊं, क्योंकि ITR2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है. पर आपको सच बताऊं तो तभी तक कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आपने उसको खोल के नहीं देखा. बहुत बहुत प्रोग्राम्ड है, हर चीज़ का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आगे क्या करना है ये लिखा हुआ है, उसको इतना सिस्टमैटिक बना दिया गया है. तो प्रकाश जी घबराइए नहीं, आप ITR2 भरिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. कोई परेशानी आती है तो आप अगले कार्यक्रम में हमसे दोबारा यहाँ मार्केट मंत्रा में जुड़ के कभी भी पूछ सकते हैं.
1: जरूर. दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल.
5: हाँ नमस्कार सर, कोहली सर से मेरा प्रश्न सर ये है सर
0: जी.
5: 2025 फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी 6.9% थी सर
0: जी,
5: और 2026-27 में अभी हम पहले तिमाही में 7.8 पे आ गए हैं
0: जी।
5: तो मैं सर यही आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से की फैक्टर, कौन से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, या फिर आईआईपी का डेटा बढ़ा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर इतने

0: तेजी से बढ़े हैं ताकि हम 6.9 से 7.8 आए। हालांकि अच्छी चीज है, गुड है। और सर एक MTF सॉरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल है सर
1: जी।
0: तो मेरा शंका ये है सर कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी अच्छी चीज है कि कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री हमारा सामान दूसरे देश में दूसरे सामान के देश हमारे देश में आ जाएंगे, हमारी पहुंच बढ़ेगी। लेकिन सर मुझे ये भी डर लगता है कि हम जिन देशों से आयात निर्यात कर रहे थे तो इससे ट्रेड बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। जैसे मान लो हम 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करते हैं सर, तो हम टैक्स रेवेन्यू हमारे 20% के हिसाब से 20 रुपए बनता है मान लीजिए, और हम उनसे आयात करते हैं 50 रुपया का, तो उनको हम 20% अगर हम टैक्स देते हैं 10 रुपए का टैक्स देते हैं, ओवरऑल में हमें 10 रुपया नेट प्रॉफिट में आता है, तो ये ट्रेड बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो सकता सर? धन्यवाद सर।
1: चलिए, इनका पहला सवाल जीडीपी से संबंधित है। अभी पिछले श्रोता में भी शायद उन्होंने रत्नाकर जी थे, उन्होंने ही पूछा था। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब अमित देखा जाता है इसमें। हमारा जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बढ़ा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फायर किया है वो सिलेंडर भी बढ़ा है, हमारा सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ा है, सबकी परसेंटेजेस हैं जो बढ़ा है। उसके अलावा 4 सिलेंडर्स की मैंने बात करी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट केपेक्स, कंजम्पशन हमारी बढ़ी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हमारे 10% बढ़े हैं। तो चारों इंजन्स ने फायर किया। और मैं यहाँ पर प्राची और निशित की इजाजत से ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे कि 7.8 बढ़ी है तो फील गुड फैक्टर नहीं है। तो आप अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो उनके नंबर्स को हमें देखना चाहिए, और भारत जैसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि 7.8% मेरी जेब में आया कि नहीं आया, जबकि ऐसे नहीं होता। ये अभी एक क्वार्टर की है, कालांतर में जब लगातार तेज बढ़ती है तो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है। इनका दूसरा सवाल एफटीए से था, कोई ट्रेड बैलेंस नहीं बिगड़ेगा हमारा अमित, इससे तो उल्टा सुधरेगा क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम होता है क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट तो हमें जितना जरूरत है उतना करेंगे, पर हमारा सामान यहां से $860 बिलियन का हम साल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसकी गिनती बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और भारतीय एमएसएमईज के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। आप डर दिमाग से निकाल दीजिए अमित, आपके मन में आपने कहा कोई डर है, कोई डर नहीं है, तो प्रशंसा की बात है, तारीफ की बात है, खुश होने की बात है।
2: दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है वत्सराज। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम।
2: नमस्कार
3: शरद कोहली जी को प्रणाम।
1: प्रणाम।
3: सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा शरद कोहली जी को, क्योंकि जितनी सरल भाषा में ये सारी चीज हमें बताते हैं वो बिल्कुल खाने में बैठ जाती है।
1: धन्यवाद। सवाल पूछ,
3: मैं सर आपकी एक सहमति चाहता हूँ। पिछले आपके सेशन में एक क्वेश्चन आया था
1: जी,
3: और उसका आपने आंसर किया था। एक क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक LTCG या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आदमी को अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है
1: जी।
3: तो मैं सहमति ये चाहता हूँ कि मिनिमम क्या इतना बुक कर लेना चाहिए जितना गवर्नमेंट हमें रिबेट देती है, 1 लाख या 1.25 लाख के करीब जो रिबेट देती है उतना तो मिनिमम बुक कर लेना चाहिए। क्या मैं इस मामले में सही हूँ?
1: वत्सराज जी, ये इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो 1,25,000 का इक्विटी पे हमको छूट मिलती है, पहले सेक्शन 112A उसको कहते थे, जो पुराने एक्ट में अभी लोगों के मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, तो मैं नए सेक्शंस अभी नहीं बोल रहा हूँ, तो कर लेना चाहिए। पर इसमें खाली टैक्स वत्सराज जी एक कंसिडरेशन नहीं है। मैंने जो बताया था, क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से इस समय बिहेव कर रहा है, हो सकता है कोई वेस्ट एशिया से अभी जो खबरें आ रही हैं शायद और मामला बिगड़ जाए, क्रूड ऑयल की कीमतें 100 के आसपास जा रही हैं, तो टैक्स तो एक मैटर होता है। और मैं समझता हूँ आप जो बात कह रहे हैं वो सामान्य परिस्थिति में होता है कि आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली, कि आपने बुक कर लिया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। पर इस समय अगर प्रॉफिट अच्छा है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है वत्सराज जी आपका, कि कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, अलग होगा। पर मैं ये मानता हूँ प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मुझे लग रहा है अगर ऐसे वक्त में मुनाफा है तो बुक करके चलना चाहिए। इस समय 1,25,000 टैक्स को आप सेकेंडरी कंसिडरेशन रखिए और प्रॉफिट को आप मुख्य रखिए। मुख्य और गौण कहते हैं अगर हिंदी में, मेरी हिंदी अगर मैं ठीक मुझे बता रही है, तो मुख्य रखिए आप प्रॉफिट को, टैक्स को गौण रखिए, पर 1,25,000 अगर हो रहा है तो अच्छी बात है।
2: आइए जानते हैं क्या है अगला सवाल। नोएडा से हमारे साथ विनय कुमार जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मार्केट मंत्र टीम का अभिनंदन करता हूँ।
1: धन्यवाद।
4: शरद कोहली साहब का मैं भी एक फैन हूँ।
1: माय प्लेजर सर।
4: मेरा प्रश्न आज ये है कि अभी पूरी शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता है और आज काफी बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल भी 23,850 का टूट गया है।
1: बिल्कुल।
4: तो इस समय में रिटेल इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर?
1: बहुत अच्छा सवाल है विनय। देखिए मार्केट के बारे

0: नहीं, मेरा नजरिया अभी तक जो रहता था, प्राची निशित जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता था कि मार्केट में आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। थोड़ा सा ये जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए, इसमें मेरे नज़रिए में मैंने समय अनुसार बदलाव किया है और मैं आज इनकी इजाज़त से वो बदलाव बताना चाहूँगा। बदलाव ये है कि मुझे यहाँ से मार्केट के लिए थोड़ा सा आगे वाले कुछ समय टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भू राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही हैं, जियो पोलिटिकल जिसको कहते हैं, और भू आर्थिक परिस्थितियां जो बन रही है जिसको जियो इकोनॉमिक कहते हैं, वो परिस्थितियां बहुत अनुकूल मुझे यहां से नहीं नजर आ रही हैं। रशिया नेटो में टेंशन है, ईरान इसराइल कभी खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, 4.5 साल रशिया यूक्रेन को हो गए। तो मुझे लग रहा है विनय, यहां पर रिटेल निवेशकों को जो बहुत अच्छे वैल्यूएटेड शेयर्स हैं, जहां एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशन हैं, उसमें तो आप उसको लेके रख सकते हैं। पर ज्यादातर कभी कभी क्या होता है, मैं हालांकि ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं, कभी कभी ना इन्वेस्ट करना भी विनय एक स्ट्रैटेजी होती है। निवेश करना तो स्ट्रैटेजी होती है, पर कभी कभी दूर बैठ के और तमाशा देखना भी एक एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप दूर बैठ के ऑब्जर्व करिए। तमाशा शब्द मैं एक हल्के अंदाज में, मतलब आप उसको ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा मार्केट का फैब्रिक जब सुधरेगा विनय, तब आप उसमें एंटर करिएगा, क्योंकि अभी हमें मार्केट का यहाँ से बॉटम नहीं मालूम है। और ये जो मैंने बात करी, ये सभी श्रोताओं के लिए है। अब कोई कहेगा कि कोहली साहब तो पहले कहते थे कि भाई आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, 5 साल 10 साल बने रहिए, पर अब परिस्थितियाँ जिस हिसाब से बदलती हैं आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। मैं तो निवेश के लिए बात कहता हूँ कि आपको हर 3 महीने में अब रिव्यू करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए विनय, मैं उम्मीद करता हूँ आपको संदेश मिल गया होगा और आप उसके अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेने चाहिए, और जो शुरू में डिस्क्लेमर और आखिर में डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। श्रोताओं, एशिया के शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5% से अधिक बढ़ा, जबकि जापान के निकेई सूचकांक में 2% से अधिक वृद्धि हुई। यूरोप के शेयर बाजार में जर्मनी का डैक्स लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 0.1% ऊपर कारोबार करता नजर आया। इस बीच लेबर डे के उपलक्ष्य में आज रात अमरीकी शेयर बाजार बंद रहेंगे।
2: शरद जी, हाउ डू वी सी दिस एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बीइंग इंसुलेटेड टुडे व्हेन कंपेयर्ड टू द यूरोपियन मार्केट? कॉस्पी 4.6, जापान निकेई 2.1% अप।
0: वेल, वी वर वेरी कीनली ऑब्जर्विंग कॉस्पी सिंस मॉर्निंग एंड वी फाउंड हाइनेक्स एंड सैमसंग, दे वर डूइंग ग्रेट। सो आई थिंक देर वॉज एक्साइटमेंट विच वॉज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एंड इन निकेई वी ऑब्जर्व सॉफ्ट बैंक टेकिंग द लीड। सो आई थिंक देर वर 2-3 कंपनीज, इट वॉज AI ड्रिवन, इट वॉज टेक ड्रिवन, इट वॉज चिप डिमांड, सेमी कंडक्टर डिमांड विच ड्रोव दीज मार्केट्स कॉन्ट्ररी टू द ग्लोबल सेंटिमेंट। ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट, आई थिंक द अमेरिकन मार्केट्स आर क्लोज टुडे बिकॉज ऑफ द लेबर डे, सो दे हैड देयर डे वे दे कुड थिंक इंडिपेंडेंटली without taking cues. I was joking at my office, you know, with our stock market team, that today, you know, the cat is away and the mouse will play. You know, no cues from America, so you just do whatever you want to for a change. Otherwise, the markets normally follow. और मैं तो मजाक में कई बार कहता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि करवा चौथ होता है ना हमारे यहाँ, तो उसका चांद निकलता है तो अर्क देख के पानी पिया जाता है। ऐसा लगता है हमारी मार्केट सुबह चांद निकलने के इंतजार, अमेरिकन मार्केट कब खुले तो हम पानी पिए, इस तरीके का माहौल मुझे दिखाई दे रहा। तो आज तो कोई दिक्कत नहीं थी।
1: बेहतरीन ने उपमा दिया है। और गाजियाबाद से हमारे साथ इसी के साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, और कोहली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार मनीष।
3: सर, अभी आपको सुन रहा था, आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई, बता रहे थे कि कभी कभी ना नहीं इन्वेस्ट करना, बेचना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो आई थिंक ये रिटेल के लिए आपने रिटेल इन्वेस्टर को माइंड में रख के बोला होगा, लेकिन उनके लिए जो एक SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड पे रेगुलर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी क्या अप्लीकेबल होगी? दे शुड स्टॉप SIPs और वॉच, और दे शुड कंटिन्यू एज दे आर डूइंग, मतलब बेसिकली अ गुड अमाउंट ऑफ आर सेविंग्स आर गोइंग इन एज ए SIP। तो अभी का जो एज ए मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से कुछ जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो FIAs जिस तरह से वो पैसे निकाल रहे हैं आ रहे हैं, बट जो लोकल जो है उनकी तो SIP ठीक ठाक आ रही है। तो एज ए मिडिल क्लास मैं समझना चाहूँ, क्या स्ट्रेटजी उनके लिए भी है या दे शुड?
0: जी जी जी, देखिये मनीष, अगर तो आपकी SIP जो आपने म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, अगर वो NAV अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, तो फिर मैंने जो अभी पहले बोला था वो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए अगर आप रोक भी देंगे तो कोई मुझे इतना इसमें खराबी नहीं दिखाई देती है। पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, एनएवी आपकी इस टाइम बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर

0: प्रॉफिट हो रहा है, मेन बात जो मैं कहना चाहता था प्राची और निशित कि प्रॉफिट हो रहा है तो इस समय थोड़ा सा बुक कर लीजिए। और अगर आपकी एनएवी, अब ये मनीष मुझे नहीं पता आप कौन से फंड में हैं, कितनी एनएवी है, तो ये थोड़ा सा अब इसमें स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। आपकी बात का बहुत सटीक उत्तर तो तब दिया जा सकता है, पर अब तक जो मैंने बोला है आप सुन रहे थे, मैंने आपकी बातों से लगा उसमें से आप अंदाज निकाल सकते हैं।
1: मथुरा से हमारे साथ कुंज बिहारी जुड़ रहे हैं। महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये अपना गोल्ड कौन सा समय ठीक महसूस करें, जैसे आपका उतार चढ़ाव चल रहा है, और दूसरा सवाल शेयर मार्केट के अलावा और कोई अच्छी जगह है जहां हम सेफ अपना इन्वेस्ट करें, और तीसरी एक छोटी सी बात अपने कोली सर से है, ये पूछना है इनसे कि अगर ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो जाता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो जाता है, इसमें इन दोनों चारों पार्टियों को किसको क्या बेनिफिट मिलेगा इतना बर्बादी होने के बाद?
0: चलिए, गोल्ड का आपने कहा, गोल्ड का तो मुझे भविष्य उज्जवल नजर आता है, क्योंकि आपने तीन पूछे हैं तो मुझे छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे। शेयर मार्केट के अलावा आपने पूछा और कहाँ, तो ऐसे समय में जब निवेश करना हो तो आप जो फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, आरबीआई के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तब तक के लिए निवेशक एक तरह से रिसेस ले सकते हैं। रिसेस होती थी ना जब स्कूल में हम छुट्टी हो जाती थी, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई बंद हो जाती थी, तो आप एक रिसेस तौर पे इन पे ले सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। दूसरा इन्होंने पूछा जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो आपके मुंह में पहले तो घी शक्कर, अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है और फिर क्या आपस में ये गले मिल लेंगे? अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुंज बिहारी जी मुझे यहां से कुछ बहुत ज्यादा अभी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। काश आपकी बात सत्य हो, आप पहले बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि ये लोग आपस में गले मिल जाएंगे, पर अभी मुझे कोई ऐसा आसार तो नहीं नजर आ रहे। निश्चित और प्राची मेरे ख्याल
1: में कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इस तरीके की जो युद्ध चल रहे हैं वो अगर सेटल हो जाते हैं तो किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये किस चीज, ये कौन से नाक की लड़ाई,
0: क्या खोया क्या पाया बाद में? देखिए मुझे लगता है युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, केवल मानवता हारती है, नुकसान जान माल का नुकसान होता है, तो एक लाइन में जवाब दूं तो यही है।
3: Right, and on to some other stories. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai tomorrow evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is potential to impact agentic AI, tokenization, quantum, trusted, connected global systems for inclusive finance. According to an official press release, GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The discussions will focus on how AI, programmable finance, quantum technologies and other critical and emerging technologies can create trusted, inclusive and measurable outcomes for citizens, enterprises and economies globally. Since 2020, Global FinTech Fest has emerged as a leadership platform bringing together policymakers, regulators, central banks, financial institutions, fintechs, technology companies, investors, academia, and other global stakeholders to discuss and shape the future of finance. The 7th edition will run till 11th of September 2026 in Mumbai.
1: Delhi se Deepak hamare saath jud rahe hain. Deepak ji, sanshipt mein apna sawal poochiye please.
4: Namaskar ma'am.
1: Ji.
4: Mera kuch nahi hai, jaise market down hoti hai to liquid fund ke jo interest hai wo bhi down hota hai ya wo same chalta rehta hai?
0: दीपक, लिक्विड फंड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो उस पर रिटर्न होता है, वो वेरी करता रहता है। वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे, कि कितने लोग लिक्विड फंड्स, मैं जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए जल्दी से मैं बता दूं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो 2-3 दिन के लिए आप पैसा रखते हैं, उसमें आपको अमूमन मैंने देखा है करीब 6-7% डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई इतना रिटर्न आता है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है दीपक उसमें, पर वो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं। और बहुत ही छोटे टर्म के लिए जब किसी को पैसा रखना हो तो बजाय इसके कि सेविंग्स में पड़ा है, तो बहुत लोग इसमें इसको को करते हैं और बड़ा बड़ा कामयाब तरीके से करते हैं।
3: Moving on to crude, the global crude oil prices climbed to near 6-week high as renewed strikes over the weekend in the Strait of Hormuz heightened concerns over supply disruptions. Brent crude was trading 1.1% up at $97.37 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $92.20 per barrel when reports last came in.
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज लगभग 1.5% फिसलकर 1,52,703 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत 1.5% से अधिक बढ़कर 2,31,650 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुद्दुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुद्दुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यवसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
2: नौवां बेंगलुरु स्पेस एक्सपो BSX 2026 7 से 9 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, जिसका थीम है हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस इनोवेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026 में कहा कि नासा ने आधिकारिक तौर पर इसरो को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: इंडिया इज अ प्राउड सिग्नेटरी ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड्स एंड नासा हैज ऑफिशियली इनवाइटेड इसरो टू जॉइन अस इन द मून बेस प्रोग्राम। मेक नो मिस्टेक, वी आर गोइंग बैक टू द मून and we want India by our side on the lunar surface. The moon may be our destination, but the engine of this journey is ground level innovation, right here in our labs, startups, and commercial markets. India's bold space sector reforms ignited a commercial awakening.
2: इसमें जो चर्चा हो रही है उसमें स्पेस इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, वर्तमान आकार और लक्ष्य। BSX के अनुसार भारत का स्पेस सेक्टर लगभग 8.4 बिलियन का है और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी करीब 2-3% है और 2033 तक इसे लगभग $44 बिलियन तक ले जाने और करीब 11 बिलियन एक्सपोर्ट्स हासिल करने का लक्ष्य माना गया है। पर प्रश्न जनरल भट्ट यहाँ पे ये है कि क्या भारत 8-10% ग्लोबल स्पेस मार्केट शेयर हासिल कर सकता है?
4: मेरा जवाब ये होगा कि 8-10 नहीं, हो सके और अगर सब चीजें ठीक से चलेंगी तो ये 10 से ज्यादा भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आगे आ रही हैं रॉकेट लॉन्च में, सैटेलाइट्स में और एप्लीकेशंस में, मेरा तो ये विश्वास है कि ये 10% से भी ज्यादा बढ़ेगा।
2: हम इसरो की बात यहाँ पे करते हैं, इसरो और इंडस्ट्री ने साथ मिलकर, अभी आपने प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की, इसरो को R&D स्ट्रेटेजिक मिशन और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का भी नेतृत्व हासिल है, जबकि रूटीन मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल एक्टिविटी में प्राइवेट इंडस्ट्री की भूमिका बढ़ रही है। आपने भी अभी चर्चा की कि उसकी भूमिका और भी अधिक होने वाली है। प्राइवेट पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में?
4: भारत की अगर स्पेस का इतिहास देखा जाए तो जब से इसरो बना और तब से 2020 तक सिर्फ इसरो ही सब स्पेस एक्टिविटीज में भारत में लीड कर रहा था, चाहे वो लॉन्च व्हीकल बनाना हो, चाहे वो सैटेलाइट्स करना हो, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, ये इसरो के ही द्वारा किया जाता था। हाँ, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अपने सब असेंबली और कंपोनेंट्स के वेंडर्स के तरीके से इस्तेमाल करते थे, पर प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता था। 2020 में हमारी सरकार ने यह निश्चय लिया कि अब समय आ गया है जबकि प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस में सारी एक्टिविटीज करने की अनुमति दी जाए, और इस डिक्लेरेशन के बाद 2023 में नई स्पेस पॉलिसी बनाई गई, जिसमें कि इसरो का एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इन स्पेस, NSIL, जिसका मतलब है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसरो की पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब उनका कमर्शियल काम करने के लिए, और साथ ही नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, जिसका मतलब प्राइवेट सेक्टर, इन सब के रोल काम को डिफाइन किया गया है। और उसमें ये कहा गया कि इसरो आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लैनेटरी साइंस यानी कि मंगलयान, शुक्रयान और ऐसे मिशन, गगनयान जैसी गगन यात्रियों को भेजना, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, चांद में जाना, ऐसी कार्रवाइयां इसरो करेगा, और जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गई है, जो काबिलियत जिनको कमर्शियल करना है, उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। तो जैसे कि इसरो के पुराने चेयरमैन के शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो उनका कहना था कि स्पेस जो कि सिर्फ इसरो लीड करता था, अब स्पेस एंटरप्राइज बन गया है।

0: और स्पेस एंटरप्राइज में कौन कौन है? लीड में इसरो, साथ में एकेडमिया, साथ में स्टार्टअप्स, साथ में प्राइवेट सेक्टर, ये सब मिलकर अब आगे के स्पेस को आगे बढ़ाएंगे। और ये एक जरूरी भी इसलिए हो गया क्योंकि सैटेलाइट्स बनाने की जरूरत, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ इसरो में न सीमित करके इसको और बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर को पूरा खोल दिया गया।
1: जनरल भट्ट, 2026 तक भारत में लगभग 400 से अधिक प्राइवेट स्पेस कंपनीज और स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम विकसित हो चुका है। लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट की बात आपने की, प्रोपल्शन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें इनमें समावेशित हैं। तो लॉन्च इकोनॉमी की अभी आपने भी चर्चा की, लॉन्च इकोनॉमी की आपने बात की, और एक तरह से भारत को लॉन्च प्रोवाइडर से भी आगे जाना होगा लॉन्च इकोनॉमी बनने के लिए। पीएसएलवी LVM3 की विश्वसनीयता भारत की ताकत है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगला अवसर लो कॉस्ट लॉन्च, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स और हाई लॉन्च, इसके इकोसिस्टम में है। कैसे देखते हैं? लक्ष्य केवल दूसरे देशों को सैटेलाइट लॉन्च करना ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्पेस लॉजिस्टिक्स मार्केट में भी बड़ा हिस्सा हासिल करना होना चाहिए। कैसे देखते हैं इसे आप?
0: तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लॉन्च इकोनॉमी नहीं, मतलब इतनी अहम नहीं है। क्यों अहम नहीं है? क्योंकि जो पूरा ओवरऑल स्पेस सेक्टर की इकोनॉमी में है उसमें लॉन्च की परसेंटेज बहुत ही कम है। यानी कि लॉन्च से जो पैसा मिलता है वो और चीजों के वनस्पत, एप्लीकेशंस के वनस्पत काफी कम है। ज्यादा पैसा, ज्यादा कमाई सैटेलाइट से डेटा जो आता है उसकी एप्लीकेशंस में है, न कि लॉन्च व्हीकल में। पर हाँ, अगर किसी भी देश को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का हिस्सा बनना है तो उनके पास लॉन्च की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और हम गर्व से कह सकते हैं कि इसरो के होने की वजह से हमारे पास PSLV, SSLV और LVM3 होने के कारण ये काबिलियत है। पर एक चीज और हुई है दुनिया में और वो है रीयूजेबल रॉकेट्स। आज के दिन में रीयूजेबल रॉकेट्स ने स्पेस लॉन्च की कीमत को काफी कम कर दिया है। और इसमें एक दो कंपनियां आई हैं दुनिया में जिसमें से लीड कंपनी स्पेसएक्स है और ज्यादातर दुनिया की सैटेलाइट आज उनसे लॉन्च हो रही है। तो फ्यूचर में अगर हमको लॉन्च में ग्लोबल पार्टनर बनना है तो हमको सिर्फ LVM3 तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, हमको रीयूजेबल रॉकेट बनाने। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये ऐसा भी होगा।
1: अभी आपने वो लॉन्च इकोनॉमी की आपने बात की कि सिर्फ लॉन्च इकोनॉमी तक ही नहीं सीमित रहना है, इससे आगे भी बढ़ना है। तो भारत की अगली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रॉकेट्स होंगे या सैटेलाइट्स होंगे या स्पेस डेटा आधारित सर्विसेज होंगे, इसके बारे में इसरो या ऐसी एजेंसीज और क्या आगे काम कर रही हैं? आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इस पे?
0: देखिए, अगर आज के दिन में भी ग्लोबल मार्केट देखा जाए पूरा की भाई जितना भी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा पैसा है सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके अलावा लोकेशन बेस्ड सर्विसेज पर और सैटेलाइट्स के डेटा के एप्लीकेशंस, जो कि एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, हर एक अनेक जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास एक फायदा है कि जैसे कि जब IT रेवोल्यूशन हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी स्टेम एजुकेशन में इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम उस बूम का इस्तेमाल कर पाए। तो इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि एप्लीकेशंस ही भारत की स्ट्रेंथ होगी। ये जरूरी है कि लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट बनाने की काबिलियत तो होनी होनी है, पर जहां पैसा है, जहां पर ज्यादा ग्लोबल मार्केट में हम कॉम्पिटेटिव होंगे, वो है मल्टीपल एप्लीकेशंस में।
1: अभी आपने थोड़ी देर पहले गगनयान, चंद्रयान की बात की, तो गगनयान के आगे स्पेस स्टेशंस, लूनर एक्सप्लोरेशन और डीप स्पेस मिशंस भारत के लिए केवल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि नई इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज के तौर पर भी उभर कर आई हैं, और हाईटेक सप्लाई चेन्स के भी काफी अवसर हैं यहाँ पे। अभी ये BSX में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी प्रमुख विषय बनाया गया है, इस विषय में कुछ कहना
0: जी हाँ,
1: चाहेंगे आप?
0: देखिए जैसे आप कह रहे हैं, एक तो बहुत ही एक अच्छी चीज हुई है कि भारत की सरकार ने और इसरो ने ये डिफाइन किया है कि 2040 तक हमने क्या करना है। और उसमें सबसे पहले अपने गगनयात्री मतलब ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेजना है, जिसकी शुरुआत इस साल के आखिरी में होगी, जब हो सकता है पहला रोबो गगनयात्री जाए। दो तीन अनक्रूड फ्लाइट होने के बाद में क्रूड फ्लाइट जाएंगी और हो सकता है अगले साल के आखिर और या 2028 तक हमारा पहला गगनयात्री स्पेस में होगा। पर बहुत अहम है कि साथ ही भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2028 और 2035 के बीच में बनेगा, और 2040 में भारत से लॉन्च व्हीकल्स में पहला इंडियन चांद पे जाएगा। नाउ ये सब जो मिशंस हैं, ये सिर्फ साइंटिफिक मिशंस नहीं है, पूरी दुनिया में ये फ्यूचर में अगर देखा जाता है स्पेस का, और ये कहा जाता है कि अगले 30 40 50 साल में स्पेस क्या होगा, तो जैसे आप कह रहे हैं अर्थ की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्पेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, वो होंगी एस्ट्रॉइड माइनिंग की, वो होंगी पावर एनर्जी को नीचे, सोलर एनर्जी को नीचे अर्थ में भेजने के लिए, डाटा सेंटर्स के स्पेस में बनने के लिए, तो बहुत सी जो इकोनॉमी की एक्टिविटीज हैं, अर्थ के लिए जो एक्टिविटीज हैं, वो स्पेस में की जाएंगी, और उसको करने के लिए क्षमताएं अभी से शुरू हो जाएंगी, और उसी में पहला गगनयात्री जाना है, अंतरिक्ष स्टेशन बनना है और चांद में जाना है, उसके आगे चांद में कॉलोनी और उससे आगे मंगल पे जाना। ये सब एक्टिविटीज सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, बल्कि नई फ्यूचर की इकोनॉमी का हिस्सा रहने के लिए, और जैसे इसरो ने हमें आज हाई टेबल पे रखा हुआ है स्पेस के, हम कुछ ही देशों में से हैं जो इन्होंने साउथ पोल पर चांद के लैंड किया है,
1: जी
0: तो ये काबिलियत इसरो हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा, बनाता रहेगा।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश को अपनी सॉवरेनिटी बरकरार रखने और उसे और मजबूत करने का पूरा हक है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, और तो ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर
0: जी
1: हम बात करें जनरल भट्ट, तो भारत को यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों के साथ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन्स और ज्वाइंट मिशन में सहयोग करते हुए देखा जा सकता है। हाल में ही कई देशों के साथ हमने ऐसे पैक्ट और ट्रीटी और डील भी किए हैं, और BSX 2026 में यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ डेडिकेटेड इंटरनेशनल सेशंस भी रखे गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे?
0: देखिए, स्पेस की एक डोमेन है दुनिया में जहां की हमेशा ही ग्लोबल कोऑपरेशन रहा है, और अगर हम अपने स्पेस के इतिहास को देखें तो जब पहला स्पेस रॉकेट हिंदुस्तान ने भेजा था, वो स्पेस रॉकेट हमको अमेरिका ने दिया था, उसको थुम्बा तक पहुंचाने की काम एक रशियन हेलीकॉप्टर ने किया था, और उसके ऊपर जो रॉकेट साउंडिंग का जो वो था, वो फ्रांस से आया था।
1: जी
0: तो हमारी भारत की फ्रांस के साथ में, जापान के साथ में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में और अमेरिका के साथ में और साथ में रशिया के साथ में भी हमेशा स्पेस में कॉपरेशन रहा है। और दूसरा, आज के दिन में जैसे BSX में इतने विदेशी देश इसलिए आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ क्षमता और काबिलियत है, यहाँ ऐसे को प्रोडक्शंस, ऐसे को फ्यूचर के लिए ऐसे चीजें, कार्रवाइयां हमारे स्टार्टअप्स और हमारी कंपनियों के साथ कर सकती हैं जिससे कि ग्लोबल पार्टनरशिप्स बन पाए, और इसरो ने पहले से शुरू किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब किसी देश में जाते हैं तो स्पेस रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा होता है, और ये कॉपरेशन दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है।
1: जनरल भट्ट, अभी आपने काफी उभरते हुए क्षेत्रों की बात की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि कोई भी आज के डेट में स्पेस वो अनछुआ नहीं रह सकता है और होना भी नहीं चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, या कुछ और भी ऐसे जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं इसकी बात करें, तो इसमें स्पेस मिशन या स्पेस इकोनॉमी या हमारा जो प्रोग्राम है स्पेस का, वो कैसे किस हद तक मदद कर सकता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जिसने सबसे बड़ा चेंज लाया वो है मिनिएचराइजेशन। सैटेलाइट जो कि एक बड़ी कोठी के बराबर होती थी, छोटी इतनी एक फ्रिज से भी छोटी हो जाती है,
1: जी
0: जो कि एक बहुत मिनिएचराइजेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। साथ ही AI और ML का इस्तेमाल काफी आगे तक है।
1: जनरल भट्ट, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

भटकी है उजालों में नजर, भटकी है उजालों में नजर शाम से पहले, ये शाम ढले का सासर है शाम से पहले। जी हाँ, सुरीली सी सफर पर, सुरीली सी डगर पर सुरों का काफिला लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 7:26 और 18 सेकंड। आप हैं अपनी ही दोस्त रूपा धवन के साथ, तो जनाब जुड़े रहिए हमारे साथ और सांझ ढले में कुछ अच्छे अच्छे से गीतों के साथ तरोताज़ा होने के लिए तैयार हो जाइए। और ये मत कहिएगा कि हमने आपको फिर से पुकारा नहीं, तो जनाब हमने आपको पुकार लिया है और चलते हैं एक अलग सी दुनिया में एक अलग सी धुन के साथ। नमस्कार।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मेरे वाले में निडलिया इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें।

जी जनाब, तो वक्त हो चला है 7:33 और 35 सेकंड और आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो ये शाम मस्तानी में तराने गूंज रहे हैं, मस्ताने घूम रहे हैं और सांझ ढले का सफ़र चल रहा है, बदस्तूर जारी है अपने मुकाम पर चलने के लिए।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सांझ ढली कार्यक्रम में। वक्त हुआ है 9:41 आप हैं रूपा के साथ और जनाब दबी हुई कुछ ख्वाहिशें अनकही सी कुछ बातें तलाशती हैं रास्ता जब भी आती हैं ये शामें। जो कह ना पाए लफ्जों में कभी सपनों ने वो दास्तान सुना दी एक मीठी सी मुस्कान के साथ जिंदगी ने फिर से नई राह दिखा दी। जी हाँ राहों पर तो हैं हम लेकिन मंजिल मंजिल हमारी आप हैं क्योंकि आपके बिना हमारा हर सफ़र अधूरा है। फिलहाल सांझ ढले में हम बातें कर रहे हैं आपके साथ और जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ, तो इसी तरह हमेशा बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ये साथ बहुत ही प्यारा है।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरबीआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नगर निगम से यह भी पता लगाने को कहा है कि इमारत का निर्माण और संचालन वैध अनुमति के साथ किया गया था या नहीं। न्यायालय ने नगर निगम को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेइंग गेस्ट, पीजी आवास और छात्रावासों का 1 सप्ताह के अंदर व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
8: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
7: दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दक्षिण जोन के दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायता अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा इमारत के कथित मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आसपास के पीजी और इमारतों को भी बारीकी से जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई नीति लाई जाएगी जिसके अंतर्गत पीजी, नर्सिंग होम, स्कूल और अन्य संस्थानों की इमारतों का समय समय पर संरचनात्मक ऑडिट और इमारत सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किया जाएगा। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सत्य निकेतन घटना के प्रकरण में दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन दिल्ली सरकार की जवाबदेही और निर्णायक कार्यशैली का प्रमाण है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि घटना के लिए केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली के सांसदों और विधायकों की बैठक में कल की घटना पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। उपराज्यपाल सचिवालय में आज सत्य निकेतन क्षेत्र की दुर्घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद शामिल रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सूद ने बताया कि बैठक के दौरान पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती तथा आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को और कम करने के उपायों पर विचार किया गया। श्री सूद ने बताया कि सभी विभाग के साथ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात की छूट देने और मौजूदा हॉस्टलों के पुनर्विकास के लिए अधिक फर्श क्षेत्र अनुपात की मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जस्टिस गुहा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए जा रही रिपोर्ट के अनुसार पीजी और कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए उपायों पर भी विचार किया गया।
9: सभी विभागों की एक साझा बैठक जिसमें पुलिस, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की जगह जगह प्लेसमेंट, हमारा रिस्पांस टाइम और कम कैसे हो, और जो बड़ी तादाद में एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज का गैप है उसको पूरा करने के लिए एफएआर में जरूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए एफएआर में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना।
7: श्री सूद ने सत्य निकेतन की दुर्घटना के बाद पिछली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से चली आ रही उपेक्षा और कुप्रशासन के कारण दिल्ली में बुनियादी ढांचे और व्यवस्थाओं की स्थिति खराब हुई है। श्री सूद ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास छात्रों के लिए संचालित पीजी आवासों को विनियमित करने के लिए कोई प्रभावी नियम कायदे नहीं बनाए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
10: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
7: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने सत्य निकेतन दुखद प्रकरण में विद्यार्थियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस संबंध में आज कुलपति द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान दुर्घटना में मृत विद्यार्थियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों की जान का नुकसान दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ा है। श्री सिंह ने सभी प्राचार्यों से अपने अपने महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 6 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान हिंदू कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, मिरांडा हाउस और रामजस कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की। एक रिपोर्ट।
11: पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद महादेव डुम्बरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सुचारू यातायात और सीमा चौकसी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार बैठक में गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने, अपराधियों और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया सूचनाएं साझा करने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच करने पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान हवाई निगरानी और दिल्ली गाजियाबाद व नोएडा पुलिस के बीच बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन पर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में VIP रूट मैनेजमेंट, गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन तैयारियों पर भी समीक्षा की गई। दिल्ली पुलिस ने संबंधित सहायता पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
7: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
10: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।

0: दिल्ली नगर निगम एमसीडी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से आज नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली के सुभाष नगर स्थित एमसीडी पश्चिमी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल तथा टिकाऊ प्रभावों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य विषय निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल प्रदूषण कम करने तथा बायोमास जलाने के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर केंद्रित रहा। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली सचिवालय में मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 और डेंगू को लेकर जन प्रतिनिधियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पार्षद, जन प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जन प्रतिनिधियों को H1N1 और डेंगू के लक्षणों, रोकथाम, समय रहते पहचान और उपचार के बारे में व्यावहारिक जानकारी देना था। कार्यशाला के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी पहुंचाने और रोकथाम के उपायों के लिए नागरिकों को एकजुट करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी की रोकथाम को केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसके लिए समुदाय स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। उन्होंने पार्षदों से स्वास्थ्य विभाग और फील्ड टीमों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी राजधानी के हर वार्ड, मोहल्ले और हर घर तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सावधानियां और संदेशों को अधिक प्रचारित करें तथा H1N1 से जुड़ी गलत धारणा को दूर करने का प्रयास करें। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सजग के अंतर्गत 72 घंटे का गहन परिवर्तन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, सेंधमारी और चोरी पर रोक लगाना, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध रूप से रह रहे प्रवासी से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण तथा अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना था। इस दौरान पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया। राजधानी में आज तेज धूप के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ बहुत हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया।

0: ओ भाई,
1: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: गोवा के तले गांव में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। ये सेवा 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक ही सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रिजनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए डीएनए नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार डीएनए संबंधी जानकारी देना चाहते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Defence Acquisition Council today cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. The approval was granted during

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय है मधुरिमा का। जी हाँ, 8:11:23। आप सुनते हैं मधुरिमा कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत यानी रागों पर आधारित गीतों को। आज आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का पहला नगमा जो राग बिहाग पर आधारित है। थाट बिलावल, जिसके बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने और स्वर है लता मंगेशकर जी का।

जुड़ चुके हैं आप फिर से एक बार आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:18 और 35 सेकंड। आप हैं इस वक्त मधुरिमा में रूपा के साथ। तो दोस्तों, अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं राग यमन कल्याण पर सजा हुआ ये खूबसूरत सा गीत हकीकत फिल्म से। इसे हमने लिया है लता जी के स्वर में।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रूपा के साथ, और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। लेकिन आज आपने क्या सुना मधुरिमा में? मधुरिमा में हमने राग विहाग और राग यमन कल्याण के राग पर आधारित फिल्मी गीतों को सुना। आशा है, उम्मीद है कि आज आपको मधुरिमा का कार्यक्रम पसंद आया होगा, उस पर सुनवाए गए गीत भी बहुत पसंद आए होंगे। इसी के साथ विदा लेती है रूपा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में शीतल ने बनाई कंपाउंड महिला वर्ग के फाइनल में जगह, ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगी सरिता। दलित ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन की स्थिति मजबूत, ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में बेन शेल्टन ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह, अल्कराज से होगी अगली भिड़ंत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंट कप विजेता टीम ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। और भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया, एएफसी फुटबॉल अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफिकेशन की उम्मीदें बढ़ी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज से, जो अहमदाबाद में हो रहा है, जहां शीतल देवी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके फाइनल में जगह बना ली है। अहमदाबाद में वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियन और भारत की स्टार पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल ने आज सरिता को सेमीफाइनल मुकाबले में हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में आज शीतल ने अपनी देश की सरिता को 145 के मुकाबले 143 के करीबी अंतर से हराया। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी बुधवार को फाइनल में कजाकिस्तान की दूसरी वरीयता प्राप्त आईजादा सेइडन का सामना करेंगी। वहीं सरिता ब्रॉन्ज मेडल के लिए चीन की वांग हुईटिंग से मुकाबला करेंगी, जिन्होंने दूसरे राउंड में दुनिया की पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी खिलाड़ी पायल नाग को हराया था। शीतल ने कल महिला कंपाउंड क्वालिफिकेशन में सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर 698 हासिल करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी की शुरुआत को यादगार बना दिया था। 19 वर्षीय तीरंदाज शीतल ने अपना ही एशियाई रिकॉर्ड 1 पॉइंट से बेहतर किया। यह रिकॉर्ड उन्होंने पहले 9वें मेस्टो में दूसरे चरण में बनाया था। इस प्रदर्शन ने आईची नागोया 2026 एशियन पैरा गेम्स से पहले शीतल की शानदार फॉर्म को भी दिखाया, जहां वह कंपाउंड महिला व्यक्तिगत और मिक्स टीम खिताब का बचाव करेंगी। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टोमन कुमार ब्रॉन्ज मेडल के लिए इराक के अब्बास कादिम से मुकाबला करेंगे। कादिम ने शुरुआती राउंड में राकेश को हराया था। राकेश स्वागु मिलंग से 2 पॉइंट पीछे रहे, जिन्होंने अपने करियर का बेस्ट 702 का स्कोर बनाया। वहीं मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और उनके साथी खिलाड़ी टोमन कुमार 696 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर रहे। राकेश और टोमन ने मिलकर 1398 का स्कोर किया और कंपाउंड पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विशेष। शीतल देवी ने इस टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन तो किया ही है, लेकिन मिक्स टीम इवेंट में कैसा रहा है उनका प्रदर्शन?
2: ये प्रशांत, शीतल ने आज एक बार फिर सबको अपने खेल से प्रभावित किया है, लेकिन आज वो अकेले नहीं थी। शीतल ने अनुभवी भारतीय तीरंदाज राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, और यह उपलब्धि जो है वो दोनों खिलाड़ियों की सफल साझेदारी में एक और बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भी इन लोगों ने कई रिकॉर्ड बनाए और यादगार प्रदर्शन किए हैं। अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों का मिक्स टीम ब्रॉन्ज मेडल भी है। इस जोड़ी ने कुल मिलाकर शानदार 1400 पॉइंट हासिल किए और पेरिस 2024 में बनाए गए अपने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को 1 पॉइंट से बेहतर किया। शीतल ने लालपति के साथ मिलकर 1368 का स्कोर किया और कंपाउंड महिला डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल की।
0: जी बिल्कुल, शीर्ष वरीयता हासिल की। और बुधवार को जो फाइनल मुकाबला है, सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद करें कि फाइनल जो आईजादा सेइडन से होगा वो जीत कर स्वर्ण पदक भारत के नाम करे। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दलित ट्रॉफी क्रिकेट का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एमआई चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। खिताबी मुकाबले के दूसरे दिन ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक रनों की यादगार पारी खेलकर इतिहास रच दिया।
3: Brilliant stuff this. is just leaned into the drive and smashed it into the gap. And the captain leading from the front is first 100 in Dulip Trophy.

0: coming at the right time and at the right occasion.
1: विशेष किताबी मुकाबले का पहला दिन जो था ईस्ट जोन के नाम रहा था, आज दूसरा दिन कैसा रहा उनका प्रदर्शन?
2: प्रशांत, जब से ईस्ट जोन ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है तब से वो साउथ जोन पर हावी ही नजर आए हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई थी टीम को और उसके बाद शिखर मोहन ने उसको बरकरार भी रखा था, लेकिन जब बीच में एक विकेट जो है जल्दी गिर गया उसके बाद ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अंतिम ओवरों में अनुकूल रॉय और कुरैशी ने मिलकर टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
1: जी बिल्कुल, ईशान किशन का भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर हम ईशान किशन के सफर की बात करें, घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार वापसी का सफर रहा है ईशान किशन का, हर मुकाबला एक नया कीर्तिमान बयां कर रहा है। आज किन इस पारी के दौरान किन रिकॉर्ड को उन्होंने अपने नाम किया?
2: बिल्कुल प्रशांत, ईशान किशन जब भी अब क्रीज पर उतरते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए उतरते हैं। अगर आज उनके रिकॉर्ड की बात करें तो ईशान किशन जो है वो अरुण लाल और सबा करीम के बाद ईस्ट जोन की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं और ईशान जो है दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शतक लगाने वाले ईस्ट जोन के पहले बल्लेबाज बने। ईशान से पहले जो हाई स्कोर था वो रिद्धिमान साह के नाम था जिन्होंने 2012 के फाइनल में 170 रन बनाए थे। ईशान ओवरऑल दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में 200 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं फाइनल में। इसके साथ ही बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज वे दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने दिनेश कार्तिक के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। कार्तिक ने साल 2010 में दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में साउथ जोन की ओर से खेलते हुए 183 रन की दमदार पारी खेली थी।
1: जी बिल्कुल, दमदार पारी खेली। और हम श्रोताओं को बता दें कि ईशान किशन ने इस पारी में 334 गेंद का सामना किया और 270 रन भी बनाए जिसमें 30 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। और विशेष जी,
2: इसी के साथ ईशान जो है वो दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले पहले विकेटकीपर कप्तान भी हैं और वनडे इंटरनेशनल और दिलीप ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज।
1: और विशेष, हम देखेंगे तो दोनों ही डिजर्विंग टीम जो है वो फाइनल मुकाबला खेल रही है, लेकिन कैसा रहा है उनका इतिहास इस टूर्नामेंट का?
2: इतिहास की बात करें प्रशांत, तो ईस्ट जोन जो है वो 7 बार अब तक फाइनल खेल चुकी है और 2 बार उन्होंने खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने अपना आखिरी फाइनल 2012-13 में खेला था जहां वो विजेता बने थे। लेकिन अगर साउथ जोन की बात करें तो उनका डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने 25 फाइनल खेले हैं और 14 बार खिताब जीता है, लेकिन 2025 में फाइनल में उनको सेंट्रल जोन से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि ईस्ट जोन 13 साल का सूखा खत्म करती है या साउथ जोन अपना दबदबा जो है कायम रखती है।
1: बिल्कुल, देखना होगा कि मुकाबले का तीसरा दिन किस टीम के नाम रहता है। उधर मेरठ मेवरिक्स ने यूपी T20 लीग का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में मेरठ मेवरिक्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लखनऊ फाल्कन्स को 94 रन से हराया। रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ टीम का प्रदर्शन खिताबी मुकाबले में लाजवाब रहा। मेरठ मेवरिक्स ने दूसरी बार खिताब को अपने नाम किया। इससे पहले साल 2024 में टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। मेरठ मेवरिक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए। 204 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ फाल्कन्स की टीम सिर्फ 109 रन पर ही सिमट गई। और अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट की ओर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेन शेल्टन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सित्सिपास को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अब बेन शेल्टन का सामना कार्लोस अल्काराज से होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: 8वीं वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन ने चौथे दौर में ग्रीस के स्टेफानो सित्सिपास को लगातार सेट में 6-2, 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। शेल्टन ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाया और सित्सिपास को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और तीनों सेट आसानी से जीत लिए। बेन शेल्टन के लिए यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। टूर्नामेंट के शुरुआती 3 मैच में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। टेलन ग्रीगस्पुर, ह्यूबर्ट हरकास और डेनिस शापोवा लोब के खिलाफ उन्हें जीत के लिए 4-4 सेट खेलने पड़े। हालांकि चौथे दौर में शेल्टन ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया। आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 23 वर्षीय अमरीकी खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को कोई मौका नहीं दिया और पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। शेल्टन ने ये मैच सिर्फ 1 घंटा 51 मिनट में ही जीत लिया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्सकैन।
1: विशेष, बेन शेल्टन ने आज तो बेहतरीन खेल दिखाया ही है, लेकिन यूएस ओपन में और कौन सी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम की है?
2: बेन शेल्टन ने अपने करियर में 6ठी बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और वो उनका यूएस ओपन में दूसरी बार है जब उन्होंने अंतिम 8 में जगह बनाई है। शेल्टन ने 2023 में भी यूएस ओपन में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उस समय वह टूर्नामेंट सिर्फ दूसरी बार खेल रहे थे लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रहे थे।
1: और अब शेल्टन का जो मुकाबला है वो अभी के मौजूदा जो चैंपियन है कार्लोस अल्काराज से होगा। और अगर अल्काराज की बात की भी की जाए तो लगातार उनका फॉर्म बेहतरीन रहा है। टॉमी पॉल को उन्होंने सीधे सेटों में हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई, तो अब अप्रैल के बाद भी वो अब सीधे ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस होंगे उनके लिए?
2: बिल्कुल प्रशांत, इनके लिए काफ़ी जो है मुश्किलें होने वाली हैं क्योंकि अल्काराज जो है उनके सबसे कठिन प्रतिद्वंदियों में से एक हैं। दोनों के बीच अब तक हुए 3 ATP मुकाबलों में अल्काराज ने ही जीत हासिल करी है और डोमिनेटिंग तरीके से इनको हराया है। दोनों खिलाड़ियों की जो पिछली भिड़ंत हुई थी वो फ्रेंच ओपन में पिछले साल हुई थी, तो इस बार जो कुछ पॉजिटिव्स लेकर जाना चाहेंगे बेन शेल्टन।
1: अब देखना होगा कि दोनों मुकाबले कितना दिलचस्प होता है और अलग अलग वर्ग में भी मुकाबले खेले जा रहे हैं, खिलाड़ियों का कैसा रहा है प्रदर्शन और आज किन खिलाड़ियों पर निगाह होंगे विशेष।
2: अगर महिला सिंगल्स की बात करें प्रशांत, तो एम्मा नवारो ने एना कलिस्काया को 6-4, 6-2 से हराया है और वहीं जेसिका पेगुला ने सोरोना सिरेस्ता को 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। मीरा एंड्रीवा और इगा स्वाइतेक जो है वो अपने अपने मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल के लिए स्पर्धा करती हमको नजर आएंगी। और अगर हम पुरुष सिंगल्स की बात करें तो डेनिल मेदवेदेव राउंड ऑफ 16 में फ्रांसिस टियाफो के खिलाफ हारकर बाहर हो गए। ये उनका जो प्रदर्शन रहा है ये काफी निराशाजनक रहा है और इसमें हमको इससे पहले नोवाक डिजोकोविच की भी हार देखने को मिल चुकी है। यानिक सिनर इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं
1: जी। और आज भी कई प्रतिष्ठित मुकाबले खेले जाएंगे जिस पर सभी टेनिस प्रशंसकों की निगाहें होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप की विजेता टीम ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के अध्यक्ष थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, सोसाइटी के उपाध्यक्ष, अधिकारी और ईस्ट बंगाल क्लब के खिलाड़ी उपस्थित रहे। और अब बात फुटबॉल पर। ताशकंद में भारत ने कल ग्रुप बी के अपने आखिरी क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश को 3-0 से हराया। इस मैच में जीत के साथ भारतीय टीम ने AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं।
4: भारत की शानदार जीत में डेनी मेतेई लेशराम, विशाल यादव और मोहम्मद अरबाज ने भारत के लिए गोल किए। इस जीत ने भारतीय टीम की 20 साल बाद AFC अंडर 20 एशियन कप में पहली बार जगह बनाने की दौड़ में बने रहने की उम्मीदें बरकरार रखी है। ग्रुप बी में 3 मैचों के बाद भारत 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। डेनी ने 25वें मिनट में भारत के लिए पहला गोल किया। इसके बाद विशाल यादव ने 1 घंटे के खेल के दौरान शानदार खेल प्रदर्शन करते भारत के गोल को दोगुना कर दिया। मोहम्मद अरबाज ने 79वें मिनट में एक जबरदस्त शॉट के साथ भारत को 3-0 से आगे कर दिया और टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। अमीशा स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोता आपको बता दें कि प्रतियोगिता में सीरिया के 2 मैचों में 3 अंक है लेकिन उन्हें ग्रुप में शीर्ष पर चल रही उज्बेकिस्तान की टीम से खेलना है। अगर सीरिया अपना मैच हार जाता है या ड्रॉ खेलता है तो भारत दूसरे स्थान पर रहेगा और 8 ग्रुप में से 7 सर्वश्रेष्ठ रनर अप टीमों में शामिल हो जाएगा। इंडोनेशिया के बाली में भारत के करण सिंह ने ITF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर M15 में पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। ये उनके कैरियर का 4th खिताब है जो 2026 सीजन का 3rd और सिंगल्स में 2rd खिताब भी है। प्रतियोगिता में 4th वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने हार्ड कोर्ट पर खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड के 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इसाक ब्रेकफर्ट को 7-5, 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। और उधर वुमेन्स एशिया कप भी खेला जा रहा है, क्या कुछ हाल है अंक तालिका में विशेष?
2: अगर अंक तालिका की बात करें प्रशांत, तो ग्रुप ए में भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और ग्रुप बी का भी जो सेमीफाइनल का स्थान है वो क्लियर हो गया है। श्रीलंका पहली टीम बनी है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली ग्रुप बी से।
1: और श्रोता अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का

0: गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा, राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न to imagine what's possible. This is the BRICS 2026.

0: Moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
4: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
3: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में

0: उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
4: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
5: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
4: There is no shortage of budget.
3: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की अजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। और आज का हमारा विषय है लोक अदालत यानी जनता की अदालत। हम सब जानते हैं कि हमारी सामान्य अदालतों में एक छोटे से केस को भी सुलझने में कई साल लग जाते हैं। सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगा वकील कर सके, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने हमें लोक अदालत का तोहफा दिया और आज पूरे आधे घंटे हम इसी विषय पर बात करेंगे कि लोक अदालत क्या है, कैसे ये काम करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट आशीष कुमार पांडे जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। नमस्कार आशीष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन ऑल इंडिया रेडियो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।
0: जी श्रोताओं, और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल करना शुरू कीजिए। नंबर है 0113104 1 0113717 1 7 0113717 1 6 और 0113144444 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आशीष जी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत क्या है और ये कैसे काम करती है।
1: देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, वो सबके लिए न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और इसी तरीके से संविधान में त्वरित न्याय की भी बात करी गई है। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को जब हम एक वास्तविकता के साथ सामने रखते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में आप पाएंगे कि मामले बहुत समय तक लंबित हो जाते हैं, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है, लोगों को कई बार आप पाते हैं कि प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, और सालों साल, जैसे कि एक पॉपुलर डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं सरकारों की तरफ से कि किस तरीके से हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ को प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतार पाएँ। अब इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास रहा है, हमने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 87 में लाए, उसके तहत मल्टी टीयर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नेशनल लेवल पर आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अब ये अथॉरिटीज़ समय समय पर उन फोरम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती रहती हैं जिन फोरम्स में कोर्ट में चल रहे केसेस या जो केसेस कोर्ट में ले जाए जाने वाले हैं उन केसेस को रेफर कर सकते हैं
0: जी।
1: ये फोरम्स आपस में दोनों पार्टीज को बिठाकर एक तरीके से कॉन्सिलिएशन का काम करती हैं और आपस में ही एक सुलह समझौते के आधार पर अपना अवार्ड पास करती हैं। तो एक तरीके से जिसको हम ADR सिस्टम कहते हैं, एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है, इसकी तरफ प्रयास किया गया है लोक अदालतों के द्वारा। जी
0: जी, और अब हमारे श्रोताओं के प्रश्नों की भी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा हिसार से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी।
2: हाँ जी, नमस्कार जी, और वकील साहब को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार राजेंद्र जी,
2: मैं ये जानना चाहता हूँ वकील साहब से कि लोक अदालत में कौन से केसों की सुनवाई होती है और दूसरा और कौन से केस की नहीं होती। आम आदमी कैसे पता करे कि कहाँ लोक अदालत लगती है और इसके बारे में कब कब सूचना दी जाती है, इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार। देखिए, मैं आपके आखिरी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, कब कब लोक अदालतें लगती हैं और कहाँ कहाँ लोक अदालतें लगती हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक एनुअल कैलेंडर जारी करती है जिसमें कि कब कब लोक अदालतें लगनी हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड कैलेंडर होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका है ये कहाँ लगती हैं। न्याय के सर्वोच्च स्तर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तालुका स्तर पर, मंडल स्तर पर, हर जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। और वो लोक अदालतें सामान्यतः जो राष्ट्रीय कैलेंडर बना होता है उसके अनुसार काम करती हैं और कभी कभी स्पेशल लोक अदालत भी लगती हैं। फिर आपने सवाल पूछा कि किस तरीके के केसेस इसमें डील किए जा सकते हैं और किस तरीके के नहीं डील किए जा सकते हैं। देखिए, जो भी सिविल केसेस होते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस लोक अदालतों में रेफर किए जा सकते हैं, वहाँ पर ले जाए जा सकते हैं। और वो क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे आपका चेक बाउंस का केस हो गया, या ऐसे कंपाउंडेबल केसेस जिसके लिए लॉ में प्रोविज़न है, वो सारे केसेस लोक अदालतों में लाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई हीनस क्राइम हुआ है, जैसे अगर कोई रेप का केस हुआ है, एक मर्डर हुआ है, इस तरीके के केसेस में चूंकि स्टेट भी अपने आप में एक पार्टी होती है, ये क्राइम्स न केवल विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं बल्कि समाज के खिलाफ भी एक क्राइम होता है। इस तरीके

0: केसेस को लोक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। जो आपके पारिवारिक झगड़े होते हैं, जो आपके समाज में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, या एक बहुत बड़ी यूटिलिटी निकल कर आई है लोक अदालतों की, आपका गाड़ियों का चालान हो जाता है, आपके बिजली बिल कभी ज़्यादा आ जाते हैं या पानी का बिल ज़्यादा आ जाता है, इस तरीके के सारे मुकदमों की सुनवाई आप पाते हैं लोक अदालतों में होती है, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। हम पाते हैं कि पिछले करीब 5 सालों में करोड़ों केसेस ऐसे हुए हैं, छोटे छोटे केसेस, जिनको कि लोक अदालतों के द्वारा आपसी सुलह समझौते से कंप्लीट किया जा सका है। जी
1: आशीष जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार, और विशेषज्ञ को मेरा भी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार राकेश जी।
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोक अदालत में जो है केस बनता है तो कितना टाइम हमारे को उसमें लग सकता है, मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए लोक अदालत एक दिन विशेष के लिए तय की जाती है, एक पर्टिकुलर डे पर आपका मैटर मार्क होता है, लेकिन लोक अदालत की चूंकि प्रक्रिया इस तरीके की होती है कि कॉन्सिलिएशन पहले जरूरी होता है, तो जब भी आपका केस लोक अदालत के लिए या आप खुद ही एप्लीकेशन के थ्रू रेफर कराते हैं, या कोर्ट को कभी लगता है जिस कोर्ट में पेंडिंग है कि ये एक सुइटेबल केस हो सकता है लोक अदालत के लिए, इसको भेजा जाना चाहिए, तो उसके पहले एक कॉन्सिलिएशन की प्रोसेस, दोनों पार्टीज आपस में बैठकर बात करके कोई एक ऐसा समझौता जो कि दोनों पार्टीज को मंजूर है, जब वो चीज़ हो जाती है तो उसके बाद आप पाते हैं कि ये केवल एक दिन में ही समाप्त हो जाता है, किसी एक दिन विशेष के लिए लोक अदालत लगती है, और अगर पार्टीज ने अपना समझौता कर लिया है तब तक तो वहाँ पर लोक अदालत अवार्ड पास कर देती है, और वो अवार्ड एक डिक्री ऑफ द कोर्ट होता है। जी
1: आशीष जी, हम लोग केसेस की बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
0: जी देखिए, केसेस को अप्लाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट केसेस में भी मैं कैटेगराइज करूंगा कि एक तरीके का केस होता है जो ऑलरेडी फाइल हो चुका है और कोर्ट में चल रहा है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो ऐसे मामले हैं जहां पर कोई पार्टी कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रही है, वो कंसर्न कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास, लीगल सर्विसेज कमेटी के पास एक एप्लीकेशन दे सकती है, और उस एप्लीकेशन के बाद दोनों पार्टीज को नोटिस चली जाती है कि ये आपका कोर्ट, आपका केस इस पर्टिकुलर मीडिएशन के लिए, लोक अदालत के लिए रेफर किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैटर ऑलरेडी चल रहे हैं वहाँ पर, या दोनों पार्टीज आपस में कंसेंट इस चीज़ के लिए दे सकती हैं कोर्ट को, या एक पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट के सामने, और कोर्ट को लगता है कि ये एक सही मामला हो सकता है जहाँ पर लोक अदालत के थ्रू कोई निर्णय निकल सकता है।
1: जी।
0: या फिर अगर दोनों पार्टीज की भी कंसेंट नहीं है, फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज एक्सप्लोर कर सकती हैं और कोर्ट को समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं सुलह समझौता, तो कोर्ट सुओ मोटो भी मैटर को लोक अदालत को रेफर कर सकती है।
1: जी आशीष जी, आज के इस कार्यक्रम में हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दरभंगा बिहार से, मोहन पासवान जी। जी मोहन जी।
3: जी जय हिंद मैडम कट्ठे।
1: जी जय हिंद।
0: जय हिंद मोहन जी।
3: जी मैं जानना चाहता हूँ कि लोक अदालत में आम लोगों के लिए सरकारी वकील का भी व्यवस्था होता है सहायता के लिए?
0: जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं, इनके ट्विन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि जिन लोगों को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, वकील नहीं मिल पा रहा है, वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, मूलतः उसका एक आर्थिक कारण भी होता है, और कई वर्गों के लिए हमारे समाज में लीगल एड की अलग से भी प्रोविजन है। ऐसे में सरकारी वकील, जिसको कि हम सरकारी वकील कहते हैं, वो बेसिकली एक लीगल एड काउंसिल होता है जो कि इम्पैनल्ड होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से, और वो वकील आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से मार्क किया जाता है। और मेरा ये आकाशवाणी के माध्यम से सबसे अनुरोध है, देखिए किसी भी जब सुलह समझौते से कोई निर्णय निकलता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो सुलह कर रहा है उसको अपने लीगल ऑप्शंस पता होने चाहिए, उसको अपने केस की मेरिट पता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि उसका केस कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है, तो वो कभी भी सुलह समझौते की टेबल पर एक मजबूती के साथ नहीं बैठ सकता, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लीगल रिप्रेजेंटेशन होना, एक अच्छा कानूनी जानकार होना, उस सलाह

0: के लिए, लोक अदालत में पार्टिसिपेशन के लिए ये आवश्यक है। और अगर आपके पास ऐसा वकील नहीं है तो आप निसंदेह, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं और लीगल एड काउंसल्स आपकी मदद करने के लिए वहां आपको जरूर मार्क किए जाएंगे।
1: आशीष जी, आइए आप एक और प्रश्न ले लेते हैं ठाणे से गुरुनाथ जी का। जी गुरुनाथ जी।
2: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मेरा क्वेश्चन था लैंड के बारे में था, जमीन का विवाद है मेरा, मेरा परिवार के अंदर जो है वो, तो उसमें मतलब लोक अदालत में जाने के लिए क्या हम सामने वालों को भी मतलब पार्टी करना पड़ेगा कि हम खुद जाके अपील कर सकते हैं?
1: जी।
2: और मेरा दूसरा सवाल है, इसे कैसे पता चले कब लोग अदालत लगती है, कोर्ट में जाए उनसे पता चले, यही पूछना था।
0: जी देखिए, आपके दूसरे सवाल का पहला मैं पहले उत्तर दे देता हूँ। जो भी कंसर्न कोर्ट है आपकी, जो भी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट होगी, आप वहाँ पर जाएंगे तो एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, लीगल सर्विसेज कमेटी का एक ऑफिस वहाँ हर कोर्ट में होता है। वो उस कोर्ट में जो नेशनल कैलेंडर है उसके अनुसार कब लोक अदालत आ रही है या कोई स्पेशल लोक अदालत का गठन किया जा रहा है, इस चीज़ को आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने बोली कि आपका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए क्या आपको दूसरी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा या खुद भी कर सकते हैं? देखिए, इसमें अगर आप लोक अदालत में मामला ले जाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी भी एग्री करती है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो दोनों पार्टीज़ अगली डेट पर कोर्ट के सामने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दे सकती हैं। लेकिन अगर अगली पार्टी उस पर एग्री नहीं कर रही है, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो भी आप अपने वकील से कहकर एक एप्लीकेशन फाइल करा सकते हैं या ओरल सबमिशन भी कर सकते हैं। और कोर्ट को यदि लगता है कि इसमें एक सुलह समझौते की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है तो वो मैटर लोक अदालत को रेफर कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट आपको जो इसका लाभ मिलेगा कि अगर ये मैटर लोक अदालत में सेटल होता है तो एक तो जो बहुत प्रॉपर्टी का मैटर है, सालों साल खिंचते हैं इस देश में, तो उसमें आपको जल्दी उस पर त्वरित रिलीफ मिल सकती है जो कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगी। और दूसरी की साथ में साथ जो आपने कोर्ट फी फाइल करी होगी अपने केस को फाइल करने के लिए, और वो कोर्ट फी भी आपको, अगर मामला लोक अदालत में सेटल हो जाता है तो वो कोर्ट फी भी आपको वापस हो जाएगी। जी
1: आशीष जी, लेकिन अगर एक पक्ष सपोज कीजिए फैसले से खुश नहीं होता है तो क्या वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं?
0: देखिए ये कन्फ्यूजन काफी लोगों को रहता है
1: जी।
0: लेकिन लोक अदालत का अगर आप नेचर देखेंगे, वहाँ जो अवार्ड्स का नेचर होता है वो कंसेंट से होता है। कंसेंट का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज टेबल पर साथ में बैठी, उन्होंने अपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कोई एक ऐसे ऑप्शन पर पहुंचे जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक सहमति का पॉइंट बिंदु बन सकता है। अब अगर दोनों पार्टीज किसी मामले को सेटल करती हैं और उस चीज़ को लेकर सहमत हैं तो कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो लोक अदालत के जो अवार्ड होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और ये अपीलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत ही, जब मैं कहता हूँ कि अपीलेबल नहीं होते हैं तो इसका ये मतलब है, केवल इतना मतलब समझिए कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। लेकिन एक बहुत छोटी सी फाइन डिस्टिंक्शन ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू, अगर लोक अदालत में भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे परमानेंट लोक अदालत होती है, वहाँ पर पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 1 करोड़ होता है, अगर लोक अदालत ने ही अपना ज्यूरिडिक्शन को ब्रीच किया हुआ है या जो अवार्ड आया है वहाँ उसमें धोखाधड़ी करके अवार्ड आया है, जैसे एक पार्टी बैठी हुई है उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया या एक क्लेम किया जो कि सही नहीं है, गलत है, और इस तरीके से अगर आपने कोई अवार्ड को हासिल किया है तो वो जो सहमति होती है वो मानते हैं कि कंसेंट आपकी विशिएटेड है, और विशिएटेड कंसेंट के आधार पर जो एग्रीमेंट और जो फाइनली लोक अदालत में अवार्ड में कन्वर्ट हो रहा है उसको रिट पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में होता है। लोक अदालत के अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
1: जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से धर्मवीर जी का। जी धर्मवीर जी।
3: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
3: मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार।
0: नमस्कार धर्मवीर
3: सर, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे। जैसे कि अगर कोई 33 साल पहले अगर कोई अपराध करके भाग जाता है और उसके साथी पे मुकदमा चलता है, केस चलता है और एक्सपायर हो जाता है, जो भागा हुआ मेन अपराधी है उसकी खोज खबर निकालने के लिए हमें उसका क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा या

0: कैसे क्या करना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल दहेज के मामले चलते हैं, जो शादी तो नई नई शादियों के बाद तलाक होने की नौबत आती है, तो ये बहुत अच्छा कानून में थोड़ा सा शुरुआत कर दी है कि मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है, क्योंकि पहले तो बहुत खतरनाक केस माने जाते थे दहेज के मामले में, पूरा परिवार अंदर हो जाता था। ये बहुत अच्छा सरकार या कानून ने अच्छा किया कि इसमें बहुत अच्छी तरह से बारीकी की जो देख के कुछ काफी हद तक दोनों पार्टियों को, लड़के वालों को ज्यादातर सुविधा मिली है।
1: जी धर्मवीर जी, दोनों सवालों के आप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि कोई अगर अपराध करके भागा हुआ है और उसका वो उसकी डेथ हो गई है और उसका साथी, मैं मानता हूँ साथी से आपका मतलब को एक्यूज से है, उसको कैसे ढूंढा जाए? तो देखिए, ये लोक अदालत में मैटर आएगा या नहीं आएगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस था या नहीं था। एक अपराध ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल गबन किया हो, आपने आपके पैसे लेकर भाग गया हो, या आपको लेट से एक छोटी मोटी चोट लगी हो जिसको कि कंपाउंडेबल एक हो सकता है न्यायिक प्रणाली को देखते हुए। इस तरीके के मामलों में तो आप लोक अदालत को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा गंभीर अपराध घटित हुआ है, ऐसा क्राइम घटित हुआ है जिसको जो कंपाउंड नहीं हो सकता, जो पार्टीज आपस में सेटल नहीं कर सकती हैं, उस अपराध के लिए लोक अदालत सही फोरम नहीं है, और उसके लिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं देश की वही अप्रोप्रिएट फोरम होती हैं। और जब कोई भी एक्यूज्ड अगर नहीं मिल रहा है और काफ़ी समय से एब्सकॉन्डिंग है, तो सबसे पहला एक स्टेप होता है उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक डिक्लेयर कराया जाता है, और उसके बाद आप अपने काउंसिल से सलाह लेंगे। तो लॉ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर देखिए इस चीज़ की गारंटी तो नहीं होती है कि जो भागा हुआ है वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गारंटी इस चीज़ की होती है कि जो अथॉरिटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल, क्या वो एक्शन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। उन अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दिलवाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कानून में जिनका कि सहारा आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका दहेज उत्पीड़न से, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिएशन इस समय देश में काफ़ी चर्चा में है और सही कारणों से चर्चा में है। लोक अदालत और मीडिएशन में अगर आप बेसिक अंतर समझना चाहें तो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो अपने आप में कोर्ट की डिक्री के बराबर होता है और वो इन्फोर्सिबल होता है। मीडिएशन क्या है? मीडिएशन में एक मीडिएटर पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, और जब अगर पार्टीज के बीच में कोई समझौता हो जाता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर होते हैं और कोई समझौता हो जाता है, तो उस मीडिएशन एग्रीमेंट को कोर्ट को भेजा जाता है, कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर पास करता है, तब वो डिक्री ऑफ द कोर्ट बनता है। इसी तरीके से मीडिएशन एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जबकि लोक अदालत एक अदालत की तरह एक खुला एक मंच होती है जिसमें कि जो भी वहाँ पर मौजूद है वो उन चीज़ों को फैक्ट के बारे में जान सकता है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जहाँ पर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है, और उन प्रावधानों के दुरुपयोग को देखते हुए ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, उन ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया है। अब जहाँ भी कंपाउंडेबिलिटी की बात आती है, फिर लोक अदालत अपने आप में एक सही फोरम बन जाती है। अगर सपोज करिए, देखिए एक ट्रिनिटी ऑफ केसेस की बात होती है लीगल फ्रेटर्निटी में, कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, एक डिवोर्स का केस चल रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा होता है, और दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा होता है, ये तीन केसेस आपस में मिलके चल रहे होते हैं, तो कई बार पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोक अदालतों में जाएं या मीडिएशन में जाएं। मीडिएशन भी कई तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट मीडिएशन भी हो सकता है जो कि गांव समाज के लोग ही आपस में फैमिली मेंबर्स मिलकर बैठकर पार्टीज को समझा सकते हैं, एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है और वो फिर सिविल कोर्ट में चला जाता है। दूसरी तरह से कोर्ट एनेक्स मीडिएशन होता है, जहाँ पर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वहाँ पर आप पाएंगे आजकल हर एक मैट्रिमोनियल केस को सबसे पहले मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे मामले जहाँ पर कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है या गलत इस्तेमाल हुआ है, और वहाँ पर जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की पॉसिबिलिटी कानून के द्वारा दी गई है, वहाँ पर मीडिएशन को या लोक अदालतों के की फोरम को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जी धर्मपाल जी।
2: आशीष जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुणे से श्रीपद झाकड़े जी। जी श्रीपद जी।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार मैडम, नमस्कार सर।
1: नमस्कार श्रीपद जी।
3: हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं

0: बता दें कि क्या तरीका।
1: श्रीपद जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आपने पीछे रेडियो ऑन किया हुआ है या टीवी ऑन किया हुआ है तो प्लीज।
0: अभी आ रही है
1: जी? हाँ बताइए।
0: हाँ वो मतलब अभी दृष्टि बाधित है और मतलब हम लोगों के लिए मतलब किस प्रकार कानूनी सहायता मिल सकती है, मतलब क्या क्या प्रेफरेंस मिल सकता है कानूनी सहायता में?
1: कानूनी सहायता में किस तरह का प्रेफरेंस दिया जा सकता है?
2: देखिए देश में कानूनी सहायता, मैं फिर से ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट है। अब उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, उस राइट को सबको अवेलेबल कराने के लिए सरकारों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से कई तरीके की व्यवस्था की गई है। जब आप बात करते हैं कि आपको किस तरीके से आप अपने राइट्स को, इन राइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, तो हर जो भी लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है वहाँ पर अगर आप जाकर बात करेंगे तो एक एलिजिबिलिटी लिस्ट होती है। आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई देश का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या अदर तरीके से जो डाउनट्रोडन सेक्शन हमारी सोसाइटी का है उसको बिलोंग करता है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए जो लीगल एड काउंसिल्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है और बहुत सारे प्रोविजंस देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ऐसे किए गए हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग जो कैपेबल हैं उन कैपेबल लोगों के लिए शायद उतनी आवश्यकता नहीं है स्टेट की तरफ से मदद के लिए, इसलिए एक फिल्टर लगाया जाता है। एक जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, जो डाउनट्रोडन सेक्शन है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है। और अब पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इवन तो चूंकि समय के साथ न्याय इतना महंगा हो चुका है देश में कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए भी लीगल एड के प्रोविजंस हो रहे हैं। तो निसंदेह अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सही लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे सामाजिक कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, तो आप जो कंसर्न लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, अगर आपका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है वहाँ जाइए, या अगर हाई कोर्ट में है वहाँ जाइए। आपको कोई मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं और आपको एक सक्षम वकील कोर्ट की तरफ से मार्क किया जाएगा।
1: बिल्कुल, और न्याय वैसे भी एक सामाजिक अवधारणा है और मुझे लगता है कि जब न्याय मिल जाता है किसी को भी तो जनता जो होती है वो अपने आप ही खुश हो जाती है। आशीष जी, एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से संजय जी का। जी संजय जी।
3: नमस्कार मैम। नमस्कार। संजय दिल्ली से। मैम मेरा सवाल ये है, ये इतने अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो काम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे, छोटे मोटे मामले लोग अदालतों को दे दे रहे हैं। मेरा मानना है पुलिस वालों को अगर शक्ति दिखाई दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह कई ऐसे बड़े बड़े फैसले दे करके सरकारों के नियम तौर तरीके बदल देते हैं, तो क्यों ना पुलिस वालों के लिए कुछ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग, क्योंकि ज्यादातर
1: जी बीच में ही हमारी कॉल
2: आवाज कट गई, लेकिन जो उनकी मंशा थी पूछने की, क्या पुलिस वालों के ऊपर सख्ती दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए? देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं
1: जी।
2: अब इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कई सारी अपनी जो लीगल अथॉरिटी है उसको वायलेट करते हुए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस आते हैं और ये आज की सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा विजिबल भी होते हैं। लेकिन एक ऑल इनकम्पासिंग या ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा कि पुलिस वालों पर सख्ती दिखाई जानी चाहिए, तो देखिए पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो भी सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं। और विश्वास मानिए, आप जिन पुलिस वालों पर सख्ती दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपके इलाके से थाने को ख़त्म कर दिया गया है और दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं,
1: तो और मुश्किल हो,
2: आप खुद अपने आप को पाएंगे कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, जहाँ पर कानून का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, वो फिर किसी के द्वारा हो, प्राइवेट सिटीजन के द्वारा हो या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हो, वहां पर कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज को भी समझना चाहिए कि हर पब्लिक ऑफिसर, हर पुलिस वाला भी एक ड्यूटी निभा रहा है। जी
1: जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमाशंकर जी। जी रमाशंकर जी।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: मैं ये पूछना चाहता था कि डिजिटल अगर साइबर क्राइम, सेक्सुअल क्राइम और रोड एक्सीडेंट के लिए भी लोग अदालतें सक्षम हैं?
2: जी देखिए, तीन तरीके के आपने मुकदमों की बात करी। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक इशू हो सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर इस कंपाउंड नहीं किया जा सकता है या आपसी सुलह समझौता नहीं हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि देखिए साइबर अपराधों की जो डेफिनेशन है, अगर आप उसमें पाएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए अगर आपको डिसीव किया गया है, आपके साथ चीटिंग करी गई है, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुँचाया गया है, और ऐसा प्रोविज़न है कि आप जिस व्यक्ति ने वो अपराध किया है उसके साथ बैठकर मामले को सुलह समझौते से ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपको आपके पैसे लूटे हुए वापस कर देना चाहता है और आप नहीं चाहते कि आगे चीज़ों को परसू किया जाए, ऐसे कुछ विशेष मामलों में साइबर अपराधों में भी लोक अदालत की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेज में आप पाएंगे कि ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़, आपने मोटर एक्सीडेंट की बात करी। मोटर एक्सीडेंट भी देखिए दो तरीके से केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि अगर आप कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है और किसी ने एक इंटेंशनली उसको एक्सीडेंट कर दिया या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कर दिया, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट केस हो सकता है। लेकिन मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड आप पाएंगे बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उससे कॉम्पनसेशन की बात हो सकती है। तो ऐसे मामले विशेष रूप से लोक अदालतों में जाते हैं और बहुत ही इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन इसी पॉइंट पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको एक अच्छे अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड मामले को लोक अदालत में लेकर जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा काउंसिल भी अपने साथ रखना चाहिए जो कि आपको बता सके कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। कई बार कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज की जो नेगोशिएशन की पावर होती है वो एक विक्टिम की नेगोशिएशन पावर से बहुत ज़्यादा होती है। लोक अदालत में जो भी आपके अवार्ड आते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी आप वहाँ पर अपने लिए निर्णय लें, जो भी सुलह समझौता करें, वो एक इन्फॉर्म्ड सुलह समझौता होना चाहिए, वो एक इग्नोरेंट स्टेज में लिया गया सुलह समझौता नहीं हो सकता है। तीसरा जो इन्होंने एक तीसरे क्लेम की बात करी, इफ़ यू कैन रिकॉल इट, आपने एक और क्राइम की बात करी थी।
1: लेकिन हमारे पास समय कम है, हम अगले जो है प्रोग्राम में जरूर इसको शामिल करेंगे, लेकिन अंत में चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे कि एक नागरिक के रूप में हम कैसे लोक अदालत को सफल बना सकते हैं।
2: देखिए लोग आज की देश, आपकी जो आज सिनेरियो है ये इस तरीके का हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। पहले देश में एक ऐसा सामाजिक एनवायरनमेंट था कि बहुत सारे जो झगड़े थे वो आपस में परिवार और समाज मिलकर ही सुलह कराकर समाप्त कर देता था। लेकिन एक उसका पहलू ये भी था कि बहुत ऐसी सारी जो घटनाएं जो कि रिपोर्ट होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में आगे रिपोर्ट नहीं हो पाती थी। अब आज की डेट में आपके सवाल को आंसर करने के लिए एक सिंपल सा मंत्र ये है कि वो ऐसे सारे डिस्प्यूट्स जिसमें कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, और ऐसा अपराध जहां पर आप आपस में बैठकर चीज़ों को बात करके शायद एक बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसे समझौते की तरफ पहुंच सकते हैं जो कि दोनों पार्टी इसको मंजूर हो, जिस तरीके से पारिवारिक डिस्प्यूट होते हैं, परिवार में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी होते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए आप इन मामलों को लोक अदालत में लेकर जाएं और खुले मन से जाएं, खुली सलाह के साथ जाएं और आपको वहां सफलता मिलेगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसके साथ ही फरहत को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद

0: में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना

0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मुदरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में मदद के लिए डीएनए नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा है कि जो परिवार डीएनए संबंधी जानकारी देना चाहते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN Recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN Recce vehicles will be

0: Very trusted relationship.
1: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है. ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं. खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में.
0: Ratification likely in the coming future.
2: इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए. नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही.
3: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो. न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें. सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें.
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की. बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई. इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई. ईरान ने आज कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए अस्थायी मार्ग बनाने को लेकर ओमान के साथ उसकी बातचीत अंतिम चरण में है. तेहरान में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि समझौते को आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ पंजीकृत किया जा सकता है. प्रवक्ता ने जलमार्ग में असुरक्षा के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में तनाव जारी रहा तो व्यावसायिक जहाज इस मार्ग पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेंगे. कल कतर के एक प्रतिनिधिमंडल के ईरान दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यात्रा मध्य पूर्व में तनाव कम करने के कतर के प्रयासों का हिस्सा थी. दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है. कफर रुमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं. एक दूसरे हमले में वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक चिकित्साकर्मी की मौत हो गई. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 3 दिनों में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 27 लोगों की जान जा चुकी है. इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों और हथियार ले जा रहे लोगों को निशाना बनाया. अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने आज दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पूर्व और दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 5 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया. ये अभ्यास निर्धारित समय पर हो रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हाल ही में सियोल वाशिंगटन के महत्वपूर्ण अभ्यासों को सीमित कर दिया गया था. दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि वार्षिक रक्षात्मक अभ्यास का उद्देश्य समुद्री, हवाई और साइबर क्षेत्रों में 3 देशों की परिचालन और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है. हुती गुट ने सऊदी अरब पर यमन के कई प्रांतों में हवाई और क्रूज मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है. ईरान समर्थित सशस्त्र गुट ने कहा कि सऊदी अरब ने अलजौफ, अलवायदा, मारिब और ताइज प्रांतों में कई हवाई हमलों और क्रूज मिसाइल हमले किए. हुती ने उत्तरी प्रांत अलजौफ के खब व अशराफ जिले के ऊपर सऊदी अरब के CH-4 टोही ड्रोन को मार गिराया.
3: यमन के सरकारी बलों ने कहा कि उनके लड़ाकू विमानों ने आज दिन में मध्य प्रांत अलबायदा में हूती ठिकानों पर 13 हमले किए। सरकारी बलों ने अलजौफ में भी नया सैन्य अभियान शुरू किया और प्रांतीय राजधानी अल हज्म के पूर्व में स्थित हूती नियंत्रण वाले अल

0: अनाथ सैन्य अड्डे की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में पिछले चार दिनों से जारी भीषण लड़ाई में दोनों पक्षों के कम 117 लड़ाके मारे गए हैं। यमन में वर्ष 2014 के अंत से संघर्ष जारी है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: कॉप 31 सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले अजरबैजान की राजधानी बाकू में आज चौथे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सप्ताह की शुरुआत हुई। सरकारी वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और जलवायु विशेषज्ञों की ये 5 दिन की बैठक 11 सितंबर तक चलेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर $15 का आर्थिक लाभ सृजित कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई में देरी से दुनिया को हर साल 1.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर एक साथ मिलकर काम करने से स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कमी आएगी, कामगारों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मौसम की अनिश्चितता से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके अनुसार साल 2025 में दुनिया भर में करीब 64 लाख लोगों की असामयिक मौत बाहरी वायु प्रदूषण के कारण हुई, जबकि घरों के भीतर होने वाले प्रदूषण से 20 लाख लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है इस समस्या से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, आधुनिक रसोई ईंधन, बेहतर खेती और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे समाधान पहले से मौजूद हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर साल 2050 तक ऐसे 25 उपायों को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो प्रदूषण से होने वाली 14 करोड़ 40 लाख असमय मौतों को रोका जा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363, उसके बाद नवलपरासी पूर्व में 222, नवलपरासी पश्चिम में 221 और रसुआ में 169 दर्ज की गई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा कि विश्व वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध। ईरान ने कहा हॉर्मुज जल डबरों मद से अस्थायी सुरक्षित मार्ग के मुद्दे पर ओमान के साथ वार्ता अंतिम चरण में। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आर एस राघु विद वर्ल्ड न्यूज।

जिंदगी के सुरीले से सफर में और इस सुरीली सी डगर में आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है 10:31 और 9 सेकेंड। आज का हर श्रृंगार अर्पणा है आपके साथ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड हर श्रृंगार में। शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज के साथ, फिल्म खेल से ये गीत। आप सभी का स्वागत है।

एक वक्त था, एक जमाना था, जब खतों के माध्यम से अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाई जाती थी, और फिर होता था एक लंबा सा इंतजार, एक बहुत लंबा सा वेट कि इस खत का जवाब जो है वो क्या आएगा। लेकिन फिलहाल तो आप सभी के हाथों में मोबाइल है, सिर्फ दो लफ्जों में बात कह दी जाती है, तो क्यों ना लिखते, जब से तुझे देखा है दिल बस तेरा दीवाना है, दो लफ्जों में कहूं तो बस तू ही मेरा जमाना है। खूबसूरत फिल्म से गीत होगा, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज होगी।

सपनों की तो बात ही कुछ और होती है, और अगर सपनों में महबूब मिल जाए तो बात ही क्या है। खास करके महबूब की हंसी में तो कुछ बात होती है, पता नहीं क्यों दिल बार बार बार बार वही फिसल जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार सौदागर फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत आज अर्पणा है आपके साथ।

10:55 हो चुके हैं। ये गीत अभी आपने सुना सौदागर फिल्म से। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी के बिना बिल्कुल अधूरे हैं और हम कहने लगते हैं कि तुम्हारे बिना हम एक अधूरा किस्सा थे, पर जब तुमसे मिले तो पूरी कहानी हो गए। अगला गीत होगा जॉली मुखर्जी और श्री देवी की आवाज में, फिल्म है चांदनी। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। 10:55 हो चुके हैं। समाचारों के बाद 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत में आपके संग रहूंगी मैं अर्पणा। फिलहाल आप लीजिए इस गीत का आनंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी

0: भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और

0: खड़ी है कि गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास साहस अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defence Acquisition Council (DAC) has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces secure access card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra tomorrow. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, WDFC.

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market related queries. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवाल इस कार्यक्रम में उसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे. चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex slips nearly 400 points, Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise and Prime Minister Narendra Modi to address the global FinTech Fest 2026.

0: इन मुंबई टुमारो।
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 400 अंक फिसला, निफ्टी 23,800 के नीचे बंद हुआ। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करेंगे।

0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों पर बात करेंगे, आपके सवाल के जवाब भी हमारे हमारे एक्सपर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। श्रोताओं, आज प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आधा प्रतिशत फिसले। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़ककर 76,133 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक लुढ़ककर 23,779 पर स्थिर हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिडकैप 100 सूचकांक आधा प्रतिशत गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। इससे पहले कच्चे तेल के ऊंचे दाम और पश्चिम एशिया में पुनः तनाव बढ़ने से बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले। सत्र के दौरान दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांक दबाव में रहे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिकवाली दर्ज की गई।
0: The benchmark domestic equity indices ended 0.5% lower today. The Sensex declined 383 points to close at 76,133, while the Nifty shed 119 points to settle at 23,779. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.5%, while the small-cap 100 index ended largely unchanged. Earlier, the markets opened marginally down amid elevated crude oil prices and renewed hostilities in West Asia. Both benchmark indices remained under pressure throughout the session as a broad-based sell-off was witnessed across sectors.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 3.8%, टेक महिंद्रा 2% और टाटा स्टील 1.8% नीचे आए। वहीं लार्सन एंड टूब्रो और भारतीय एयरटेल में आधे प्रतिशत से अधिक, मारुति में आधा प्रतिशत और पावर ग्रिड के शेयर भी लगभग आधे प्रतिशत बढ़े।
0: And in the sectoral indices, in the Bombay Stock Exchange, 23 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, focused IT lost 2.2%, IT decreased 2.1%, and realty as well as insurance dropped 1.4%. In contrast, telecommunication rose 1.6%, healthcare added 0.7%, and hospitals gained 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,571 companies declined, 1,925 advanced, and 233 remained unchanged.
1: और अब जानेंगे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में अपरिवर्तित रूप से 94.49 पर बंद हुआ। इसी के साथ कोलकाता से पहली कॉल हम ले रहे हैं, इनका नाम है अरिजीत। अरिजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू मार्केट मुद्रा एंड शरद जी, वेरी बिग फैन।
3: गुड इवनिंग
2: सर, मेरा दो सवाल है आपसे
3: जी।
2: पहला तो ये है कि प्रोविडेंट फंड का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है अभी करेंटली, और पहले, और सेकेंड मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा एक प्रोविडेंट फंड और एक शेयर का एक बात है, तो वो दे आर इन द प्रोसेस, मगर जो लोग डील कर रहे थे वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा कोई मेरे फैमिली में कोई जिंदा नहीं है, तो मेरा कोई नॉमिनी नहीं है। वो लोग अगर नॉमिनी का नाम मैं नहीं डालूं तो वो गवर्नमेंट से वो पैसा रिलीज नहीं करेंगे, क्या ये सच है या झूठ?
3: देखिए अरिजीत, अगर आप पहले आपका दूसरा वाला सवाल लेते हैं, अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो इसमें फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर लेना पड़ता है, और उस कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप नॉमिनी रखिए, या फिर जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का जो इंटरनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का आपको ध्यान रखना चाहते हैं लिखना चाहिए। और दूसरा आपका पहला सवाल पीएफ का, पीएफ का इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं, आई थिंक इट इज़

0: अबाउट 7 पॉइंट, पीपीएफ का 7.1 है, पर पीएफ का शायद ये पूछ रहे हैं, पीएफ का 8.25 के आसपास है। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, आप ये शायद प्रोविडेंट फंड का जानना चाहते थे, 8.25 के आसपास है। पर आप, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं वहाँ संपर्क करें, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पोस्थ्यूमस प्रोसेस अलग होते हैं, बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके होता है या फिर आप नॉमिनी के थ्रू उसको ले सकते हैं।
1: राइट, टॉकिंग ऑफ द मार्केट्स टुडे शरद जी, व्हाट वी आर विटनेसिंग ओवर द पास्ट फ्यू सेशंस ऑफ कोर्स इज not surprising though, but still there is some element, some factor of concern as well. How do you visualize this? How do you perceive this?
0: Well, I think Nishit, the markets are looking right now more outwards. If markets look internally to the country, we had 7.8% GDP. We had all the four cylinders of the economy, the private consumption, government expenditure,
2: right.
0: Private investments, exports, they are all shining. But somehow I think I was talking to another platform today, and I said the market seemed to be looking more outwards, because the markets look at West Asia, crude oil prices, aggression between Iran and US, bond yields, dollar index. I think those are the factors which are sort of overshadowing our internal growth at this point of time. So I'm sure, in fact, through Market Mantra today, if I'm said there are a lot of market operators who listen to this program, I would like to request to please start looking inwards. Look at what is happening within the country. They seem to be becoming more international, but in the process, they are looking at all the negative things which are coming out. Obviously, it does depress the sentiment, but within our country, we are doing fairly okay. So I think the day we start looking inwards, you will find the market, and market today broke a very important technical level of 23,850 on the technical charts. This becomes a matter of concern, because there could be further slide, I hope. And the crude oil prices, look at them, they were getting closer and closer to 100. The Indian basket of crude is beyond 100 now. In fact, we are heading for a time where the oil marketing companies may have to at some point of time take a call to invoke another rise in petrol and diesel prices. So those concerns are, I think, counting on the minds.
2: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई।
1: एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द ब्लैक शीप इन द लॉट, मिस्टर ट्रंप एज वेल।
0: ओह यस, ही इज ऑलवेज इन द न्यूज।
2: आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल लेते हैं। ये है मुंबई से रत्नाकर। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है
0: जी,
3: उसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए, समझो कॉमन मैन को उसमें एंट्री करना है तो कैसे कर सकते हैं, और वो डिजिटली प्लेटफॉर्म क्या है उसका, और उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़े बताइए। और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो अभी एक न्यूज आई थी कि जीडीपी रेट अपना बढ़ने वाला है 7 पॉइंट और कुछ, तो उसका कॉमन मैन के ऊपर, नहीं तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर है, नहीं तो खुदरा बाजार है, उसमें उसका क्या परिणाम हो सकता है।
0: ओके, दोनों सवाल रत्नाकर जी के बहुत अच्छे हैं, आज बहुत दिनों बाद इनसे बात करने का मौका मिला। फॉरेक्स ट्रेडिंग, रत्नाकर जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हम यहाँ निजी प्लेटफॉर्म्स का नाम तो नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, पर अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, पर मैं आपको एक तरीके से सतर्क जरूर करना चाहता हूं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो भी बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग होती है। आप विभिन्न करेंसीज को आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि 15 दिन बाद डॉलर बढ़ जाएगा, यूरो बढ़ जाएगा, येन बढ़ जाएगा, ब्रिटिश पाउंड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी आप करते हैं, तो थोड़ा सा जोखिम भरा काम है, क्योंकि इसमें बहुत शार्प मूवमेंट्स होते हैं और बहुत तेज़ी से मूवमेंट होते हैं, और 24 घंटे होती है ये, तो आप तो रात को सो रहे होते हैं, मैं उम्मीद तो यही करता हूं। तो जब आप सो रहे होंगे और रात को उस समय मान लीजिए कीमत जो आप तलाश रहे हैं वो कीमत उस समय आई, तो आप कैसे उसमें से निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। तो उसमें बहुत ही एक्टिव और 24 घंटे की मॉनिटरिंग उसमें चाहिए होती है। और दूसरा आपने पूछा जीडीपी का 7.8% का कॉमन मैन पे, जीडीपी का देखिए रत्नाकर जी, उसका इम्पैक्ट लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ता है, और चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ती है तो वो ओवरऑल बढ़ती है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बढ़ता है, हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग किस्म का होता है। तो इसलिए संक्षेप में तो मैं यही बता सकता हूँ, बाकी आपने जो सवाल पूछा उसका बहुत विस्तृत जवाब है और बहुत लंबा डिस्कशन मांगता है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि दो लोग और क्यू में हैं। तो
2: बिल्कुल

0: शरद जी, क्योंकि समय की परिधि है और भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, तो दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: हेलो
0: जी
2: जी, प्रकाश जी बताइए।
1: हाँ जी, मार्केट मंत्रालय टीम पे नमस्कार।
2: नमस्कार
1: शरद जी को भी नमस्कार सर।
2: बिल्कुल नमस्कार
1: सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है
2: जी।
1: कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है
2: जी,
1: क्या वो नेग्लिजिबल भी हो
2: जी,
1: तो भी क्या उसके लिए ITR 2 भरना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई मैं SIP कर रहा हूँ
2: तो
1: जो जो इंस्टॉलमेंट एक साल के कम अवधि की है वो मैं रिडीम कर देता हूँ, तो वो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जरूरी है कि ITR 2 भरा जाए?
2: नियम तो यही है प्रकाश जी के, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 भरना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और एक मकान हो और 50 लाख से कम आए हो तो आप जो सरल फॉर्म है फॉर्म 1, बाकी नियम तो यही है। पर प्रकाश जी, आपके मुझे लग रहा है आपका कंसर्न शायद इसलिए है, और मैं प्राची और निशित को भी बताऊं, क्योंकि ITR 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। पर आपको सच बताऊं तो तभी तक कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आपने उसको खोल के नहीं देखा। बहुत बहुत प्रोग्राम्ड है, हर चीज़ का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आगे क्या करना है ये लिखा हुआ है, उसको इतना सिस्टमैटिक बना दिया गया है। तो प्रकाश जी घबराइए नहीं, आप ITR 2 भरिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई परेशानी आती है तो आप अगले कार्यक्रम में हमसे दोबारा यहाँ मार्केट मंत्रा में जुड़ के कभी भी पूछ सकते हैं।
0: जरूर, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल।
3: हाँ नमस्कार सर, देखो कोहली सर से मेरा प्रश्न सर ये है सर
2: जी,
3: कि 2025 फर्स्ट क्वार्टर में हमारी GDP 6.9% थी सर
2: जी,
3: और 2026-27 में अभी हम पहले तिमाही में 7.8 पे आ गए हैं
2: जी।
3: तो मैं सर यही आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से की फैक्टर, कौन से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, या फिर IIP का डेटा बढ़ा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर इतने तेजी से बढ़े हैं ताकि हम 6.9 से 7.8 आए? हालांकि अच्छी चीज है, गुड है। और सर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल है सर
2: जी।
3: तो मेरा शंका ये है सर कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी अच्छी चीज है कि कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री हम हमारा सामान दूसरे देश में, दूसरे सामान के देश हमारे देश में आ जाएंगे, हमारी पहुंच बढ़ेगी। लेकिन सर मुझे ये भी डर लगता है कि हम जिन देशों से आयात निर्यात कर रहे थे तो इससे ट्रेड बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? जैसे मान लो हम 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करते हैं सर, तो हम टैक्स रेवेन्यू हमारे 20% के हिसाब से 20 रुपए बनता है मान लीजिए, और हम उनसे आयात करते हैं 50 रुपए का, तो उनको हम 20% अगर हम टैक्स देते हैं 10 रुपए का टैक्स देते हैं, ओवरऑल में हमें 10 रुपया नेट प्रॉफिट में आता है, तो ये ट्रेड बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो सकता सर? धन्यवाद सर।
2: चलिए, इनका पहला सवाल GDP से संबंधित है, अभी पिछले श्रोता में भी शायद उन्होंने रत्नाकर जी थे, उन्होंने ही पूछा था। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब अमित देखा जाता है इसमें। हमारा जो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बढ़ा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फायर किया है वो सिलेंडर भी बढ़ा है, हमारा सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ा है, सबकी परसेंटेजेस हैं जो बढ़ा है। उसके अलावा 4 सिलेंडर्स की मैंने बात करी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट केपेक्स, कंजम्पशन हमारी बढ़ी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हमारे 10-12-11-9-10% बढ़े हैं। तो चारों इंजन्स ने फायर किया। और मैं यहाँ पर प्राची और निशित की इजाजत से ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे कि 7.8 बढ़ी है तो फील गुड फैक्टर नहीं है। तो आप अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो उनके नंबर्स को हमें देखना चाहिए, और भारत जैसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि 7.8% मेरी जेब में आया कि नहीं आया, जबकि ऐसे नहीं होता। ये अभी एक क्वार्टर की है, कालांतर में जब लगातार तेज बढ़ती है तो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है। इनका दूसरा सवाल FTA से था, कोई ट्रेड बैलेंस नहीं बिगड़ेगा हमारा अमित, इससे तो उल्टा सुधरेगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम होता है क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट तो हमें जितना जरूरत है उतना करेंगे, पर हमारा सामान यहां से $860 बिलियन का हम साल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसकी उसकी गिनती बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और भारतीय MSMEs के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। आप डर दिमाग से निकाल दीजिए अमित, आपके मन में आपने कहा कोई डर है, कोई डर नहीं है, तो प्रशंसा की बात है, तारीफ की बात है, खुश होने की बात।
0: दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है वत्सराज। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम।
0: नमस्कार
4: शरद कोहली जी को प्रणाम।
2: प्रणाम।
4: सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा शरद कोहली जी को, क्योंकि जितनी सरल भाषा में ये सारी चीज हमें बताते हैं वो बिल्कुल खाने में बैठ जाती है।
2: धन्यवाद सर, सवाल पूछिए।
4: मैं सर आपकी एक सहमति चाहता हूँ, पिछले आपके सेशन में एक क्वेश्चन आया था
2: जी,
4: और उसका आपने आंसर किया था। एक क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक LTCG या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आदमी को अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है
2: जी।
4: तो मैं सहमति ये चाहता हूँ कि मिनिमम क्या इतना बुक कर लेना चाहिए जितना गवर्नमेंट हमें रिव्यू

0: देती है एक लाख या सवा लाख के करीब जो रिवेट देती है उतना तो मिनिमम बुक कर लेना चाहिए, क्या है मैं इस मामले में सही हूँ?
1: वत्सराज जी, ये इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो 1,25,000 का इक्विटी पे हमको छूट मिलती है, पहले सेक्शन 112A उसको कहते थे, जो पुराने एक्ट में भी लोगों के मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, तो मैं नए सेक्शंस अभी नहीं बोल रहा हूँ, तो कर लेना चाहिए। पर इसमें खाली टैक्स वत्सराज जी एक कंसिडरेशन नहीं है, मैंने जो बताया था क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से इस समय बिहेव कर रहा है, हो सकता है कोई वेस्ट एशिया से अभी जो खबरें आ रही हैं शायद और मामला बिगड़ जाए, क्रूड ऑयल की कीमतें 100 के आसपास जा रही हैं, तो टैक्स तो एक मैटर होता है। और मैं समझता हूँ आप जो बात कह रहे हैं वो सामान्य परिस्थिति में होता है कि आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली, कि आपने बुक कर लिया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। पर इस समय अगर प्रॉफिट अच्छा है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है वत्सराज जी आपका, कि कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, अलग होगा। पर मैं ये मानता हूँ प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मुझे लग रहा है अगर ऐसे वक्त में मुनाफा है तो बुक करके चलना चाहिए। इस समय 1,25,000 टैक्स को आप सेकेंडरी कंसिडरेशन रखिए और प्रॉफिट को आप मुख्य रखिए। मुख्य और गौण कहते हैं अगर हिंदी में, मेरी हिंदी अगर मैं ठीक मुझे बता रही है, तो मुख्य रखिए आप प्रॉफिट को, टैक्स को गौण रखिए, पर 1,25,000 अगर हो रहा है तो अच्छी बात है।
2: आइए जानते हैं क्या है अगला सवाल। नोएडा से हमारे साथ विनय कुमार जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सारे मार्केट मंत्र टीम का अभिनंदन करता हूँ।
1: धन्यवाद जी।
3: शरद कोहली साहब का मैं भी एक फैन हूँ।
1: माई प्लेजर।
3: मेरा प्रश्न आज ये है कि अभी पूरी शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता है और आज काफी बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल भी 23,850 का टूट गया है।
1: बिल्कुल।
3: तो इस समय में रिटेल इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर?
1: बहुत अच्छा सवाल है विनय। देखिए, मार्केट के बारे में मेरा नज़रिया अभी तक जो रहता था, प्राची निशित जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता था कि मार्केट में आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। थोड़ा सा ये जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए इसमें मेरे नज़रिए में मैंने समय अनुसार बदलाव किया है और मैं आज इनकी इजाज़त से वो बदलाव बताना चाहूँगा। बदलाव ये है कि मुझे यहाँ से मार्केट के लिए थोड़ा सा आगे वाले कुछ समय टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भू राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही हैं, जियो पोलिटिकल जिसको कहते हैं, और भू आर्थिक परिस्थितियां जो बन रही है जिसको जियो इकोनॉमिक कहते हैं, वो परिस्थितियां बहुत अनुकूल मुझे यहां से नहीं नजर आ रही हैं। रशिया नेटो में टेंशन है, ईरान इसराइल कभी खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, 4.5 साल रशिया यूक्रेन को हो गए। तो मुझे लग रहा है विनय, यहां पर रिटेल निवेशकों को जो बहुत अच्छे वैल्यूएटेड शेयर्स हैं, जहां एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशन हैं, उसमें तो आप उसको लेके रख सकते हैं। पर ज्यादातर कभी कभी क्या होता है, मैं हालांकि ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं, कभी कभी ना इन्वेस्ट करना भी विनय एक स्ट्रैटेजी होती है। निवेश करना तो स्ट्रैटेजी होती है, पर कभी कभी दूर बैठ के और तमाशा देखना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, कि आप दूर बैठ के ऑब्जर्व करिए। तमाशा शब्द मैं एक हल्के अंदाज में, मतलब आप उसको ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा मार्केट का फैब्रिक जब सुधरेगा विनय, तब आप उसमें एंटर करिएगा, क्योंकि अभी हमें मार्केट का यहाँ से बॉटम नहीं मालूम है। और ये जो मैंने बात करी ये सभी श्रोताओं के लिए है। अब कोई कहेगा कि कोहली साहब तो पहले कहते थे कि भाई आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, 5 साल 10 साल बने रहिए, पर अब परिस्थितियाँ जिस हिसाब से बदलती हैं आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। मैं तो निवेश के लिए बात कहता हूँ कि आपको हर 3 महीने में अब रिव्यू करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए विनय, मैं उम्मीद करता हूँ आपको संदेश मिल गया होगा और आप उसके अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेने चाहिए, और जो शुरू में डिस्क्लेमर और आखिर में डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है उस पे भी ध्यान रखना चाहिए।
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। श्रोताओं, एशिया के शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5% से अधिक बढ़ा, जबकि जापान के निकेई सूचकांक में 2% से अधिक वृद्धि हुई।
4: शरद जी, हाउ डू वी सी दिस एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बीइंग इंसुलेटेड टुडे व्हेन कंपेयर्ड टू द यूरोपियन मार्केट? Kospi 4.6, Japan Nikkei 2.1% up.
1: Well, we were very keenly observing Kospi since morning, and we found Hynix and Samsung, they were doing great. So I think there was excitement which was technology driven, and in the Nikkei we observed SoftBank taking the lead. So I think there were 2-3 companies. It was AI driven, it was tech driven, it was chip demand, semiconductor demand, which drove these markets contrary to the global sentiment. Also, we should not forget, I think the American markets are closed today because of the labor day.
2: Right.
1: So they had their day where they could think independently without taking cues. I was joking at my office, you know, with our stock market team, that today, you know, the cat is away and the mouse will play. You know, no cues from America, so you just do whatever you want to for a change. Otherwise, the markets normally follow. और मैं तो मजाक में कई बार कहता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि करवा चौथ होता है ना हमारे यहाँ, तो उसका चांद निकल

0: है तो अर्घ देके पानी पिया जाता है। ऐसा लगता है हमारी मार्केट सुबह चांद निकलने की इंतजार, अमेरिकन मार्केट कब खुले तो हम पानी पिए, इस तरीके का माहौल मुझे दिखाई दे रहा। तो आज तो कोई दिक्कत नहीं थी।
1: बेहतरीन आपने उपमा दिया है। और गाजियाबाद से हमारे साथ इसी के साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, और कोहली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार मनीष।
2: सर, अभी आपको सुन रहा था, आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई, बता रहे थे कि कभी कभी ना नहीं इन्वेस्ट करना, बेचना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो आई थिंक ये रिटेल के लिए आपने रिटेल इन्वेस्टर को माइंड में रख के बोला होगा, लेकिन उनके लिए जो एक SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड पे रेगुलर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी क्या अप्लीकेबल होगी? दे शुड स्टॉप SIPs और वॉच, और दे शुड कंटिन्यू एज दे आर डूइंग, मतलब बेसिकली अ गुड अमाउंट ऑफ आर सेविंग्स आर गोइंग इन एज ए SIP। तो अभी का जो एज ए मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से कुछ जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो FIAs जिस तरह से वो पैसे निकाल रहे हैं आ रहे हैं, बट जो लोकल जो है उनकी तो SIP ठीक ठाक आ रही है। तो एज ए मिडिल क्लास मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या ये स्ट्रेटजी उनके लिए भी है या दे शुड?
0: जी जी जी, देखिए मनीष, अगर तो आपकी SIP जो आपने म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, अगर वो NAV अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, तो फिर मैंने जो अभी पहले बोला था वो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए अगर आप रोक भी देंगे तो कोई मुझे इतना इसमें खराबी नहीं दिखाई देती है। पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, NAV आपकी इस टाइम बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर प्रॉफिट हो रहा है, मेन बात जो मैं कहना चाहता था प्राची और निशित, कि प्रॉफिट हो रहा है तो इस समय थोड़ा सा बुक कर लीजिए। और अगर आपकी NAV, अब ये मनीष मुझे नहीं पता आप कौन से फंड में हैं, कितनी NAV है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। आपकी बात का बहुत सटीक उत्तर तो तब दिया जा सकता है, पर अब तक मैंने बोला है, आप सुन रहे थे, मैंने आपकी बातों से लगा, उसमें से आप अंदाज निकाल सकते हैं।
1: मथुरा से हमारे साथ कुंज बिहारी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये अपना गोल्ड कौन सा समय ठीक महसूस करें, जैसे आपका उतार चढ़ाव चल रहा है, और दूसरा सवाल शेयर मार्केट के अलावा और कोई अच्छी जगह है जहां हम सेफ अपना इन्वेस्ट करें? और तीसरी एक छोटी सी बात अपने कोहली सर से है, ये पूछना है इनसे कि अगर ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो जाता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो जाता है, इसमें इन दोनों चारों पार्टियों को किसको क्या बेनिफिट मिलेगा इतना बर्बादी होने के बाद?
0: चलिए, गोल्ड का आपने कहा, गोल्ड का तो मुझे भविष्य उज्जवल नजर आता है, क्योंकि आपने तीन पूछे हैं तो मुझे छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे। शेयर मार्केट के अलावा आपने पूछा और कहाँ, तो ऐसे समय में जब निवेश करना हो तो आप जो फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, RBI के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तब तक के लिए निवेशक एक तरह से रिसेस ले सकते हैं। रिसेस होती थी ना जब स्कूल में हम छुट्टी हो जाती थी, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई बंद हो जाती थी, तो आप एक रिसेस के तौर पे इन पे ले सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। दूसरा, इन्होंने पूछा जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो आपके मुंह में पहले तो घी शक्कर, अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है और फिर क्या आपस में ये गले मिल लेंगे? अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुंज बिहारी जी, मुझे यहां से कुछ बहुत ज्यादा अभी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। काश आपकी बात सत्य हो, आप पहले बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि ये लोग आपस में गले मिल जाएंगे, पर अभी मुझे कोई ऐसा आसार तो नहीं नजर आ रहे। निश्चित और प्राची, मेरे ख्याल
1: उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इस तरीके की जो युद्ध चल रहे हैं वो अगर सेटल हो जाते हैं तो किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये किस चीज, ये कौन से नाक की लड़ाई,
0: क्या खोया क्या पाया बाद में? देखिए, मुझे लगता है युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, केवल मानवता हारती है, नुकसान जानमाल का नुकसान होता है। तो एक लाइन में जवाब दूं तो यही है।
4: Right, and on to some other stories. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai tomorrow evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance. According to an official press release, GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The discussions will focus on how AI, programmable finance, quantum technologies and other critical and emerging technologies can create trusted, inclusive and measurable outcomes for citizens, enterprises and economies globally. Since 2020, Global FinTech Fest has emerged as a leadership platform bringing together policymakers, regulators, central banks, financial institutions, fintechs, technology companies, investors, academia, and other global stakeholders to discuss and shape the future of

0: Finance. The 7th edition will run till 11th of September 2026 in Mumbai.
1: Delhi se Deepak hamare saath jud rahe hain. Deepak ji, sankshipt mein apna sawal poochiye please.
2: Namaskar ma'am.
1: Ji.
2: मेरा कुछ नहीं था, जैसे मार्केट डाउन होती है तो लिक्विड फंड के जो इंटरेस्ट है वो भी डाउन होता है या वो सेम चलता रहता है?
3: दीपक, लिक्विड फंड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो उस पर रिटर्न होता है, वो वेरी करता रहता है. वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे, कि कितने लोग लिक्विड फंड्स. मैं जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए जल्दी से मैं बता दूं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो 2-3 दिन के लिए आप पैसा रखते हैं, उसमें आपको अमूमन मैंने देखा है करीब 6-7% डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई इतना रिटर्न आता है. तो वो ऊपर नीचे होता रहता है दीपक उसमें, पर वो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं. और बहुत ही छोटे टर्म के लिए जब किसी को पैसा रखना हो, तो बजाय इसके कि सेविंग्स में पड़ा है, तो बहुत लोग इसमें इसको खेल को करते हैं और बड़ा बड़ा कामयाब तरीके से करते हैं.
0: Moving on to crude, the global crude oil prices climbed to near 6-week high as renewed strikes over the weekend in the Strait of Hormuz heightened concerns over supply disruptions. Brent crude was trading 1.1% up at $97.37 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $92.20 per barrel when reports last came in.
1: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज लगभग 1.5% फिसलकर 1,52,703 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं चांदी की कीमत 1.5% से अधिक बढ़कर 2,31,650 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई. शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: धन्यवाद. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. The benchmark domestic indices decline. Sensex slips nearly 400 points. Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise. And Prime Minister Narendra Modi to address the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजेश रोशन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म दूसरा आदमी से, और ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत, और आज आपके संग है अर्पना। अगला गीत जो आप सुनेंगे गीत मेरे मनमीत में, वो है फिल्म खून भरी मांग से। इसके भी संगीतकार राजेश रोशन है, गीत इंदिवर का लिखा है और आवाज होगी नितिन मुकेश, साधना सरगम की।

11:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। अगला गीत होगा लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है गीता मेरा नाम।

ग्यारह बजकर 55 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत होगा जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म अर्थ से। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण।

0: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ. साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि आगरा स्थित केंद्र को दुनिया की उन्नत आलू प्रजातियों को भारत लाने और देश की अलग अलग जलवायु के अनुकूल आलू की नई किस्में विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इससे आलू किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लॉट से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड में व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
2: The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces secure access card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 route kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport yesterday, Railways Minister Ashwani Vaishnav emphasized that the eastern and western dedicated freight corridors will serve as crucial backbone for the country's transport and logistics sector. The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand, North New Makarpura, New Umbargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. Five Municipal Corporation of Delhi MCD officials, including

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से ना बिखर जाए, जो पल आज हमारे पास है कहीं कल यादों में ना बदल जाए। तो क्यों ना इन लम्हों को जी भरकर जी लिया जाए, थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी मोहब्बत और ढेर सारे सुहाने गीतों के साथ। चंबल की कसम फिल्म का गीत आपने सुना, रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया।

दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब मन थोड़ी शांति तलाशता है तो कुछ गीत जैसे धीरे से दिल का हाथ थाम लेते हैं। उनकी धुन में एक ठहराव होता है, बोलों में अपनापन और आवाज में ऐसा जादू कि कुछ पल के लिए सारी उलझने पीछे छूट जाती हैं। शंकर हुसैन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कैफ भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनमें वक्त जैसे ठहर सा जाता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी गर्माहट बरसों बाद भी कम नहीं होती। कभी किसी गीत के बहाने, कभी किसी पुरानी याद के सहारे वही एहसास फिर से दिल के करीब आ जाता है। खानदान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने।

मोहब्बत में रूठना भी ज़रूरी है और मनाना भी। कभी छोटी सी शिकायत, कभी मीठी सी मनोहार, यही तो वो नाजुक से पल हैं जो रिश्ते को सिर्फ रिश्ता नहीं रहने देते, उसे एक खूबसूरत एहसास बना देते हैं। टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना, इस गीत को गाया येशुदास ने और इस गीत को लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मधुबन की तरह हमारी जिंदगी भी तभी सार्थक होती है जब उसकी खुशबू सिर्फ हम तक सीमित न रहे बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां और उम्मीदें भर दें, जो खुद खिलकर दूसरों को महकाना सिखाए, जो अपने हिस्से की रोशनी बांटकर किसी और की राह आसान कर दे। शायद वही जीवन की सबसे खूबसूरत पहचान है। साजन बिना सुहागन फिल्म का गाना आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और यशुदास की आवाज में। अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने।

चंबल की कसम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने।

दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत से पहले हमने आपको जो गीत सुनवाया था वो चंबल की कसम से नहीं बल्कि रेशमा और शेरा से था, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था नीरज ने और संगीत दिया था जयदेव ने।

वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ. साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा अनुग्रह

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

कभी कभी दिल में इतने जज्बात उमड़ते हैं कि समझ नहीं आता उन्हें शब्दों में कैसे ढालें। बस आंखें कुछ कहती हैं, खामोशी कुछ कहती है, और दिल बार बार उसी को पुकारता है। शायद मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां एहसास बोलने लगते हैं। आखिरी दाव फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

कितना भी खुद को बहलाएं, दिल है कि मानता ही नहीं। शायद किसी की याद का असर है कि कुछ ऐसा होता है कि आंखें बंद हों तो चेहरा सामने होता है और आंखें खोलें तो इंतजार। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

याद भी बड़ी अजीब चीज है। कभी हल्की सी दस्तक देकर चली जाती है और कभी दिल के दरवाजे पर आकर ठहर जाती है। और फिर किसी की याद आए तो बस यूं ही नहीं आती, बल्कि हर पल हर सांस के साथ आती है। पारसमणि फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वो किसी का इंतजार होते हैं, किसी की याद होते हैं और कभी कभी तो किसी को वापस बुलाने की आवाज भी होते हैं। रानी रूपमती फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। भरत ब्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने।

वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 47 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जब दिल किसी अपने के लौट आने की राह देखता है तो खामोशियों में भी एक पुकार सुनाई देती है, एक ऐसी पुकार जिसमें शिकायत कम और इंतजार ज्यादा होता है। नागिन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

कभी किसी के चले जाने का दर्द इतना गहरा होता है कि जिंदगी की सारी रौनकें ही गायब हो जाती हैं, और फिर दिल बस यही कहता है, छोड़ गए बालम, मुझे हाय अकेला छोड़ गए। ये गीत आपने सुना फिल्म बरसात से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त अपने साथ आगे तो ले आता है, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं कर पाता। बीते हुए दिन, पुराने चेहरे, वो मासूम सी हंसी और वो बेफिक्र पल, सब कुछ यादों की किताब में कहीं ना कहीं महफूज रहता है। दिल एक मंदिर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

कभी कभी दिल की दुनिया भी इस तरह से उजड़ जाती है कि सारी बगिया ही उजड़ी हुई प्रतीत होती है। जहां कभी मोहब्बत के फूल खिला करते थे, वहां बस यादों की खामोशी रह जाती है। ऐसे में मन करता है कि कोई पंछी बनकर उन बहारों के देश उड़ जाए, जहां शायद बीते दिनों की कोई खुशबू अब भी बाकी हो। ये गीत आपने सुना फिल्म माया से, इसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

रात जितनी गहरी होती है, खामोशी उतनी ही गहरी महसूस होती है, और ऐसे में दिल को तलाश होती है किसी छोटी सी रोशनी की, एक उम्मीद की, एक अपनेपन की। कभी कभी एक छोटा सा चिराग भी अंधेरे से लड़ने के लिए काफी होता है। बस उसी तलाश होती है किसी अपने की। चिराग फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

अदालत फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

कागज के फूल फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पारदर्शी नीतियां, सुशासन और निवेश के अनुकूल माहौल के साथ विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की मजबूत सड़क और रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक व्यवस्था का उल्लेख

करते हुए कृषि उद्योग, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए ताकि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ। ये रात सुरमई है, हवा में जैसे कोई मीठी सी खुशबू खुली है, चांदनी की नरम रोशनी है और खामोशी भी आज कुछ कह रही है।

ये रात सुरमई है, हवाओं में एक मीठी सी खामोशी है, और इस खामोशी के बीच अगर किसी की याद सबसे ज्यादा आती है तो शायद वो वही है जो दिल के बेहद करीब है। लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

कभी कभी दिल में किसी की तस्वीर इतनी गहरी उतर जाती है कि फिर हर खूबसूरत चीज में उसी का अक्स नजर आने लगता है। इस सुरमई रात में चांद को निहारते हुए दिल ने भी शायद यही सवाल किया होगा, क्या इस दुनिया में कोई इतना हसीन है? मेरे यार सा हसीन कोई है भी? और चांद ने भी मुस्कुराकर कह दिया होगा, नहीं नहीं, मेरे पास भी उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अब्दुल्ला फिल्म का गाना आपने सुना, रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जाबाज फिल्म का गाना आपने सुना, सपना मुखर्जी और महेश गढ़वी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 29 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कितनी खूबसूरत तमन्ना है कि कोई हमारे गीत को अपनी आवाज दे दे और हमारी मोहब्बत को अपनी मौजूदगी, फिर गीत भी अमर हो जाए और प्रीत भी। आपने प्रेम गीत फिल्म का गीत सुना जगजीत सिंह की आवाज में। इसे इंदीवर ने लिखा और संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

कभी कभी किसी का साथ सिर्फ साथ नहीं होता, वो हमारी उम्मीद, हमारी मुस्कान और हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। अगर तुम ना होते फिल्म से ये गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जिंदगी भी अजीब है, कभी धूप कभी छांव, कभी खुशियों की दस्तक तो कभी गम की आहट। लेकिन जिसने इसके हर रंग को खुले दिल से अपनाया, शायद वही जिंदगी को सच में जी पाया। सदमा फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया इलैया राजा ने।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में ठीक 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही नीता अग्रवाल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंकिंग क्षेत्र के हित में संवाद और आपसी सहमति के जरिए मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 7 से 9 सितंबर तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 17।

मोहम्मद रफी। आशा भोसले की स्वर उसी सजा ये गीत आपने सुना गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से। 1957 रिलीज ये फिल्म। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। साथियों, साथ हो तो रूठना मनाना भी रिश्तों का एक अंग कभी कभी बन जाता है। इसे खूबसूरत वानगी से सजा ये गीत सुनते हैं।

सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना साथियों। हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों का जादू। फिल्म का नाम तेरे घर के सामने, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1963 में। साथियों रात का समय कई बार नींद न आने का समय भी बन जाता है। अब नींद न आने के कारण तो भाई कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी

शमशाद बेगम किशोर कुमार की आवाजों से सजी ये रचना आपने सुनी नया अंदाज फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। ओपी नैयर का संगीत था और जानिसार अख्तर की लिखी रचना। और अब नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए, कब क्यों कैसे कहा, सुनते हैं इस युगल नगमे में।

0: लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम जाने अनजाने, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह।

वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वरों से सजी ये रचना भी आपने सुनी बहू बेगम फिल्म से। 1967 रिलीज ये फिल्म रही थी साथियों। रोशन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। और अब सुनते हैं कि ये युगल जोड़ा क्या कह रहा है।

कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गीत साथियों अभी आपने सुना। गुलशन बावरा ने ये गीत लिखा था। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम हाथ की सफाई।

मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत बद्ध किया ये गीत था। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी। 1961 रिलीज इस फिल्म का नाम माया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। आज के इस सफर में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। रात्रि के 3:41 और 6 सेकेंड कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे। रैना काल को सजाता ये चांद यकीनन हर दिल का चाहिदा हमेशा से ही रहा है, यहाँ तक कि किसी से वादा करवाने के लिए भी चांद को किस खूबसूरती के साथ सहारा बनाया जाता है या कहीं गवाह बनाया जा रहा। आइए सुनते हैं इस गीत में।

मुकेश और लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों से सजी ये रचना राजहट फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

महेंद्र कपूर आशा भोसले के स्वरों से सजी ये रचना आप सुन रहे हैं वक्त फिल्म से। 1965 रिलीज ये फिल्म रवि का संगीत साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। साथियों किसी की तारीफ करना भी एक कला में शुमार है। अब यहाँ इस गीत में तारीफ हो रही, कहा जा रहा क्या सुनते हैं। और हाँ इस संगीतमय बातचीत में मोहतरमा को शायद पहले से ही पता है कि इनकी तारीफ होने वाली है, तो ये तो रात भर सोई भी नहीं है इसी खुशी में।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वरों से सजा ये गीत बैराग फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों 1976 में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना। और अब आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर हम बढ़ रहे हैं।

तलत महमूद लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों से सजी ये रचना आवाज फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 रिलीजी फिल्म, सलील चौधरी का संगीत था और जिया सरहदी की लिखी रचना थी। साथियों, ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और अब हमरा ही कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दे नमस्कार। समाचारों के बाद मिलते हैं अरुणिमा कार्यक्रम में 4:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम बारिश हुई है। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक बारिश वाले 5

जिलों में शामिल रहे। भारी बारिश को देखते हुए बरेली में अगले दो दिनों के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। प्राधिकरण ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब से जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 6 लेन की एलिवेटेड सड़क बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल शिलांग में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें न्यू शिलांग जलापूर्ति योजना की दूसरे चरण, 2 सड़क संपर्क परियोजनाएं, शिलांग सिविल अस्पताल में 30 बिस्तरों वाली आयुष सुविधा और माओखानों में विद्युत उपकेंद्र शामिल है। मणिपुर विधानसभा के 8वें सत्र के अंतिम दिन सदन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,848 करोड़ रुपए से अधिक की 31 अनुपूरक अनुदान मांगे पारित की। गृहमंत्री गोविंद दास ने बताया कि कामजोंग जिले में जले 23 मकानों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आधार वर्ष 1951 होगा और राज्य सरकार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाएगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नाहरलागुन में राज्य कृषि सूचना केंद्र सह किसान छात्रावास का उद्घाटन किया। यह केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं की जानकारी और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। भारत को UWW विश्व बेल्ट कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी का प्रस्ताव मिला है। इसमें नागा कुश्ती और अलिश बेल्ट कुश्ती शामिल है। इस संबंध में किर्गिस्तान में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चैंपियनशिप 14 से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 11 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा, अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।
1: Nothing should be given to you on a platter. If things are given to you on a platter, तो आपके क्या contribution है? कुछ भी नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े अचीवर को देख लो, किसी भी फील्ड में।

सुमन कल्याणपुर की आवासी सजी ये रचना अभी आपने सुनी जानवर फिल्म से। 1965 रिलीज ये फिल्म साथियों, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

0: हमसे कुछ न बोले।
1: बिल्कुल जी, हम सभी को प्यार करा ही बनना चाहिए। किशोर कुमार की आवाज से सजाइए गीत 9-2-11 फिल्म से अभी आपने सुना। 1957 रिलीज फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना।

किशोर कुमार की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी साथियों। किशोर कुमार का ही संगीत था और किशोर कुमार ने ही इस गीत को लिखा था। फिल्म का नाम दूर गगन की छाओं में, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में।

मुकेश की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी, मस्ती की धुन में गाते चले जा रहे थे ये। जी हाँ साथियों, डॉक्टर विद्या ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1962 रिलीज ये फिल्म रही थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी।

जी हाँ साथियों, जब सकारात्मक साथ मिल जाता है तो बस जिंदगी और भी सुहावनी हो उठती है। छोटे बाबू इस फिल्म से नगमा भी आपने सुना। 1957 रिलीज ये फिल्म थी। तलत महमूद, लता मंगेशकर की आवाजें थी, मदन मोहन का संगीत, इंदिवर की लिखी रचना। साथियों, ये जीवन के रास्ते सीधे साफ सपाट तो कदापि नहीं होते, लेकिन फिर भी जीवन को हंसते मुस्कुराते ही जिया जाए तो स्वयं अपना भी भला और हमारे आसपास का भी माहौल सही बना रह सकता है इससे।

आशा भोसले की आवाज़ से सजा ये सकारात्मक नगमा भी आपने सुना। पगला कहीं का यह था फिल्म का नाम, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

वाणी जयराम की स्वर से सजी रचना गुड्डी फिल्म से आप सुन रहे हैं 1971 रिलीज फिल्म वसंत देसाई का संगीत और गुलजार की लिखी रचना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे। साथियों, हमारे देश प्रहरी दिन रात प्रतिकूल मौसम में विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा सुरक्षा कर रही हैं। उन सभी सैनिकों को नमन करती हैं। साथियों, ऐसी स्थानों पर पोस्टेड जो हमारे सैनिक होते हैं, जो भी आर्मी के नौजवान होते हैं या किसी भी सेना के, वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं ये हम बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या होता है जब उनकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है, चाहे 4 दिनों की सही, 5 दिनों की सही, कितनी कितनी खुशी होती है अपने परिवार गांव शहर जाने की, ये भी कितनी अच्छी बात होती है। और कई बार ऐसा भी होता है इनके साथ कि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो छुट्टी रद्द भी हो जाती है, लेकिन फिलहाल तो छुट्टी का माहौल है और छुट्टी का माहौल है तो इस तरह से गीत गाया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों से सजी ये रचना साथियों अभी आपने सुनी आस का पंछी फिल्म से। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों जीवन में सिर्फ कर्म ही रह जाता है, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी यही याद किया जाता है, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार। और कई बार इशू भी होता है ये भी कहा जाता है क्या, इस गीत में सुनते हैं।

और ऐसी आवाजें हम कभी नहीं भूल सकते। किनारा फिल्म से ये रचना साथियों अभी आपने सुनी। 1977 रिलीज ये फिल्म थी। गुलजार की लिखी रचना, आर डी बर्मन का संगीत और भूपेंद्र सिंह लता मंगेशकर की आवाजों का सुंदर जादू।

हेमंत कुमार की आवाज से सजी ये रचना खामोशी फिल्म से आपने सुनी। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हेमंत कुमार का संगीत था, गुलजार की लिखी रचना। और अब आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये शुभत्व प्रदान करने वाला गीत।

की रचना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों से सजी। रवि का संगीत शकील बदायूनी की लिखी रचना। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम गृहस्थी। ये है आज के कार्यक्रम अरुणिमा की अंतिम प्रस्तुति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना

0: योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं जेविये बेटल ने भारत के शांति प्रयासों और संघर्ष प्रभावित देशों के बीच सेतु की भूमिका की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। श्री बेटल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने खाड़ी और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों और व्यापार, निवेश तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ साइमन हेक से मुलाकात की। बैठक में बेहतर आलू बीज, किसानों की समस्याओं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने भारत में उन्नत आलू किस्में लाने और अलग अलग जलवायु के अनुकूल नई किस्में विकसित करने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन में देश के 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी और 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। त्योहारों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत करीब 2300 किलोग्राम लावारिस खोया, धाप और मक्खन जब्त कर नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। एशियाई खेल 2026 जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। हालांकि कुछ खेल प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। भारत का अभियान 17 सितंबर तक टेक बॉल से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, The Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, WDFC, covering 326 route kilometers, developed at a cost of more than 20,700 crore rupees. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 5:11 और 13 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

जी हाँ साथियों, प्रकृति भी हमेशा यही कहती है कि इंसानियत रखें, एक दूसरे से स्नेह भाव रखें, मर्यादा में रहें, आदर सम्मान दें हम सभी को। प्रकृति भी यही हमें कहती है, पल पल हमें सिखाती है यही अच्छी अच्छी बातें यदि हम गाये करें तो। ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज से सजा था, रानी रूपमती फिल्म से 1957 रिलीज ये फिल्म रही थी। SM त्रिपाठी का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना थी, और अब स्नेह की डोर से बंधा ये गीत, ये भाव आइए सुनते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये स्नेहिल रचना अभी आपने सुनी आराधना फिल्म से। 1969 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना। आइए साथियों अब एक शास्त्रीय रचना सुनते हैं जो यकीनन मन को सुकून देती है।

Ajagavata mana mero jumage, ajagavata mana sarimaba.

उस्ताद आमिर खान और पंडित डीवी पलुस्कर के दिग्गज स्वरों से सजी ये शास्त्रीय रचना आपने सुनी बैजू बावरा फिल्म से 1952 रिलीज ये फिल्म रही थी। मित्रों, नौशाद का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना। साथियों, जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद कीमती है और जल बारिश के रूप में जब बरसता है ज़्यादा हो जाता है तो भी परेशानी होती है, कम होता है तो भी परेशानी होती है। जल की ज़रूरत हम इंसान, जानवरों, पंछियों को ही नहीं बल्कि इस धरती को, वसुंधरा को भी होती है और वसुंधरा पर पनपने वाले जो फसलें हैं उनको होती है। अगर जल की कमी हो जाए तो फसलें मुरझा जाती हैं, ठीक से नहीं उगती हैं, अन्न फल की उगाई ठीक से नहीं होती है, फल प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सही बारिश या सिंचाई कहें ज़रूरी होती है हमारे खेत खलिहानों के लिए, तभी तो वो भी मुस्कुराते हैं। जब उनकी प्यास बुझ जाती है तो लहलहाते हैं, मुस्कुराते हैं वो भी।

लव इन शिमला फिल्म से ये रचना भी आपने सुनी साथियों, सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों से सजी हुई। 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इकबाल कुरैशी का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी ये रचना थी।